एफएम 107 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 17 जून 2026। इस वक्त समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:59 हुए हैं। मंगलध्वनि के साथ हमारी ये प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में कल G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया।

0: किया। इसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम अभियान शामिल है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। G7 देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वादा किया। G7 ने कैंसर का इलाज ढूंढने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इनमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नशा मुक्त भारत अभियान NMBA के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉ. वीरेंद्र कुमार नशा मुक्ति मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहल का भी अनावरण करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज मुंबई के वर्ली साइकिल ट्रैक पर विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि ये आयोजन व्यापक फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता के एक अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का चुरू केंद्र है, FM 100.7 MHz पर हम बोल रहे हैं। अब कार्यक्रम विवरण में आप जानेंगे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कार्यक्रमों और उनके प्रसारण समय के बारे में।

आप सुन रहे हैं हमारे आज के कार्यक्रमों का विवरण। अभी कुछ ही समय बाद 6:10 पर श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम चिंतन। आज का विषय रहेगा समय का प्रबंधन बहुत जरूरी है। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना होगा 6:15 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार आप सुनेंगे 6:45 पर। 7:20 पर कार्यक्रम होगा श्री राम चेतमानस गान बालकांड से संकलित एपिसोड संख्या आज आप सुनेंगे 1। कार्यक्रम नमस्कार शुरू आप सुनेंगे 7:30 पर। हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात 8:00 होंगे। 8:15 पर श्रोता सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज। सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम आप सुनेंगे 8:30 पर। 9:00 हमारे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे। 9:10 पर देशगान होगा। साहित्य सुगंध ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:15 पर। आज आप सुनेंगे हिंदी वार्ता विषय योग का महत्व। 9:30 पर आप सुनेंगे चित्र संसार किसी एक फिल्मी या फिल्म की जानकारी पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 10:00 हमारे मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम होंगे।

11:05 पर श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे 12:00। लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर आप सुन सकेंगे 12:30 पर। आज के कलाकार रहेंगे शमीम जोधपुरी। हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से होंगे 1:00। 1:05 पर कार्यक्रम होगा घर आंगन। 2:00 मीडिया न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से। तत्पश्चात दोपहर समाचार आप सुनेंगे 2:15 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने आप सुन सकेंगे 2:30 पर।

शाम 5 बजे कार्यक्रम युववाणी के साथ आरंभ होगी हमारी आज की दूसरी सभा। शाम 6 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, 6:05 पर श्रोता सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। देशभक्ति फिल्मी गीत आप सुन सकेंगे 6:10 पर। संस्कृत में समाचारों के लिए समय रहेगा 6:20 का। आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे 6:30 पर। तत्पश्चात कार्यक्रम जिले की चिट्ठी 6:40 पर होगा। राजस्थानी में प्रादेशिक समाचारों के लिए समय रहेगा 6:45 का। शाम 7 बजे कार्यक्रम होगा खेती और गृहस्थी। रात्रि 8 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे गुलदस्ता। रात्रि 8:45 पर हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या होगी। 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज एट 9। 9:15 पर राजस्थानी लोक संगीत होगा। हमारे दिल्ली केंद्र से चर्चा का विषय आप सुनेंगे 9:30 पर। शास्त्रीय संगीत आप सुन सकेंगे रात्रि 10 बजे। 10:30 पर समय है सुगम संगीत के लिए। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार 11:05 पर होंगे।

अभी आपने जाना हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कार्यक्रमों के बारे में। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है चिंतन।

आज आप सुन रहे हैं रेडियो साथी अंकिता के साथ आज का चिंतन। विषय है समय प्रबंधन बेहद जरूरी है। श्रोताओं, सभी के पास, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, किसी भी प्रकार का व्यक्ति या कोई जानवर, जीव, कोई भी इस धरती पर अगर है तो उनके लिए एक दिन में 24 ही घंटे हैं। लेकिन फिर भी हम अपने मनुष्य जाति की ही बात करें तो किसी के पास समय ही समय है और किसी के पास समय का अभाव है। जब सबको समान 24 घंटे मिले हैं एक दिन के, फिर ऐसा क्यों है कि किसी के पास समय का इतना अभाव और किसी के पास समय बहुत ज्यादा? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण समय का प्रबंधन है। हम देखते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर विराजमान जो महानुभाव होते हैं, उनके पास भी समय जो है प्रबंधन के कारण ठीक रहता है, पर्याप्त रहता है। इसके विपरीत प्रबंधन ना होने की वजह से कम काम होने पर भी समय जो है वो नहीं निकाल पाते। समय का प्रबंधन इसलिए भी जरूरी है कि अगर हम सही समय पर सारे कामों को करते चले जाते हैं तो स्वयं तनाव से ग्रसित नहीं होते हैं। श्रोताओं, हम जानते हैं कि जो कार्य हमें करने हैं वो हमें ही करने हैं। हम इस बात को बखूबी जानते हैं, लेकिन आलस्य नाम की एक जो हमारे अंदर विद्यमान हमारा शत्रु है, वो शत्रु हमें बार बार पराजय की ओर पीछे घसीटता होता है और यही समय प्रबंधन के लिए हमें आगे नहीं बढ़ने देता, समय प्रबंधन के लिए हमें तत्पर नहीं करता है और इसीलिए हमारे सारे काम पेंडिंग चलते रहते हैं और हम तनाव से ग्रसित हो जाते हैं और ये तनाव धीरे धीरे फिर हमारे शरीर को रोगों से ग्रसित करता है और ये रोग कहीं ना कहीं हम अपने आप को कमजोरी के रूप में और बड़ी बीमारी के रूप में महसूस करते हैं। धीरे धीरे हम इस बात को समझें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें कि समय का प्रबंधन क्यों जरूरी है। योजनाबद्ध तरीके से काम करने से अंतिम समय की हड़बड़ी और चिंता से मुक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं। अपने काम को अगर हम बेहतर करना चाहते हैं, उसमें कुछ अच्छा देना चाहते हैं, तो हम इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जिस काम में हमने समय लगाया है, सही समय पर उसको शुरू किया है और सही समय पर उसे समाप्त किया है, तो उसमें हम अपना 100% दे पाते हैं। हमारा दिमाग भी हमें अच्छे अच्छे विचार देता है। इसके विपरीत हड़बड़ी में अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो फिर अच्छे विचारों का आना तो दूर, हम शायद कुछ खास तो बहुत दूर है, सामान्य भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए भी समय का प्रबंधन बहुत जरूरी है। कम समय में अधिक और बेहतर काम करने की क्षमता अगर हमें विकसित करनी है तो समय प्रबंधन बहुत जरूरी है। अगर हम अपने जीवन में योग को या मेडिटेशन या इसी प्रकार का कुछ व्यायाम करते हैं तो इससे हमें ये लगता है कि व्यायाम करते समय भी हमारा समय जो है वो बेकार होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम 20 से 25 मिनट व्यायाम करते हैं और उसके बाद अपना काम शुरू करते हैं तो हमारी गति बढ़ जाती है। इसलिए हमें अपनी उस गति को बढ़ाने के लिए भी व्यायाम करना चाहिए और इससे भी हम समय प्रबंधन में मदद ले सकते हैं। अगर हम समय प्रबंधन अच्छे से करते हैं तो हम स्वयं तो तनाव मुक्त रहते ही हैं, किसी और के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। तो श्रोताओं, ये था चिंतन।

आप सुन रहे थे चिंतन, ये आकाशवाणी का चुरू केंद्र है। समय 6:15 हुए हैं। प्रस्तुत है वंदना।

श्रोता भी सुन रही थी वंदना। ये आकाशवाणी का शुरू केंद्र है। समय 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार।

सभी श्रोताओं का स्वागत है फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत बहार में। पहली प्रस्तुति आप सुन रही हैं गीता दूत की आवाज में आर पार फिल्म की प्रस्तुति।

गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में बरसात फिल्म का। श्रोताओं आप सुन रहे हैं गीत बहार। नया दौर फिल्म का गीत अब आप सुनेंगे आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाज में।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

गीत बहार की ये प्रस्तुति अभी आपने सुनी मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में चाइना टाउन फिल्म से। आन मिलो सजना इस फिल्म का गीत तब आप सुनेंगे लता मंगेशकर की आवाज में।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय 7:20 हुए हैं। अब आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस कांड। आज आप सुनेंगे बालकांड से संकलित एपिसोड संख्या 1। कलाकार हैं पंडित जसराज, संगीत दिया है सतीश भाटिया ने।
1: एपिसोड नंबर 1।

श्री रामचरितमानस का स्थान हिंदी में ही नहीं जगत के साहित्य में निराला है। ऐसा सर्वांग सुंदर श्रेष्ठतम काव्य के सभी लक्षणों से युक्त, साहित्य के सभी रसों से परिपूर्ण तथा काव्य कला की दृष्टि से सर्वोच्च कोटि का ग्रंथ अन्यत्र दुर्लभ है। प्रथम प्रकरण के रूप में प्रस्तुत है बाल कांड का प्रारंभिक श्लोक मंगलाचरण, जिसमें भक्त कवि ने सर्वप्रथम अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों की कर्त्री सरस्वती तथा मंगलकारी गणपति की वंदना की है। तत्पश्चात श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप पार्वती और शंकर की स्तुति की गई है। भक्त कवि की उक्ति है कि उसने अनेक पुराणों, वेद और शास्त्र से सम्मत

आदि रामायण में वर्णित तथा अन्यत्र उपलब्ध रामकथा को अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत किया है। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मात नौती।

आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस कान बालकांड से संकलित एपिसोड संख्या एक। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। समय 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार चूरू।

नमस्कार श्रोताओ, रेडियो साथी अंकिता के साथ आज आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार शुरू। बहुत सारे मीठे मीठे गाने और चर्चाओं और जानकारियों के साथ बने रहें कार्यक्रम नमस्कार शुरू में।

श्रोताओ, हम राजस्थान में रहते हैं और यहाँ एक बड़ा हिस्सा थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है। आज 17 जून है, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने का विश्व दिवस 17 जून को हर साल मनाया जाता है। इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो क्षरण और सूखे की समस्या के प्रति जागरूकता बढ़ाना और भूमि को उपजाऊ बनाए रखने में उपायों को और अधिक बढ़ाना, इस पर जोर देता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1994 में एक प्रस्ताव पारित करके इस दिवस की शुरुआत की। स्वस्थ भूमि को बचाना, मिट्टी की नमी बनाए रखना, मरुस्थलीकरण यानी बंजर भूमि में बदलने की प्रक्रिया को रोकना और सूखे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग को बढ़ावा देना। जैसा कि हम राजस्थान में रहते हैं, एक बड़ा हिस्सा हमारा थार मरुस्थल है। यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र और कृषि के लिए भूमि संरक्षण और जल प्रबंधन बेहतर हो सके, इसलिए इन सब का ध्यान में रख करके इस पर जोर देना। इस दिवस को मनाने के लिए हम स्वयं भी इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। हम स्वयं भी अपना जो थार का रेगिस्तान है, वृक्षारोपण या अन्य बहुत से ऐसे उपाय हैं जिनसे अपना इसमें भागीदारी निभा सकते हैं। आज 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखे

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: श्रोतो, ओडिशा के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और पत्रकार उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास का निधन 17 जून 1928 को हुआ था। राष्ट्र और ओडिया साहित्य में उनके सर्वोच्च बलिदान और अपार योगदान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस तिथि पर उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने और जनता की समस्याओं को आवाज देने के लिए 1919 में प्रमुख ओडिया दैनिक समाचार पत्र द समाज की स्थापना की। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने छात्रों के सर्वांगीण विकास और देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए पुरी में सत्यवादी बाना विद्यालय की स्थापना की। सामाजिक सुधार के लिए गरीबों के अथक हिमायती थे। उन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान चलाया और विधवाओं के पुनर्वास के लिए काम किया। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: अंतराल के बाद श्रोताओं, पुनः स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम नमस्कार चूरू में। श्रोताओं, संयमित जीवन ही सुखी जीवन का आधार है। हम अपने जीवन में जितना ज्यादा संयमी रहेंगे, उतना ही ज्यादा खुशियों को प्राप्त करेंगे। संयमित जीवन ही सुखी जीवन का आधार है। इसमें अनुशासन, आत्मनियंत्रण और संतुलन ही किसी भी व्यक्ति की सफलता और मानसिक शांति की सबसे बड़ी कुंजी है। संयम न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी शांति प्रदान करता है। संतुलित और समय पर भोजन करने से स्वास्थ्य उत्तम रहता है, जिससे शारीरिक ऊर्जा बनी रहती है। अलग अलग रूपों में, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग परिस्थितियों में इसका रूप बदलता रहता है। वाणी और व्यवहार में संयम अगर हमारे पास है तो सोच समझकर बोलने से रिश्तों में मधुरता आती है, अनावश्यक तनाव से बचा जा सकता है। जितना ज्यादा संयमित रह के अपने जीवन में फैसलों को लिया जाए, उतना ज्यादा सफलता की मात्रा बढ़ती जाती है। संयमित जीवन और विचारों से अगर हम कोई काम करते हैं तो उसमें काम बिगड़ने की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं, क्योंकि तब हम पूर्ण रूप से उसके बारे में अच्छे से सोचकर, विचार कर कार्य को शुरू और अंत तक करते हैं। इससे सफलता अधिक मिलने के आसार होते हैं। क्रोध, अहंकार और अति इच्छाओं, जिसे हम लालसा कहें, इन पर नियंत्रण रखने से मानसिक शांति प्राप्त

होती है। जब जब हम क्रोध अहंकार का प्रदर्शन करते हैं, तब तब हम किसी और के साथ साथ स्वयं का नुकसान भी करते हैं, ये हमें कुछ समय बाद पता लगता है। और फिर एक अफसोस जीवन में होता है कि क्यों हमने उस समय इतना ज्यादा क्रोध अहंकार का प्रदर्शन किया। इस प्रकार का व्यवहार हमें परिवार से, मित्रों से, अपनों से दूर कर सकता है। साथ ही साथ ये व्यवहार हमें आंतरिक तौर पर कमजोर बनाता है। क्रोध मनुष्य के भीतर रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है, जिसे हम सिर्फ और सिर्फ स्वयं ही खत्म कर सकते हैं। जितना ज्यादा हम संयमी होंगे, उतना ही हम अपने जीवन में शुद्धता को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में समय और धन का उपयोग हम अगर संयमी होकर नहीं कर रहे हैं, तो एक समय के बाद समय के लिए हम पछताएंगे और धन के लिए हम सिर्फ रोते रह जाएंगे। प्राथमिकताओं को सही प्रकार से समझने के बाद ऐसा कुछ करें जिससे भविष्य का कुछ रूप सुरक्षित और सुखद बन सके, और इसी रूप में समय और धन दोनों का हमें प्रयोग करना चाहिए। हमारे जीवन में हम संयमित रह के इनका उपयोग अगर करते हैं, तो एक समय के बाद हमें एहसास होता है कि हमने पूर्ण रूप से इसका उपयोग किया है, दुरुपयोग नहीं किया है। इसके विपरीत अगर हम उत्तेजित होकर, क्रोधित होकर, ललायित होकर इनका उपयोग करते हैं, तो ये क्षण भर में नष्ट भी हो जाते हैं और हमें इस बात का बहुत जल्दी एहसास होता है कि हमने गलत किया है। इससे नुकसान हमें ही भुगतना पड़ता है। इसीलिए हमें जीवन में जब हम बहुत ज्यादा खुश हों, तब भी हमें स्वयं पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा खुशी के पलों में हम कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो हम बाद में पूर्ण नहीं कर पाते हैं, या उनके लिए हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में हम या तो उसको छोड़ देते हैं या फिर कुछ नुकसान करके उसे पूरा करते हैं। ऐसी स्थिति में लिया गया निर्णय कभी भी ठीक नहीं होता। तो जब भी बहुत खुश हो तो किसी प्रकार का निर्णय ना लें, और अगर क्रोध बहुत ज्यादा आया हुआ है तो अपने शब्दों पर नियंत्रण बेहद जरूरी है। शब्दों पर संयमितता बरतें, और साथ ही उस समय जब क्रोध आया है उस समय हमें स्थान परिवर्तन अगर करने को मिले तो जरूर करना चाहिए। उस स्थान से दूर कहीं चले जाएं। स्वयं को संयमित रखना ही है, इस विचार को सबसे पहले अपने पास आने दें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम स्वयं संयमित रह के अपने जीवन को सुचारू रूप से बिना किसी अफसोस के आगे बढ़ाते रहेंगे।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार चोरू। हम आकाशवाणी के चोरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 MHz पर। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 8 बजे हैं। अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात। 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज़।

0: सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। संघर्ष वाले इलाकों में नाविकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा न करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों

0: और सिक्किम में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा भी की। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान और तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। श्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को भी मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक तेजी का स्वागत किया है और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2035 के तहत आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति अल नाहयान को इस वर्ष भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या और मिस्र के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों के संबंधों में व्यापार और निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।

0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
1: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
0: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। 5.5 एकड़ में फैली इस परियोजना ने पहुंच को सुगम बनाया है और भारत के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक केंद्रों में से एक को नया स्वरूप दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान कर रहा है।
2: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
0: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह फैसला यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
4: NTA यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। NTA ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी

0: निगरानी करने का भी आदेश दिया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे और कराईकल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ आंधी की संभावना बन रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों ने G7 शिखर सम्मेलन और नीट UG पुनर्परीक्षा के आयोजन से जुड़ी खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। कुछ अखबारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई बड़ी योजना को भी मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। लोकसत्य की पहली खबर का शीर्षक है G7 का आगाज, PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात। अखबार ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी प्रमुखता से छापा है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है मोदी ट्रंप की 16 माह बाद मुलाकात, वार्ता आज। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भेंट का चित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है G7 में मोदी ने उठाया भारतीय नागरिकों का मुद्दा। पत्र ने नीट UG की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर स्थायी प्रतिबंध की खबर को भी अपना शीर्ष समाचार बनाया है। दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने इस खबर को विस्तार से पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है पेपर लीक ना हो इसलिए 22 तक टेलीग्राम बंद। पत्र ने इस वजह से आम उपयोगकर्ताओं को होने वाली परेशानी का भी विस्तार से विश्लेषण प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार आजादे मुआवेनी के लेख को प्रकाशित किया है। शीर्षक है क्या ये तेहरान की जीत है। इस लेख में कहा गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ज्यादातर अमरीकी सैन्य दखल जटिल संघर्ष में बदलती गई जिसे शायद ही कोई जीत कहे।
0: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किछाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में तीन मैचों की श्रृंखला में दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Prime Minister Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avion, France today. Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan reach consensus on implementation of long-pending Keshau Dam project to revive Yamuna River. National Testing Agency warns candidates against fake NEET re-exam paper leak claims. IMD issues orange alert for heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in second ODI of three-match series in Lucknow this afternoon. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has called on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Addressing an outreach session of G7 summit in Avion, France, Mr. Modi said that conflicts in West Asia have disrupted global trade and caused loss of life. highlighting the growing risks

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम। पंकज उदास की गाई हुई गजलें कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं।

श्रोता भी सुन रहे थे सुगम संगीत, यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। समय 9 बजे हैं। अब आप सुनेंगे हमारे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। किशाऊ बांध परियोजना पर राजस्थान सहित 6 राज्यों के बीच सहमति बनी, इससे प्रदेश की कृषि और पेयजल की जरूरतें पूरी होंगी। राज्य सरकार ने बालोतरा में दुर्लभ खनिजों की खोज को स्वीकृति दी, प्रदेश में जल्द ही एनआईए कोर्ट खोलने पर भी मंजूरी। एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया और प्रदेश में कई इलाकों में बारिश से झुलसाने वाली गर्मी से राहत, किसानों ने खरीफ फसलों की बुवाई शुरू की। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। वर्षों से लंबित किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर राजस्थान सहित 6 राज्यों के बीच सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा शामिल हैं। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये सहमति बनी। इसके तहत हिमाचल प्रदेश के हिस्से का पानी अब राजस्थान और दिल्ली को दिया जाएगा। इसके बदले में ये दोनों राज्य हिमाचल प्रदेश की बिजली की लागत को साझा करेंगे। इस योजना से हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को भी उनके तय कोटे के अनुसार पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जिससे यमुना नदी में शुद्ध जल का प्रवाह बढ़ेगा। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, जबकि शेष 10% खर्च सभी 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। इस संबंध में जल्द ही सभी राज्यों के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके बाद परियोजना को अनुमोदन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस फैसले को राजस्थान के लिए ऐतिहासिक बताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश को अतिरिक्त पानी मिलेगा।

0: से भविष्य में कृषि और पेयजल की जरूरतें पूरी होंगी। प्रदेश में रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी दुर्लभ खनिजों की खोज को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही एनआईए से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत बनाई जाएगी। राज्य सरकार ने कल इस संबंध में कई फैसले किए। और ब्यौरा समाचार कक्ष से।
1: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में कल जयपुर में हुई बैठक में तीन महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें दुर्लभ खनिजों की खोज को बढ़ाने के उद्देश्य से बालोद्रा जिले के नवाताला और देवीगढ़ में करीब 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में खनिज ब्लॉक की नीलामी का फैसला शामिल है। इसके लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट को एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की मंजूरी दी गई है। राज्य की न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए एनआईए से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना का निर्णय भी लिया गया है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश के 8 नए जिलों में नागरिक सुरक्षा कोर का गठन किया जाएगा। इनमें बालोतरा, डीडवाना कुचामन, फलौदी सलूम्बर, खैरतल तिजारा, डी कोटपुतली बहरोड और ब्यावर शामिल है। समाचार कक्ष से जयकिशन शर्मा।
0: कल एक अन्य बैठक में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने भी राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स RSMM को खनिजों के खनन में दुनिया की नवीनतम तकनीकी अपनाते हुए जीरो लॉस माइनिंग पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए। कल सचिवालय में RSMM की 76वीं वार्षिक साधारण सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मार्केटिंग के जरिए उपक्रम का कारोबार और मुनाफा बढ़ाने को कहा। केंद्र सरकार ने पराली प्रबंधन और इसके स्थायी समाधान के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में इस संबंध में एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालयी बैठक की अध्यक्षता की। श्री चौहान ने कहा कि पराली जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है और मिट्टी की उर्वरता तथा जन स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष के लिए फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत 544 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है, जिसमें से आधी राशि जारी की जा चुकी है। बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के 14 जिलों की 70 तहसीलों में पराली सुरक्षा बल तैनात कर कड़ी निगरानी रखने पर भी जोर दिया गया। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की आज 486वीं जयंती है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने प्रताप जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में श्री बागड़े ने कहा कि महाराणा प्रताप ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए मुगलों को मेवाड़ से खदेड़ा था। मातृभूमि की रक्षा के लिए उनके संघर्ष को हमेशा याद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने आवास पर महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। पाली में इस अवसर पर देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे। शहर में रैली भी निकाली जाएगी। कोटपुतली बहरोड में वाहन रैली निकाली जाएगी, जिसमें जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह शिरकत करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News Rajasthan पर भी सुन सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपये तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह का वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि देश में टेलीग्राम ऐप को बंद क्यों किया गया है। श्री सिंह ने मीडिया को बताया कि NTA परीक्षा प्रक्रिया को कदाचार मुक्त रखने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी प्रश्न पत्र हर प्रकार से सुरक्षित रखे गए हैं। इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज कोटा से छात्रों के लिए एक जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रहे हैं। अभियान के तहत राहुल गांधी शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं, रोजगार के अवसरों और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रदेश में शिशु मृत्यु दर को कम करने और बच्चों को मौसमी बीमारियों से बचाने के लिए स्टॉप डायरिया अभियान 2026 कल से शुरू हुआ। चिकित्सा मंत्री द्वारा शुरू किया गया यह विशेष अभियान 31 जुलाई तक प्रदेश भर में चलेगा। जयपुर प्रथम के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी

0: अधिकारी डॉक्टर रवि शेखावत ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य डिहाइड्रेशन के कारण बच्चों में होने वाली जनहानि को रोकना है।
1: ये प्रोग्राम 31 जुलाई 2026 तक निरंतरता में चलेगा, जिसमें हमारे यहाँ से चिकित्सा विभाग में आशा सहयोगिनी घर घर जाके 5 साल तक के बच्चे हैं उन्हें ORS और जिंक उपलब्ध कराएंगे। और इसके साथ साथ में हमारे जो निरंतरता में सहयोगी विभाग रहेंगे, महिला बाल विकास रहेगा, PhD रहेगा, पंचायती राज रहेगा, इन सब का हम सहयोग लेके इसमें बच्चों की जो मृत्यु दर है, जो डिहाइड्रेशन के कारण जो मृत्यु हो रही थी बच्चों की, उसको कोशिश करके इसको कम करने की कोशिश करेंगे।
0: और अब मौसम। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कल भी कई स्थानों पर आंधी और बारिश का दौर बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अब कहीं भी हीट वेव की स्थिति नहीं है और लोगों को झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिली है। विभाग के अनुसार शेखावाटी क्षेत्र के सीकर और चूरू में कल झमाझम बरसात हुई, वहीं श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में तेज आंधी से जनजीवन प्रभावित हुआ, लेकिन बाद में मौसम बारिश से सुहाना हो गया। अच्छी बारिश के बाद किसानों ने खरीफ फसलों की बुवाई शुरू कर दी है। बालोतरा में भी देर रात तूफानी आंधी के साथ बरसात हुई। बारिश बाड़मेर में मौसम ने अचानक करवट ली। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: जिले में देर रात अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। तेज अंधड़ आने से आसमान में धूल का गुब्बार छा गया। देखते ही देखते आसमान में काली घटाएं घिराई और बरसात का दौर शुरू हो गया। इस दौरान जिला मुख्यालय के अलावा बाटाड़ू, शेव, बाईतू और नोखड़ा समेत कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश हुई। मानसून पूर्व की बरसात से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। इस बीच खरीफ की फसलों की बुवाई की तैयारी कर रहे किसानों में खुशी का माहौल है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: मौसम विभाग ने आज जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा और जोधपुर संभाग में आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। किशाऊ बांध परियोजना पर राजस्थान सहित 6 राज्यों के बीच सहमति बनी, इससे प्रदेश की कृषि और पेयजल की जरूरतें पूरी होंगी। राज्य सरकार ने बालोतरा में दुर्लभ खनिजों की खोज को स्वीकृति दी, प्रदेश में जल्द ही NIA कोर्ट खोलने पर भी मंजूरी। NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया। और प्रदेश में कई इलाकों में बारिश से झुलसाने वाली गर्मी से राहत, किसानों ने खरीफ फसलों की बुवाई शुरू की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.7 MHz पर। श्रोताओं, समय 9:10 हुए हैं। प्रस्तुत है देशकांत।

0: श्रोता भी सुन रहे थे देश गान। ये आकाशवाणी का चुरू केंद्र है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम साहित्य सुगंध। आज आप सुनेंगे हिंदी वार्ता योग का महत्व। वार्ताकार है राम गोपाल जोशी।
1: इक्कीस जून को पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोगों को योग का महत्व बताया जाता है। तो आइए आज योग दिवस के अवसर पर हम भी योग क्या है, इसके क्या लाभ हैं आदि विषयों पर चर्चा करते हैं। अखिल विश्व को भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण देन है योग। संसार में तीन तत्व प्रसिद्ध हैं, आत्मा, परमात्मा तथा प्रकृति। इन्हीं तीन तत्वों से सृष्टि का निर्माण हुआ है। इन तीन तत्वों के स्वरूप एवं कार्यों की व्याख्या दर्शन शास्त्रों में भली भांति की गई है। योग दर्शन में अष्टांग योग का वर्णन है। योग के आठ अंग ये हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। सर्वप्रथम योग शब्द के अर्थ पर कुछ चिंतन किया जाए। आजकल योग अथवा योगा के नाम पर स्थान स्थान पर प्रशिक्षण दिए

जाते हैं तथा नियमित रूप से कक्षाओं का संचालन किया जाता है। उस योग में केवल आसन तथा प्राणायाम ही सिखाए जाते हैं। वहाँ अष्टांग योग के केवल दो ही अंगों का प्रयोग किया जाता है। इसका कारण यह है कि योग की ये कक्षाएं चलाने का उद्देश्य मात्र शरीर को स्वस्थ रखना तथा उसे बीमारियों से बचाना है। शरीर को स्वस्थ रखने में आसनों तथा प्राणायामों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किंतु योग शब्द तो व्यापक है, इसकी भूमिका शारीरिक स्वास्थ्य से भी आगे तक है। योग शब्द संस्कृत की युज धातु से बना है। युज का अर्थ है दो अथवा दो से अधिक वस्तुओं को जोड़ना। युज्यते असौ सहयोग, जो जोड़ता है उसे कहते हैं योग। आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का नाम है योग। इस कार्य के लिए महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का मार्ग बताया है। अष्टांग योग के आठ अंगों का विवरण इस प्रकार है। प्रथम यम, योग की प्रथम सीढ़ी यम है। यम मानव की मानसिक एवं चारित्रिक स्थिति को सही मार्ग पर लाने का प्रयास है। यम के पांच भाग होते हैं, जैसा कि योग दर्शन के साधन पाद के सूत्र संख्या 30 में बताया गया है। अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमः। अहिंसा अर्थात किसी प्राणी को सताना नहीं, सत्य अर्थात सही बोलना, सही व्यवहार करना। अस्तेय का अर्थ होता है किसी दूसरे की वस्तु की चोरी न करना। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है अपनी एकादश इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। दैनिक व्यवहार में कम से कम वस्तुओं को काम में लेना अपरिग्रह कहलाता है। दूसरा भाग नियम, योग का दूसरा अंग है नियम। योग दर्शन के साधन पाद के सूत्र संख्या 32 में बताया गया है, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणधानानि नियमः। नियम पांच हैं, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। शौच के माने हैं शरीर के साथ साथ मन आदि आंतरिक वृत्तियों में भी पवित्रता रखना। संतोष का अर्थ है प्राप्त साधनों से ही प्रसन्न रहना। तप का मतलब होता है शरीर की सभी इंद्रियों को कष्ट आने पर विचलित न होने का अभ्यस्त बनाना, शरीर को सहनशील बनाना। स्वाध्याय का अर्थ होता है सुअध्याय अर्थात सद्ग्रंथों का अध्ययन करना। अच्छे ग्रंथ प्रेरक होते हैं, उनको पढ़ने से मनुष्य में सकारात्मक एवं सृजनात्मक विचार उत्पन्न होते हैं, जिससे आदमी विकास पथ पर बढ़ता है। वेद कहता है उद्यानम ते नावयानम, हे मनुष्य तुझे हमेशा उन्नति मार्ग पर ही आगे बढ़ना है, अवनति मार्ग पर नहीं। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है ईश्वर पर विश्वास तथा ईश्वर के प्रति समर्पण, परमात्मा के प्रति निष्ठा रखना। आसन, योग का तीसरा अंग है आसन। योग दर्शन कहता है स्थिर सुखमासनम, लंबे समय तक ध्यान करने के लिए बैठने की अनेक स्थितियों में से सहज रूप से बैठने वाली किसी एक स्थिति तय करना और उसमें बैठने का अभ्यास करना। शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से शरीर को मयूरासन, धनुरासन, उष्ट्रासन आदि सैकड़ों आसनों के द्वारा स्वस्थ बनाना। आसनों ने शरीर में सिराओं में ठहरी हुई वागे वायु आगे निकल जाती है, नस नाड़ियों में लोच आ जाती है, अंग सक्रिय हो जाते हैं। प्राणायाम, योग का पांचवा अंग प्राणायाम है। प्राण तथा आयाम, इन दो शब्दों से प्राणायाम शब्द बना है। नासिका से अंदर लेने तथा बाहर निकालने वाले श्वास प्रश्वास को प्राण कहा जाता है। प्राणों को नियंत्रित करना प्राणायाम है। प्राण अर्थात श्वास को रोकने नियंत्रित करने की कई विधियां हैं। श्वास को तेजी से अंदर खींचना पूरक तथा तेजी से बाहर फेंकना रेचक कहलाता है। श्वास को अंदर भरकर अंदर ही काफी देर तक रोके रखना आभ्यंतर कुंभक तथा बाहर फेंककर बाहर ही रोके रखना बाह्य कुंभक कहलाता है। प्राणायाम करने से फेफड़ों का विकास होता है, वे मजबूत बनते हैं। प्राणायाम से अतिरिक्त ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है, वह वायु रक्त का शुद्धिकरण करती है। प्राणायाम आसनों का सहायक होता है। शरीर को अंगों को मोड़ने पर श्वास को बाहर निकालना होता है। छठा अंग प्रत्याहार, इंद्रियां अपने विषयों की ओर दौड़ती हैं। नेत्र का विषय रूप, कर्णों का शब्द, नासिका का गंध, रसना का रस, त्वचा का स्पर्श आदि विषय होते हैं।
इंद्रियों को बाहर विषयों की ओर दौड़ना छुड़ाकर

उनको अंदर की ओर आत्मा परमात्मा की ओर उन्मुख करना प्रत्याहार कहलाता है। सातवां धारणा, मस्तक, भ्रूमध्य, नासिका का अग्रभाग, कंठ, हृदय, नाभि आदि कई स्थानों को आधार बनाकर ध्यान किया जाता है। इन स्थानों में से एक को चुनकर उस पर मन को टिकाना, स्थिर करने का अभ्यास करना धारणा है। ध्यान से पूर्व की भूमिका धारणा होती है। सातवां भाग ध्यान, ध्यान योग का सातवां अंग है। प्राणायाम की अच्छी तरह साधना करकर प्राण को नियंत्रित करकर ईश्वर में ध्यान लगाना, ईश्वर के गुणों का चिंतन करना ध्यान कहलाता है। ध्यान करने से मन अपनी बाहरी वृत्तियों को छोड़कर अंदर की ओर जाने का अभ्यस्त हो जाता है। ध्यान से मन का जुड़ाव आत्मा और परमात्मा से होता है। ईश्वर आनंद का सागर है, वह सच्चिदानंद अर्थात सत चित एवं आनंद है। ध्यान के अभ्यास से आनंद सागर में डुबकियां लगा सकते हैं। इस आनंद को आध्यात्मिक आनंद कहते हैं। आठवां भाग समाधि, ध्यान की उच्चतम स्थिति समाधि है। समाधि की स्थिति में आत्मा का जुड़ाव परमात्मा से हो जाता है। समाधि में सभी ज्ञान इंद्रियां आत्मा परमात्मा की ओर मुड़ जाती हैं, वे आत्म केंद्रित हो जाती हैं। उस समय ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है। समाधि की स्थिति में मनुष्य समस्त सांसारिक चिंतनों से दूर हटकर मात्र ब्रह्मानंद में डूब जाता है। ब्रह्म से जुड़ाव को आत्मज्ञान, तत्वज्ञान, जीवन विज्ञान, अग्नि विज्ञान, ब्रह्म ज्ञान आदि कहा जाता है। योग का महत्व, योग से आध्यात्मिक शांति मिलती है। भौतिक पदार्थों की ओर तोड़ने से मन अशांत हो जाता है तथा इंद्रियां अनियंत्रित हो जाती हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने पर मन तथा इंद्रियां संयमित रहती हैं। भगवत गीता में लिखा है, समत्वम योग उच्यते, हानि लाभ, यश अपयश, जन्म मरण, सुख दुख, मान अपमान आदि सभी स्थितियों में स्थिरता से रहना योग है। न सुख प्राप्ति होने पर उछलना है और न दुख प्राप्ति पर विचलित होना है। आगे गीता कहती है, योग है कर्मसु कौशलम, सभी कर्मों को कुशलता से करना योग है। मन लगाकर एकाग्रता से, चतुरता, कुशलता से कार्य को करना योग है। इसीलिए गीता कहती है, योगस्थ कुरु कर्माणि, सभी कार्यों को योग युक्त होकर करो। योग दर्शन कहता है, योगश चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की समस्त वृत्तियों को नियंत्रित करना, लोभ लालच में न फंसना योग है। चित्त की वृत्तियों को तामसिक एवं राजसिक मार्गों से हटाकर सात्विक मार्ग पर लाना योग है। योग से मन की चंचल लालची वृत्तियां शांत हो जाती हैं। गीता में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, चंचलम ही मनो कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़म, तस्या हम निग्रहम मन्ने वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, यह मन बड़ा जिद्दी तथा बलवान है। जैसे वायु को पूर्ण रूप से रोकना कठिन है, उसी प्रकार मन को भी रोकना बहुत कठिन है। इस बात का जवाब देते हुए श्री कृष्ण मन को रोकने की विधि बताते हैं। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, निश्चित रूप से मन बहुत बलवान होता है और इसको रोकना कठिन है, किंतु वैराग्य तथा योगाभ्यास से इसको नियंत्रित किया जा सकता है। योग शरीर, मन, आत्मा तथा इंद्रियों को साधने का तथा इनको परमात्मा की ओर उन्मुख करने का सात्विक साधन है। अतः योग मार्ग पर चलकर मनुष्य मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है तथा आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। भगवत गीता के छठे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा गया है, योगो भवति दुःखः, योग समस्त दुखों को कुशलता से कार्य को करना योग है। इसीलिए गीता कहती है, योगस्थ कुरु कर्माणि, सभी कार्यों को योग युक्त होकर करो। योग दर्शन कहता है, योगश चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की समस्त वृत्तियों को नियंत्रित करना, लोभ लालच में न फंसना योग है। चित्त की वृत्तियों को तामसिक एवं राजसिक मार्गों से हटाकर सात्विक मार्ग पर लाना योग है। योग से मन की चंचल लालची वृत्तियां शांत हो जाती हैं। गीता में अर्जुन श्री कृष्ण से

0: कहते हैं, चंचलम ही मनोकृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्या हमने ग्रहम मन्ने वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, यह मन बड़ा जिद्दी तथा बलवान है। जैसे वायु को पूर्ण रूप से रोकना कठिन है, उसी प्रकार मन को भी रोकना बहुत कठिन है। इस बात का जवाब देते हुए श्री कृष्ण मन को रोकने की विधि बताते हैं। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, निश्चित रूप से मन बहुत बलवान होता है और इसको रोकना कठिन है, किंतु वैराग्य तथा योगाभ्यास से इसको नियंत्रित किया जा सकता है। योग शरीर मन आत्मा तथा इंद्रियों को साधने का तथा इनको परमात्मा की ओर उन्मुख करने का सात्विक साधन है। अतः योग मार्ग पर चलकर मनुष्य मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है तथा आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। भगवद गीता के 6वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा गया है, योगो भवति दुःखः, योग समस्त दुखों को हर लेता है। अतः सभी लोगों को भोग मार्ग में अधिक न फंसकर योग मार्ग को अपनाना चाहिए, यही श्रेय मार्ग है।
1: कार्यक्रम साहित्य सुगंध में अभी आपने सुनी हिंदी वार्ता, विषय रहा योग का महत्व, वार्ताकार राम गोपाल जोशी। हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। समय 9:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्र संसार।

सभी श्रोताओं को रेडियो साथी अंकिता का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है चित्र संसार में। ये कार्यक्रम किसी एक फिल्म की जानकारी पर आधारित है। आज हम बात करेंगे 1994 में डेविड धवन द्वारा निर्देशित फिल्म राजा बाबू की।

श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं 1994 में डेविड धवन द्वारा निर्देशित एक ब्लॉकबस्टर हिंदी कॉमेडी फिल्म राजा बाबू की। पात्रों की बात करें तो फिल्म में नायक की भूमिका में गोविंदा, जो कि राजा नाम से ही फेमस रहा, साथ ही इनके माता पिता कादर खान और माता अरुणय रानी। फिल्म में गोविंदा के मित्र के रूप में शक्ति कपूर नंदू नाम से किरदार निभाए और साथ ही जो नायिका है वो मधु के रूप में करिश्मा कपूर रही।

0: जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
3: श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं फिल्म राजा बाबू की, कार्यक्रम चित्र संसार में। श्रोताओं, फिल्म की कहानी एक अमीर और अनपढ़ गांव के लड़के

राजा यानी गोविंदा के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी जिद और प्यार को पाने के लिए खुद को एक शिक्षित और समझदार इंसान के रूप में पेश करता है। राजा बाबू एक धनी माता पिता कादर खान और अरुणा रानी का बेटा लाडला बेटा है, जिसे उन्होंने बचपन में अनाथालय से गोद लिया था और वो पूरे दिन अपने दोस्त नंदू यानी शक्ति कपूर के साथ गांव में मजे से घूमता रहता है।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
4: अंतल के पास श्रोताओं फिर से स्वागत है चित्र संसार में। हम बात कर रहे हैं फिल्म राजा बाबू की। पूरी की पूरी फिल्म जो है वो राजा बाबू यानी गोविंदा के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में माँ का बेटे के प्रति अंधा प्यार और पिता के द्वारा बार बार माँ को इस बात पर टोकना और साथ ही मित्र नंदू यानी शक्ति कपूर का अपने मित्र के प्रति इतना ज्यादा अपने मित्रता को दिखाया गया है कि इस फिल्म को देखकर, इसकी पिक्चराइजेशन को देखकर बहुत अच्छा लगता है। फिल्म के गाने उस समय से आज तक बेहद पसंद किए जा रहे हैं। फिल्म में राजा बाबू को शहर में रहने वाली मधुबाला यानी करिश्मा कपूर से एक तस्वीर देखकर प्यार हो जाता है। मधु को प्रभावित करने के लिए राजा एक अमीर और पढ़े लिखे इंसान का नाटक करता है। बाद में सच्चाई सामने आने पर मधु उसे सबके सामने छोड़ देती है, जिससे राजा और उसके माता पिता बहुत अपमानित महसूस करते हैं, खासकर उसके पिता यानी राजा बाबू के जो पिता है कादर खान, उनको बहुत ज्यादा अपमान महसूस होता है और वे कहीं ना कहीं इससे बहुत पिंच जाते हैं। और कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है, जिससे वे स्वयं अब ये नहीं चाहते कि इनकी, राजा बाबू की शादी जो है वो करिश्मा कपूर यानी मधुबाला से हो।

श्रोताओं, मधु के द्वारा की गई बेइज्जती के बाद राजा को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसे साथ ही पता चला कि वो एक गरीब परिवार से गोद लिया गया है। अब वो खुद को साबित करने और मधु के दिल को दोबारा जीतने के लिए एक जिम्मेदार और मेहनत करने वाला इंसान बन जाता है। इसमें उसका पूर्ण सहयोग जो है वो मित्र और माता के द्वारा दिया जाता है। अंत में सभी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और फिल्म का सुखद अंत होता है। राजा और मधु की शादी हो जाती है।

श्रोताओं, कार्यक्रम चित्र संसार में आज हमने बात की 1994 में डेविड धवन द्वारा निर्देशित एक ब्लॉकबस्टर हिंदी कॉमेडी फिल्म राजा बाबू की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी स्टोरी, और अगर आपने ये फिल्म पहले से देख रखी है तो हो सकता है पूरी स्टोरी आपको वापस रिकॉल हुई है। अगर नहीं देख रखी है तो फिर मन कर रहा होगा देखने का। पर आज का कार्यक्रम चित्र संसार यहीं तक, दे इजाजत अंकिता को।

श्रोता भी सुन रहे थे एक फिल्म की जानकारी पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्र संसार। ये आकाशवाणी का चुरू केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय दिन के 10 बजे हैं। अब आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

दोस्तों नमस्कार। सेल्युलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में सेल्युलॉइड के आसमान से पिछले सप्ताह एक सितारा नहीं बल्कि एक चांद उतरा था, 14वीं का चांद।

0: चौदहवीं का चांद यानी अभिनेत्री वहीदा रहमान ने विविध भारती के स्टूडियोज को और सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम को जगमग रोशन कर दिया था। बातों का सिलसिला कुछ इस तरह चला कि हमें प्रोग्राम के वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा, इसलिए इस हफ्ते भी वहीदा जी विविध भारती के इस कार्यक्रम को रोशन कर रही हैं और बातें वहीं से शुरू कर रही हैं जहां पिछले सप्ताह छूट गई थीं। वहीदा जी से बातें कर रहे हैं कमल शर्मा।
1: वहीदा जी, गोल्डी साहब का भी जिक्र आया था, फिर वो अधूरा रह गया। गोल्डी साहब का शुमार बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर्स में से होता है और उन्होंने बड़ी कामयाब फिल्में बनाई और आपने भी उनके साथ में काम किया। एक निर्देशक के रूप में, डायरेक्टर के रूप में आपने उनमें क्या खूबियां पाए?
2: वो भी काफी इंटेलिजेंट डायरेक्टर थे।
1: कैसा था उनका काम करने का स्टाइल जो था?
2: वेरी इजी टू वर्क विथ। गाइड में पहले शुरू में क्या होता था, अगर डायरेक्टर को कोई सजेशन दे, मेरा एक्सपीरियंस है दूसरे आर्टिस्ट को गाइड होना, तो उतना वो लाइक नहीं करते थे। खासकर वो दिमाग में उस वक्त तो ज्यादा ही था, अभी भी है थोड़ा बहुत, कि लड़की का क्या सजेशन लेना चाहिए, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो गोल्डी में ये बात नहीं थी, तो कभी कभी मैं कहती ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये मुझे नहीं ठीक लग रहा है, तो वो हाँ या ना नहीं कहते थे।

0: मगर उस चीज को ले लेते थे, फिर चुपके से उसको करा के मैं कह रही मैंने जो कहा वही किया ना आपने, तो कहते हाँ तो सही सजेशन था इसके लिए मैंने किया, यू नो। सो वो बात बड़ी अच्छी थी और गाइड का ट्रीटमेंट उनका बहुत ही बढ़िया और अच्छा था। खासकर गाइड का एक सीन था जहाँ मैं मुझसे छल किए जाए परफॉर्म करने से पहले बैक स्टेज पता चलता है कि राजू इज बीन अरेस्टेड फॉर फोर्जरी, और उसके या उससे पहले मार्को आते हैं, अपनी किताब प्रिंट हो चुकी है, तो वो राजू को कहते मुझे अंदर जाना है मिलना है, जाने नहीं देते तो वो मना करते हैं। अगर मैंने सोचा अगर आज कल आज की फिल्म होती तो जरूर एक वहाँ फाइट होनी थी बिटवीन राजू एंड मार्को, जो उसको इतना डिसेंटली और इतना डिग्निफाइड मैनर में उसको ट्रीट किया। वो खाली सिर्फ टाई थोड़ा टाइट करते हैं मार्को की और ठीक करके कोट कहते नहीं आप नहीं मिल सकते, मैं किताब दे दूंगा आप जाइए। मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा, छोटा सा सीन था मगर बहुत अच्छा लगा, और उसमें दोनों का यू नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स बहुत ही खूबसूरत, ही वाज अ वेरी गुड डायरेक्टर।
1: लेकिन वो जो गाना है मुझसे छल किए जाए ये तो जरूर हम सुनाना चाहेंगे,
0: जरूर।

0: वेदा जी, लिविंग लेजेंड में शुमार होता है दिलीप कुमार साहब का, और उनके साथ में भी आपने बहुत काम किया, बहुत एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। खास उससे मुझे यहाँ दिल दिया दर्द दिया याद आ रही है फिल्म, वोदरिंग हाइट्स से मेरे ख्याल से इंस्पायर्ड थी वो फिल्म। दिलीप साहब के बारे में कुछ बताइए।
1: दिलीप साहब के साथ पहली फिल्म थी मेरी दिल दिया दर्द लिया, और फिर उन्होंने मुझे ये किताब दी थी वुदरिंग हाइट्स के, इसको पढ़िए, इससे हमने इंस्पायर करके बना रहे। और मुझसे एक गलती हो गई, जब किताब पढ़ चुकी मैं एक बार सेट पे गई तो दिलीप साहब ने, कोई और असिस्टेंट ने पूछा, कैसी लगी आपको ये किताब, वही हद तो हम बना रहे। तो मैंने गलती से कह दिया, जी साहब किताब से

0: और फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं है. बोले क्या बात कर रही हैं आप, उसी से तो हम आइडिया लेके बना रहे हैं, मतलब इंस्पिरेशन के साथ. मैंने कहा वुदरिंग हाइट्स में कहानी का जोर शो होता है जब कैथरीन मर जाती है, उसके प्यार में जो इनका बुरा हाल होता है. यहाँ तो ये रूपा जी जो है अंत तक चली हैं और मिल भी जाती हैं, इनमें तो कहाँ से. तो बोले नहीं नहीं भैया जी, आप बहुत मीम मेक निकालती हैं, अब नहीं उसी से लेते हैं. तो अब पता नहीं दिलीप साहब को सही लगा कि नहीं लगा, आई डोंट नो, बट ही वॉज वेरी नाइस एंड कोऑपरेटिव. और दिलीप साहब की एक बड़ी अच्छी बात थी, अपना शॉट होने के बाद अगर उस वो शॉट में खुद हैं या ना, तो वो दूसरे आर्टिस्ट का देखते रहते थे कि सही हो रहा है कि नहीं. अगर उनको लगता था कि नहीं सही हो, तो चुपके से आके कह देते भाई इसको आप ऐसे ऐसे करें तो नहीं अच्छा होगा, इसको इस तरह करते हैं.
1: आपको कहा?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सबको कहते थे. दिल दिया, उसके बाद कौन सी थी, आदमी, राम और श्याम, इसमें
1: कोई खास सीन याद आता है जिसमें उन्होंने कहा कि?
0: राम और श्याम में एक लाइट सीन था, तो मैं अपने फादर को जाके कह रही हूँ कि एक आदमी मिला और ऐसे हुआ वैसे हुआ, वो गाड़ी जूम करके जाती, वो होता है यूं होता है, बोले बोले बोले जा रही हूँ. तो मैंने, हम कोडेकनाल में थे होटल में, मैंने कहा साहब डायलॉग दे दीजिए, सीन दे दीजिए, याद करना, नहीं तो आउटडोर में टाइम वेस्ट होगा. और मुझे बहुत ये लगता था कि यू नो प्रिपेयर्ड होना चाहिए. तो कहने लगे नहीं आपको याद करने की जरूरत नहीं. मैंने कहा क्यों? आपने कहा इतना लंबा सीन है. तो मेरी आदत थी यू नो, मेरी हाथ बहुत चला के बात करती हूँ और साउंड्स निकालती हूँ जैसे उनके. तो जो जो आप बोलती हैं उसको मैंने नोट किया है, आपको वही करना है. मगर जिस वक्त मैं क्या बोलती मुझे क्या पता. तो बोले एक रफली देख लीजिए, मैं कल दे दूंगा या नहीं तो आज रात को दूंगा मैं सीन. तो फिर भी मैं बड़ी काफी नर्वस थी कि भाई दे दीजिए याद करने डालो. तो मैं कहूँ पढ़ती रही, तो मैंने कहा कि ये क्या है भाई, जूम करके गाड़ी चली गई. तो बोले मैंने आपसे सुना है वो लफ्ज. मैंने कहा कब? तो वो आपको याद नहीं होगा, हम नोट करते रहते हैं आर्टिस्ट कब क्या से बिहेव करता है, तो इसमें आपको ज्यादा तकलीफ करने की जरूरत नहीं है. तो आप अपने खुल के जैसे आप भूल जाइए कि आप ये कैरेक्टर हैं, थोड़ी देर के लिए आप सोच लीजिए मैं बहिदा ही हूँ, हम कैमरा ऑन कर देंगे, सिर्फ थोड़े जो कनेक्टेड जॉइंट के डायलॉग्स हैं वो याद रखे, बाकी अपना कीजिए. मैंने कहा अच्छी बात है.
1: आदमी भी एक थोड़ी सी अलग तरह की फिल्म थी, टफ सा करेक्टर, इसमें भी बड़ा चैलेंजिंग रोल था क्योंकि ट्रायंगल था, लव ट्रायंगल था आदमी का. इसका कोई गाना सुनवा दिया जाए
0: आदमी का.
1: हाँ,
0: वो जो उनके एक्सीडेंट के बाद एक गाना होता है,
1: आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज ना दे,
0: वो समथिंग. हाँ,

0: अपने समकालीन जो आर्टिस्ट रही, आपकी जो समकालीन अभिनेत्रियां रही, उनमें आपको कौन बहुत पसंद थी?
1: मेरे से पहले जो थे, मैं मतलब मेरे से सीनियर, उसमें मुझे गीता बाली जी बहुत अच्छे लगते थे, फिर नरगिस जी, और मीना जी का क्या था, उनके एक जैसे रोल होने लगे थे, एक टाइप की पर्सनालिटी हो गई थी, हालांकि उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंस जो थी वो बहुत ही बढ़िया थी, इट वाज वेरी कैरिस्मेटिक, उनको देखो तो दिल करता था, कई नजर इधर उधर नहीं जाते थे, उन्हीं को देखते रहिए, बट ग्रेट फिल्म, आई मीन पर्सनालिटी थी उनकी। उसके बाद हमारे मेरे साथ के वक्त मैं कहूँ साधना बहुत अच्छे थी, और माला सिन्हा, नंदा, ये नहीं कि नंदा मेरी फ्रेंड है, मगर उनकी अपनी एक पर्सनालिटी थी, बड़ा स्वीट सा चेहरा था।
0: अच्छा, एक क्रिटिक के रूप में कभी अपनी फिल्मों को देखा आपने कि भाई ये सीन ऐसे हो जाना चाहिए था?
1: हाँ, वो तो इसीलिए मैं अपनी फिल्में देखती नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं देखती हूँ कि ओ हो इसको, इस सीन को और बेटर, गाइड में खुद मैं इतने नुक्स निकालती हूँ कि ओ हो ये क्या किया मैंने, इससे तो ऐसे करना चाहिए था, बेहतर होता था सीन। सो फिर मजा ही नहीं आता मुझे, जब तक मैं बिल्कुल बोर होके टीवी लगाऊं, मेरी फिल्म हो तो चलो वक्त गुजारने के लिए देख लेती, मैं कहती अभी जाने दो, हो चुका, अभी मैं क्रिटिसाइज करके क्या फायदा, तो वरना मैं उतना एंजॉय नहीं करती अपनी फिल्में।
0: टीवी की अगर बात करें तो उसमें आज का सिनेमा भी मौजूद है घर में ही, और पुरानी फिल्में भी आती हैं, तो नई फिल्में भी आप देखती होंगी, जब आप उन दोनों को कंपेयर करती हैं, उनका कंपैरिजन करती हैं, तो क्या महसूस होता है आपको?
1: नहीं देखिए, लेटली एक दो साल से कुछ बहुत ही अच्छा दौर आया है, जो हर किस्म की फिल्म बन रही है, मेनली शायद ये मल्टीप्लेक्सेस जो शुरू हो गए हैं, एक थिएटर में हर किस्म की फिल्म चल सकती है, चलती है, मगर थोड़े अरसे पहले कुछ ज्यादा ही वायलेंस पे बेस्ड होती थी, और कहानियां रट्टी पट्टी एक ही के, दो भाई हैं बिछड़ गए बचपन में, वो माँ होती है, एक अच्छी नेचुरली माँ तो अच्छी होना चाहिए, फिर जो अच्छा लड़का है माँ के साथ रह जाता है, यू नो इट वॉज वेरी बोरिंग। अभी थोड़ी वैरायटी आ गई है, और बोल्ड सब्जेक्ट्स, और आजकल के जो आर्टिस्ट हैं मेल या फीमेल, वो हर किस्म का रोल करने के लिए तैयार हो गए हैं, जो हमारे जमाने में नहीं होते थे।
0: आपका एक बेटा है, एक बेटी है, क्या नाम है उनके?
1: वो सब बड़े शर्माते हैं, क्यों कहते हैं आप क्यों हमारा वो करते हैं, एक लड़का एक लड़की है बस।
0: वो फिल्में देखते हैं आपकी?
1: मेरी फिल्में इतनी नहीं देखते हैं, कभी देखी नहीं उन्होंने। मेरी लड़की और लड़के ने कनाडा में ग्रेजुएशन किया, टोरंटो में, तो वहाँ मेरी लड़की ने फिल्म स्टडीज की, तो फिर एक बार वापस जो हिंदुस्तान आई तो कहने लगी जो प्यासा में ऐसी है, प्यासा में, मैंने कहा बेटा आपने प्यासा कब देखी, आपको तो अच्छी नहीं लगती थी हमारी मेरी फिल्में देखना, तो बोले टोरंटो में देखी। ओह, मैंने कहा अच्छा थिएटर में लगी थी प्यासा, तो बोले नहीं कॉलेज में देखी, मैंने कहा कॉलेज में प्यासा कैसे दिखाई गई, तो कहने लगे वहाँ के आर्काइव में प्यासा रखी हुई है। मेरे ख्याल से गुरुदत्त जी की एक दो फिल्में हैं, तो आई फेल्ट वेरी प्राउड कि वाह क्या बात है, तो उसने कहा मैंने प्यासा देखी है। अब वो ख्वाहिश जाहिर कर रही हैं, और दोनों बच्चे मेरे, कि हम अब आपके साहब बीबी और गुलाम देखना चाहते हैं।
0: तो यहाँ प्यासा का भी जिक्र आया है, और हाँ। साहब बीबी गुलाम का भी आया है, हाँ। साहब बीबी गुलाम का, तो इन दोनों में से कोई किसी एक फिल्म का ही गाना और हो जाए उसमें।
1: प्यासा का वो है ये दुनिया में, हाँ नहीं जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यारों को प्यार मिला,
0: हेमंत कुमार साहब के।
1: हाँ, हेमंत कुमार साहब के।

0: वैसे जी, दिल दिया दर्द लिया में प्राण साहब का भी एक बहुत ही अलग तरह का रोल था और विलन थे उसमें, और सिनेमा के बहुत ही नामी कलाकार तो हैं ही, उनसे भी जुड़ा कोई संस्मरण हम जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि उनके साथ में भी आपकी कई फिल्में आई, राम और श्याम में भी वो खलनायक थे।
1: बहुत फिल्मों में थे, पत्थर के सनम, राम और श्याम, दिल दिया दर्द लिया, आदमी, तो ये बहुत इतने बुरे, मतलब यू नो टू हेट हिम ऑन द स्क्रीन, मगर उतने जेंटलमैन थे लाइफ में, बहुत ही शरीफ। और उनकी एक अजीब बात थी, उन्होंने मुझे कहा, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ सुन के, कि उन्होंने जिंदगी में कभी कोई फल नहीं खाया, वो फल खा नहीं सकते क्योंकि फल की खुशबू से तक उनको मतली आती थी। मैंने कहा अच्छा, ये पहली बार सुना मैंने, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, और जोक्स बहुत क्रैक किया करते थे, इट वॉज अच्छा लगता था।
0: लेकिन उन्होंने कामयाबी का फल अच्छा
1: बिल्कुल
0: चखा। आपकी फिल्मों की अगर हम बात करें तो मुझे दो तीन फिल्में और बहुत याद आती हैं, रुला भी देती हैं। उसमें एक मास्टरपीस है आपकी एक और फिल्म, तीसरी कसम, शैलेंद्र साहब उससे जुड़े हुए थे, जिनकी बड़ी दर्दनाक, फिर उसके साथ में जो घटना ट्रेजेडी हुई उसके साथ में, वो भी राज कपूर साहब आपके उसमें नायक थे, और मेरे खास बासु भट्टाचार्य साहब ने उसको डायरेक्ट किया था, उसके बारे में जरूर बताइए, उस फिल्म के बारे में। एक तो उसमें वो पूरी कमाल की है वो फिल्म, आज भी उसको जितनी बार देखा जाए ऐसे मन ही नहीं भरता उस फिल्म को।
1: उसकी बड़ी सिंपल कहानी थी, बड़ी सिंपल स्वीट पिक्चर थी, मगर उसकी फिलॉसफी बहुत डीप थी। उनके गानों में भी सिंपल वर्ड्स थे, मगर उसकी मीनिंग, उसकी फिलॉसफी में बहुत डेप्थ थी। और आप मानोगे नहीं, आधी से ज्यादा फिल्म बनी थी बिना, मतलब एक सीन में मैं और राजी हैं, तो मैं नहीं हूँ या नहीं तो राजी नहीं है। तो डायरेक्टर ने बड़ी मुश्किल से, ये नहीं क्योंकि वो बहुत देर से आते थे सेट्स पे, और वो बहुत मसरूफ थे, अपने संगम बन रही थी उसके बाद, हाँ संगम बन रही थी उस वक्त, वो इतने ज्यादा उसमें जुड़े हुए थे, मसरूफ थे, तो इसको उन्होंने इतनी तवज्जो नहीं दी। उन्होंने इसलिए की क्योंकि शैलेंद्र उनके दोस्त थे और वो उसके प्रोड्यूसर थे। बड़ी मुश्किल होती थी, मगर देख के फिल्म मुझे खुद ताज्जुब होता।

0: देख कैसी बनी फिल्म, क्योंकि कई दफा सीन्स में एक बैक शॉट ले लिया कंबाइन, उसके बाद मेरे क्लोजअप हो रहे हैं और मेरे से बैक शॉट ले लिया तो उसके बाद राज साहब के क्लोजअप हो रहे हैं, मगर सीन टोटली ऑन द स्क्रीन एक सीन होता था। तो वही वैसे हालात में फिल्म बनी और फिर वो मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में ऑफिशियल एंट्री थी, उसके लिए हम साथ गए थे मैं और राज जी। और वाकई में मैंने देखा राज जी यूज टू गेट मॉब्ड इन मॉस्को, लिटरली राजू राजू राजू, यू नो बहुत। और जो जो रशियन था वो उनके पूरे गाने, एक क्या 420 और फिल्मों के गाने आवारा के सब गाते थे।
1: वेदा जी, इस फिल्म में नौटंकी वाली का एक किरदार किया था और म्यूजिक भी उसमें काफी कुछ उसी तरह का था, शंकर जयकिशन साहब का संगीत था। इस फिल्म में क्या आपको संतुष्टि मिली भूमिका निभा करके? तीसरी कसम की अगर मैं बात करूं,
0: हाँ मुझे अच्छा लगा था क्योंकि वो भी एक डिफरेंट कैरेक्टर था, यू नो, और सिंपल एंड वेरी स्वीट। उससे वो फिल्म कभी भी देखो बोर नहीं लगती है, यू नो, अच्छी लगती है, दिल को छूती है।
1: कुछ चीजें ऐसी कि जैसे सेल्यूलॉइड पर पोएट्री किसी ने लिख दी, कुछ उसी तरह की वो फिल्म है, उसमें भी गाने बहुत अच्छे थे। एक गाना उस फिल्म का हम सुनवाए,
0: सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, हमें तो पैदल ही जाना है।

0: नहीं सब कुछ चुकाना है सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है।
1: बासु भट्टाचार्य उन्होंने हालांकि बड़ी ऑफ बीट फिल्में बनाई, समानांतर सिनेमा से भी उनका नाम जोड़ा जाता था, पैरेलल सिनेमा से, और इस फिल्म में उनके साथ में काम करने का मौका मिला आपको। बिमल रॉय साहब के साथ में उनका लंबा एसोसिएशन रहा, उनको कैसा निर्देशक पाया आपने?
2: पहले उनको समझना जरा मुश्किल था क्योंकि वो नेचुरली उनकी पहली फिल्म थी तो वो बड़े टेंस रहते थे और फिर अक्सर उनको उनका कैमरामैन के साथ ये नोकझोंक हो जाती थी छटपट। और फिर एक बार राजनी का वहीदा जी ये क्या हो रहा है कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने उनसे कहा तो वो बेचारे नए हैं तो आप उनको बता दीजिए कि जो गलत हो रहा है। तो कहने लगे नहीं मेरा ये प्रिंसिपल है जब मैं एक्टर बनता हूँ मैं सिर्फ एक्टर रहता हूँ। मैंने कहा मैं मानती हूँ मगर आप इतने पुराने डायरेक्टर हैं बेचारा वो नया है उसकी मदद करो, तो फिर मुझे क्यों कह रहे हैं? तो बोले कोई तो चाहिए ना कंप्लेन करने के लिए। तो मैंने कहा आपको क्या मैं ही मिली जो आप मुझे कंप्लेन क्यों कर रहे हैं, उससे मैं और परेशान हो रही हूँ कि आपको लग रहा है गलत तो है तो क्या करें। तो ऑन द होल जब फाइनली फिल्म बनी तो बहुत अच्छी बनी।

0: नहीं थी, तो हमने कहा वेल ठीक हो गई यू नो।
1: वेदा जी, आपने सत्यजीत रे साहब की भी किसी फिल्म में काम किया, कौन सी फिल्म थी वो?
0: अभिजान।
1: अभिजान बंगला आपको
0: नहीं, उसमें इतनी ज्यादा शुद्ध बंगाली बोलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कहा ये बिहारी लड़की है, टूटी फूटी बंगाली और भोजपुरी जबान बोलती है, तो उसमें कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। तो मगर जब उसका ऑफर आया, मुझे बहुत बेहद खुशी हुई और ताज्जुब भी हुआ।
1: उसके पहले आपने उनकी कोई फिल्म देखी थी सत्यजीत रे?
0: हाँ, पाथर पंचली देखी थी। अच्छा। उसके बाद भी और दो तीन फिल्में देखी थी मैंने, तो आई वॉज रियली वेरी थ्रिल्ड और बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। और
1: उन्होंने क्या कहा के बारे में? उनको कैसा लगा आपका काम?
0: हाँ, उनको उन्होंने कहा जब हम डिस्कस कर रहे थे सौमित्री चटर्जी और हम, उनके वो फेवरेट एक्टर थे, तो कि इस कैरेक्टर को किसको लिया जाए, क्योंकि कोई प्योर बंगाली की जरूरत नहीं है, जो जबान जो बोलती है उसके लिए। तो सबने कोरस में कहा वही दरहमान, तो मैंने कहा सच? तो बोले आई वॉज रियली थ्रिल्ड। और उनका समझाना और शॉट लेना इतना प्रिसाइज होता था, ना वक्त जाया होता था ना नेगेटिव जाया। वो तो कहते थे भाई मेरा नेगेटिव इतना निकलता है, इससे कोई चूड़ियां प्लास्टिक की चूड़ियां भी नहीं बन सकती है, क्योंकि आई कांट अफोर्ड, क्योंकि इतने छोटे बजट पे फिल्म बनती है। हम नहीं कह रीटेक्स इतने सारे 20-25 रीटेक हो रहे हैं, या इतने ज्यादा शॉट्स ले लिए उसके बाद निकाल के फेंक दिया। मैं दिमाग में पेपर पे लिख लेता हूँ कि इसकी टाइमिंग इतनी इतना ही होगा शॉट, उससे शायद 3-4 फुट ज्यादा एक्स्ट्रा मिलेगा आपको शुरू के लिए या एंड के लिए, वरना नहीं।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान, इनसे बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा। सुनिए आगे की बातचीत।
1: दूसरे डायरेक्टर्स आए तो फिर भी कहीं ना कहीं मोल भाव तो हो ही जाता है पैसे को लेकर के, जब उनका ऑफर आया पैसे की क्या बात हुई? पैसे आपने
0: सवाल ही नहीं पैदा हुआ था, वो ऑलरेडी वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट 10 डायरेक्टर्स में थे। तो पैसा देखिए, हम पैसे के लिए जरूर करते हैं, आफ्टर ऑल इट्स अ प्रोफेशन, कोई चैरिटी तो नहीं कर रहे, मगर कई दफा जैसे रेशमा शेरा मैंने की, सुनील जी ने कहा था ये 25-30 में बनेगी और आप कहिए, क्योंकि उस वक्त सुखदेव डायरेक्टर थे, सुखदेव या खुद सुनील या मैं, कोई आर्टिस्ट पैसे नहीं लेगा, जब पिक्चर ख़त्म हो जाएगी तो हम पैसे लेंगे और बिक जाएगी। तो वो उसके इतने मुश्किलात से गुजर रहे थे वो, तो उस फिल्म में मैंने नहीं पैसे लिए रेशमा शेरा में। और जब सत्यजीत ने कहा, मैंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं आपसे पैसे की बात करूं। कई दफ़ा आर्टिस्ट अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए या बहुत बढ़िया डायरेक्टर के लिए काम करते हैं बिना पैसे के, या बहुत कम पैसे जो डायरेक्टर के मन में आए तो दे दे, तो दे दे, नहीं तो नहीं।
1: आपकी एक फिल्म और है बांग्ला, जीवन जीरो को।
0: हाँ, वो नहीं ठीक बनी, मैंने हालांकि देखी भी नहीं, क्योंकि उसमें बनती रही रुकती रही, उसमें कोई एक्सीडेंट हो गया था, तो उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर कुछ अरेस्ट भी हो गए थे, कॉम्प्लिकेशंस थे, तो वो ठीक से मुझे मजा नहीं आया वो फिल्म में काम करके।
1: मनोज कुमार साहब का नाम आया था, मनोज जी का नाम लिया जाता है बड़े ही सफल बड़े टैलेंटेड डायरेक्टर्स में से, जैसे गोल्डी साहब को लोग याद करते हैं, तो कहते हैं कि मनोज साहब, ये छोटा मुंह बड़ी बात होगी, कहते हैं कि वो एक्टर से बेहतर डायरेक्टर है। आप क्या कहेंगे उनके बारे में, कैसे उनके साथ में काम?
0: नहीं, आई एग्री विथ हिम, वो आई एग्री विथ हिम, इज अ बेटर डायरेक्टर देन एन एक्टर।
1: कोई यादगार घटना है उनके साथ?
0: उनके साथ एक फिल्म बनी थी पत्थर के सनम।
1: जी जी।
0: तो वो बैठ के, उस वक्त क्या होता था कि मोबाइल फोन्स नहीं थे और एसी मेकअप रूम नहीं होते थे, ना वैन्स होते थे, तो हम ज्यादातर एक बार सेट पे गए तो सेट पे ही बैठे रहते थे, जब तक लंच ब्रेक ना हो या पैकअप ना हो, तो आपस में बैठ के बातें करते थे जब लाइटिंग हो रही हो। तो सब एक्टर्स हम साथ में, पिछली शूटिंग कौन सी थी, क्या सीन था, वो डायरेक्टर कैसे हैं, ये बातें करते थे। तो मनोज हमेशा अपनी कहानियां, अपने सीन सुनाया करते थे, तो उससे मुझे लगा कि यार लिखते बहुत अच्छा है। तो पत्थर के सनम के डायरेक्टर को मैंने कहा इन चंद सीन आप इनसे लिखवाया कीजिए, लिखवाइए, क्योंकि बहुत अच्छा लिखते हैं। तो बोले अच्छा क्यों? मैंने कहा ये सीन्स अपने फिल्मों के सुना रहे हैं तो उससे लगता है कि बात है इस आदमी में। तो काफी सारे पत्थर के सनम के सीन्स उन्होंने फिर मनोज से लिखवाए, यू नो, तो लाइट सीन्स वगैरह बहुत अच्छे थे।
1: अच्छा वहीदा जी, फिल्मों में तो गाने पिक्चराइज किए जाते हैं, आपके ऊपर बहुत

0: लता जी ने आपके लिए बहुत सारे गाने गाए हैं। लता जी से कोई इंटरेस्टिंग मुलाकात याद है आपको? उन्होंने उनको वो गाना आप पे जब जो पिक्चराइज हुआ उसको देख करके उनको मजा आया होगा, आपको मजा आया होगा वो गाना जो उन्होंने आपके लिए गाया हो।
1: लता जी ने कहा, मुझे बाद में कई डायरेक्टरों ने भी कहा, वो हमेशा पूछा करती थी कौन सा आर्टिस्ट परफॉर्म करने वाला है, तो वो बताते थे कि नूतन या मीना कुमारी हुआ वो। तो एक बार एक म्यूजिक डायरेक्टर ने पूछा, ये क्या फर्क पड़ता है आपको, गाने से मतलब है, आर्टिस्ट क्यों पूछते हैं? तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं जब उनकी फिल्में देखती हूँ या पर्सनली मिलती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ कि वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बोलते हैं, कि ये मैं उसमें अल्लाप लूँ या इस ढंग से गाऊँ, तो क्या वो करेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा कि नहीं। तो वो भी बहुत इंटेलिजेंट आर्टिस्ट हैं, तो वो हमेशा पूछती हैं। तो एक वक्त क्या हुआ, उनको चॉकलेट्स का बहुत शौक है, तो बांग्लादेश की वॉर जब हुई तो मैं प्रोग्राम कमेटी में थी, तो मेरा जिम्मा था कि फंड कलेक्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो मैंने इंडस्ट्री को जमा करके बहुत बड़ा शो किया था और लता जी मान नहीं रही थी। कल्याण जी, आनंद जी भाई जाके बहुत कहा, फिर सुनील नरगिस ने कहा कि लता जी आ जाइए इस शो में, बहुत अच्छा होगा, बहुत बड़ा शो होने वाला है। तो पता नहीं क्यों उन्होंने कहा, नहीं, बहुत बरसों से मैंने हिंदुस्तान में शो करना छोड़ दिया। तो फिर कल्याण जी भाई से मैंने कहा, चलो एक बार आखिरी बार कोशिश करते हैं। कहीं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उनकी गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो हम पहुंच गए बिना अपॉइंटमेंट के। वो देख के फिर चौंक गए कि ये फिर आ गए। तो बस ब्रेक हुआ तो मैंने कहा, लता जी आपके बगैर शो पूरा नहीं होगा, और किशोरदा भी मान गए हैं, तो वो कहते कि

0: लता के बगैर मुझे नहीं मजा आएगा, ये क्या बात है ये। नहीं क्योंकि तुम क्यों नहीं मानती, मुझे सुलीन ने भी कहा, नरगिस जी ने भी कहा, मैं नहीं करती। पता नहीं क्यों अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई जो जबान से निकल गई, जो बहुत उसका फायदा हुआ। मैंने कहा लता जी क्या है, हिंदुस्तान में सिर्फ दो हीरोइंस हैं। तो वो देखने लगी, बोले दो कौन? मैंने कहा एक इंदिरा गांधी जी हैं, फिर एक आप हैं। तो वो इतनी ऐसे मुंह खुला देखने लगी, और फिर कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई मुझे देखने लगे, ये क्या बोल रहे हैं। वो बोल के एक सेकंड के लिए सन्नाटा हुआ, मैंने सोचा गलत कहा है कि सही कहा, मेरी समझ में नहीं आया। तो फिर वो मुस्कुराने लगे, तो बोले अच्छा भाई तुम तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती हो, अच्छा आ जाऊंगी।
1: कहीं कहीं लड़ियाना पड़ता है, मान मनावर सब चलता है। तो फिर वो आई। तो यहाँ लता जी का कौन सा गाना आप सुनवाना चाहेंगे जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है?
0: का हम दोनों का गाना, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम। मैं जब भी सुनती हूँ चुपचाप खामोशी से, तो मेरा दिल भर आता है, तो मुझे वो बहुत ही अच्छा लगता है गाना। उनके तो खैर वो इतने हैं, मुश्किल है ढूंढना या चुनना।

0: खामोशी जो है, अंदर की जो पीड़ा है, वो जिस तरह से वो अंदर ही अंदर बर्दाश्त कर रही चीजों को, वो रुला देती है वो। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही कठिन रोल है, जिसमें आपके पास में संवादों से ज्यादा आपको अपने चेहरे से, अपनी आंखों से बात करनी है। कोई यादगार घटना इस फिल्म से जुड़ी हुई?
1: तो वो सीन डिफिकल्ट था, हालांकि उसमें डायलॉग्स नहीं थे। जब राजेश खन्ना के साथ, राजेश खन्ना को इससे ज्यादा लगाव हो जाता है, पहले

0: केस में इसको धर्मेंद्र के साथ लगा होता है, तो वो चले जाते हैं शादी करके जब ठीक हो जाते हैं, तो फिर जब दोबारा ये रिपीटेशन होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि हमारे प्रोफेशन में आपको ऐसा लगाव होना नहीं चाहिए, यू नो ये मुश्किल बात है। तब इसको महसूस होता है कि अब ये कैरेक्टर को इससे लगाव हो गया है, अब कैसे बचे। तो वो उसको बड़ा समझाने की कोशिश करती, होता नहीं है, तो वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। वो बड़ा कठिन सीन था क्योंकि वो दरवाजा ठोक रहा है, पीट रहा है, आवाजें दे रहा है, राधा राधा राधा, और वो कमरे से निकलती नहीं है। कैसे वो अपने आप को कंट्रोल करती है और उसका स्ट्रेन उस पर इतना पड़ता है कि वो देन शी गोज मैड। तो वो बड़ा डिफिकल्ट सीन था। और एक डिफिकल्टी हो रही थी क्योंकि जैसे मैं राजेश को बोट राइड पे ले जाती हूँ, वो गाना गा रहे हैं और मैं उसके साथ हूँ एज ए नर्स, और वो इसको सोच रहा है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मुझे भी, मैं प्यार कर रहा हूँ तो ये भी शायद मुझे प्यार कर रही है। उसमें उस वक्त प्रॉब्लम क्या हुई थी, इट वॉज वेरी कॉमिकल, इट वॉज मेरे जो एक्सप्रेशन थे सीरियस थे क्योंकि वो महसूस कर रही है, ओह ये तो फिर से गड़बड़ हो रही है, अब इसको मेरे से लगाव होने लगा है। वो गाना गा रहे हैं और मैं सोच रही हूँ कि अब कैसे इसको मैं दूर करूँ और कैसे समझाऊं। तो उस वक्त राजेश खन्ना नए नए थे तो वो लिप मूवमेंट नहीं कैच कर पाते थे, और जब ऐसे हम एम्ब्रेस कर रहे हैं तो कैमरा पीछे जाता था, तो मैं राजेश कहते थे वेदा जी प्लीज हेल्प मी, तो मेरा स्टार्टिंग दे दीजिए। अब उनके गाना उनका है तो मैं कहती थी ये शाम कुछ अजीब है, फिर वो कैमरा आ जाता था तो मैं फिर चुप उदास चेहरा लेके, बड़ी मुश्किल हुई, बड़ी मुश्किल हुई, और हंसते थे। मैंने कहा राजेश थोड़ा कॉन्सेंट तो कीजिए, तो बोले क्या करूं भूल जाता हूं, तो आप मुझे थोड़ा क्यू दे दिया करें। वो कैमरा पीछे राजेश के फेस पे जाता था, क्यू मैं देती थी, गाना उनका था, तो बड़ी प्रॉब्लम हुई।
1: वही गाना सुनते हैं।
0: हाँ जी, वो बहुत मेरा फेवरेट गाना है।
2: ओ शाम कुछ

0: वहीदा जी, असिस्टेंट साहब का जिक्र आया, फिर हेमंदा की वो फिल्म थी, हेमंदा ने गाया भी, संगीत भी दिया और फिल्में भी प्रोड्यूस की, कोहरा और 20 साल बाद, ये दो फिल्में भी उन्हीं की थी। हेमंत साहब की फिल्मों की खासियत ये रही कि संगीत जो है उनका बहुत बढ़िया रहा। उनसे कोई पर्सनल आपकी मुलाकात, कोई ऐसी यादगार मुलाकात हुई?
1: पर्सनल एक बड़ा अजीब सा इंसिडेंट हुआ कि हेमंदा को गुरुदत्त जी की वजह से वो गाने वगैरह गाते थे, सेट पे आते थे, मिले हैं। तो 20 साल बाद नहीं, कोहरा के वक्त शूटिंग खत्म हो गई तो हम कोई फिल्म देखने गए थे, मैं, मेरी बहनें थी, तो उसी थिएटर में हेमंदा भी थे, उनकी बीवी और भी उनके फैमिली वाले थे। तो जब फिल्म खत्म हुई तो वो माशाल्लाह वो कुछ 6 फुट 4 इंच के थे और मैं ऊपर की सीट पे थी, तो वो मुड़े तो उन्होंने मुझे देखा, तो सुना उन्होंने, मुझे नमस्कार किया। और कभी कभी मैं खो जाती थी, मतलब एब्सेंट माइंडेड सी, तो मैंने नहीं जवाब दिया, मैं चली आई। इत्तेफाक से मेरी बहनों ने भी नहीं देखा, नहीं तो वो विश करते, उनको जानते थे। तो उनकी बीबी उनसे बहुत नाराज हुई कि ये क्या बात है, आप प्रोड्यूसर हैं, दूसरी पिक्चर बना रहे हैं, कब से जानती हैं वहीदा, और आपने नमस्कार किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, चली गई। तो हेमंदा ने कहा नहीं, जितना मैं उनको जानता हूँ मुझे लगता वो वहां थी नहीं। बोले क्या मतलब आपका वहां नहीं थी? वो फिजिकली थी, वो फिजिकली थी, मेंटली नहीं थी, क्योंकि शी इज नॉट अ रूड पर्सन, हो नहीं सकता। बोले अरे इतने लंबे चौड़े आदमी के उनको तो आपको दिखाई नहीं दिए। तो नहीं, मेरा तो ख्याल है ऐसे। खैर उन दोनों की बहस हुई तो एक दो महीने के बाद उनकी सेट पे मैं गई, तो मुझे पूछने गया वो फिल्म कैसी लगी आपको फलाने थिएटर में। हाँ मैंने कहा बड़ी अच्छी थी, वो नहीं अच्छा था, ये था वो था, काफी बहस हुई। फिर मैंने सोचा आपको कैसा पता मैंने वो फिल्म देखी? तो बोले क्योंकि मैं भी वहीं था। ओ रियली? मैंने कहा मैंने नहीं देखा आपको, आपने नहीं देखा ना, मुझे पता था आपने मुझे नहीं देखा। और मजे की तो बात यह है, मैंने कहा क्योंकि मैं ऊंचाई पे थी और कद कम, वो नीचे थे, मगर बराबर आई टू आई लेवल ठीक था। तो बोले मैंने आपको नमस्कार किया, आपने सीधे स्ट्रेट देखा और मुड़ के चली गई। तो मेरी बीवी मुझसे बड़ी नाराज हुई, और मुझे पता था कि आप मेंटली नहीं थी, वो पिक्चर के बारे में सोच रही थी कि पता नहीं का। तो बड़ी नाइस ऑफ फिल्म के वो मिसअंडरस्टैंड नहीं किया उन्होंने।
0: वहीदा जी, उनकी फिल्म 20 साल बाद की अगर हम बात करें, या कोहरा, संगीत दोनों का बहुत बढ़िया रहा, किस फिल्म का गाना सुनवाएंगे आप?
1: कोहरा का गाना झूम झूम ढलती रात।

0: वैसे जी फिल्मों की खूब बातें हो गई, लेकिन फिल्मों से हट करके भी आप काम कर रही हैं, और खास तौर से हमें पता चला कि बेसहारा बेघर जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी आप अपनी सर्विसेज दे रही हैं। उस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, क्या है ये काम?
1: ये एनजीओ है जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए शुरू हुआ 10 साल पहले, और 10 साल से चल रहा है और काफ़ी कामयाब हुआ है। और ये जो स्लम्स के बच्चे होते हैं वो स्कूल जाते हैं म्यूनिसिपल स्कूल फर्स्ट स्टैंडर्ड से, मगर उनका फाउंडेशन नहीं बनता प्राइमरी एजुकेशन के लिए, और वो बेचारे माँ बाप दोनों काम करते हैं तो वो उनकी ज़िंदगी फाउंडेशन नहीं, क्योंकि चूंकि ठीक होता है तो वो भटक जाते हैं, सड़कों में घूमते रहते कुछ नहीं। तो ये एक फाउंडर हैं निर्मला निकेतन की, शुरू किया। तो अभी धीरे धीरे सारे हिंदुस्तान में इसका शुरू हुआ, इसका नाम है प्रथम, प्रथम मतलब फर्स्ट स्टेप। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी आई फील, तालीम की एजुकेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है हमारे मुल्क में, उससे कई बातें सॉल्व हो सकती हैं। तो कई माँ बाप को पहले जाके समझाना पड़ता है, वो सोचते हैं हाँ म्यूनसिपल स्कूल, पहले तो वो डर जाते हैं कि हम पे नहीं कर सकते, म्यूनसिपल स्कूल तो फ्री है, अब आप लोग आ गए पढ़ाने के लिए हम नहीं पे कर सकते। हम कहते हैं नहीं, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मोहल्लों में हम लड़कियों को पिकअप करते हैं टीचर्स, उनको कहानियों से गानों से उनका दिलचस्पी पैदा करते हैं। मेन मकसद तो बच्चों को पढ़ाना, फिर वो स्कूल जाते हैं। तो ये लड़कियों की ज़िंदगी बड़ी इम्प्रूव हुई है, मगर आगे का जेनरेशन जो पढ़ा लिखा होगा वो अपने बच्चे या अपने छोटे भाई बहनों को अनपढ़ नहीं रखेंगे, वो भी चाहेंगे कि वो भी ज़रूर पढ़ें कि इसका फ़ायदा क्या है।
0: तो वेदा जी, जैसी आपको तृप्ति संतुष्टि मिली अपनी भूमिकाओं को करते हुए फिल्मों में, वैसी संतुष्टि इसमें मिली आपको?
1: हाँ जी।
0: वेदा जी, दिल तो नहीं करता कि आपको छोड़ें, आपसे बात करने का और भी मन करता है, और हम अपनी ओर से विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की ओर से और विविध भारती की ओर से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान ने अपने जीवन, अपने करियर, अपने साथियों और न जाने किन किन विषयों पर बातें की। इनसे कमल शर्मा ने बातचीत की। चलते चलते आपको ये बता दें, इस कार्यक्रम को तैयार करने में हमारे तकनीकी सहयोगी थे दिलीप कुलकर्णी, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। हम आपकी सेवा में आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। 11 बजे हैं। कार्यक्रम विवरण में लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय।

अब से थोड़ी देर बाद 11:05 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा चित्रपट संगीत। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे दिन में 12:00। 12:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम होगा माटी के स्वर। कलाकार होंगे शमीम जोधपुरी। दिन में 1:00 हिंदी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी जयपुर से रिले करेंगे। ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा घर आंगन दिन में 1:05 पर। चर्चा होगी प्रतिस्पर्धा के दौर में अपने लाडले लाडले के लिए कैसे चयन करें सही अध्ययन संस्थान का, कैसे पहचाने कि कौन सा अध्ययन संस्थान आपके लाडले लाडले के लिए सही है, सरकार द्वारा अनुदानित विभिन्न कोर्स की जानकारी और उनकी चयन प्रक्रिया। दिन में 2:00 मिडडे न्यूज और 2:15 पर दोपहर समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने।

शाम 4:58 पर हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी। युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युवाणी, शाम 5 बजे चर्चा होगी मरुस्थलीकरण और सूखे से मुकाबले का विश्व दिवस। उत्कलमणि गोपबंधु दास की पुण्यतिथि, डीप फेक क्या है जानकारी दी जाएगी पीएम 1500 कार्यक्रम में, विद्यालयीन शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना। शाम 5:55 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। शाम 6 बजे हिंदी में समाचार, 6:05 अंग्रेजी में समाचार और 6:20 में संस्कृत में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। देशभक्ति फिल्मी गीत आप सुनेंगे शाम 6:10 पर। शाम 6:30 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी जयपुर से रिले करेंगे। खेती और गृहस्थी यह कार्यक्रम होगा शाम 7 बजे। सामयिक चर्चा होगी विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस, हरे चारे की उपयोगिता, वार्ता होगी पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान, फायदे महत्व व सावधानियां, वार्ताकार होंगे

डॉक्टर अमित खत्री। एक और चर्चा होगी सरकारी योजनाओं के फायदे, खेतीबाड़ी में नवाचार के फायदे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा गुलदस्ता रात्रि 8 बजे।

रात 8:45 पर समाचार संध्या रात्रि 9 न्यूज एट 9 हम आकाशवाणी दिल्ली से रिल करेंगे। राजस्थानी लोक संगीत आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। रात्रि 9:30 पर हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे चर्चा का विषय है कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत का समय रहेगा रात्रि 10 बजे। सुगम संगीत आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। लीजिए कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर, SP बालासुब्रमण्यम और शैलेंद्र सिंह को। फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया।

0: 10, 9, 8, 7.
1: हम आपके हैं कौन, सुनिए इस फिल्म का गीत, आवाजें लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की।
0: लेट्स स्टार्ट द फन।

0: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

आनंद बख्शी के बोलों को सुनिए एसटी बालाबर्मन की धुन पर। फिल्म का नाम है चुपके चुपके, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की।

0: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। आराधना फिल्म का गीत सुनिए, आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, गीत रचना आनंद बख्शी की और संगीत रचना एस डी बर्मन की।
1: तो तुमको मुझसे प्यार है।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

0: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण

0: ਜਾਣ ਕੇ।
1: अंतराल के बाद फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से FM 100.7 MHz पर। लीजिए कार्यक्रम के अगले पायदान पर सुनिए कुमार सानू और पूर्णिमा को। फिल्म का नाम है सनम तेरी कसम। गीत रचना समीर की है और संगीत रचना नदीम श्रवण की।

सनम तेरी कसम, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना कुमार सानू और पूर्णिमा की युगल आवाजों में। चित्रपट संगीत कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए शबनम फिल्म का गीत, आवाजें हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम और अनुराधा पौडवाल की। गीत रचना रानी मलिक की है और संगीत रचना अन्नू मलिक की।

एसपी बाला सुब्रमण्यम और अनुराधा पौडवाल के गाए शबनम फिल्म के इस गीत के साथ ही अब आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार कीजिए स्वीकार। करते हैं शुरू एक सुंदर विचार से जिसे हमें भेजा है छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी ने।
2: लिखते हैं, सकारात्मक सोच हर समस्या में समाधान खोज लेती है।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार। आपके इस विचार से सच में हम सबको प्रेरणा मिलती है। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: लानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
1: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
1: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो जैसा कि हमने कहा था, इस सप्ताह हम बात करेंगे कुछ अनूठी झीलों के बारे में। तो श्रोताओं, आइए जानते हैं आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज का विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसी झील के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत ही रहस्यमय और पवित्र माना जाता है। श्रोताओं, जरा अंदाजा लगाइए मैं किस झील की बात कर रहा हूँ। आपको संकेत तो मिल ही गया होगा कि वो झील रहस्यमय भी मानी जाती है और पवित्र भी। जी हाँ श्रोताओं, यदि आपके मन में मानसरोवर झील का नाम है तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि यह दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4,590 मीटर है और इसका क्षेत्रफल करीब 320 वर्ग किलोमीटर है। आइए अब जानते हैं कि ये झील है कहाँ। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये झील तिब्बत और चीन के पर्वतीय क्षेत्र में पड़ती है। इसका सबसे निकटतम पर्वत है कैलाश पर्वत। आपको ये भी बता दें कि भारत की ओर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे या सिक्किम के नाथुला पास से की जाती है। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इसके निर्माण का कारण है भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर। इस टक्कर के कारण भूमि ऊपर उठी, पर्वतों में दरारें और बड़े बड़े गड्ढे बने जिससे हिमनदों का पानी जमा हो गया। इसीलिए मानसरोवर झील को टेक्टोनिक झील भी कहते हैं। अब एक बहुत ही रोचक तथ्य आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। अभी आपने सुना कि ये मीठे पानी की झील है, लेकिन श्रोताओं, इसी झील के बिल्कुल पास एक और झील है जिसका पानी खारा है। इसे राक्षस ताल कहते हैं। ये एक बंद झील है। जल के निकास और वाष्पीकरण की भिन्न प्रक्रियाओं के कारण यहाँ का पानी खारा है, क्योंकि यहाँ का पानी वाष्पित होता रहता है जिसके कारण लवण और अन्य खनिज इसी में रह जाते हैं। दोनों सरोवरों को कैलाश पर्वत, हिमनदों और वर्षा से ही जल मिलता है। एक छोटी नदी इन दोनों सरोवरों को आपस में जोड़ती है जिसे गंगा चू नदी कहते हैं। तिब्बती भाषा में नदी या जलधारा को चू कहते हैं। जी हाँ, सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है श्रोताओं। आइए अब सुनते हैं एक और बड़ी रोचक बात इस झील के बारे में। वहाँ गए यात्रियों के अनुसार मानसरोवर झील रंग बदलने वाली झील है। सूर्योदय के समय ये नीले और हरे रंग की दिखाई देती है, लेकिन सूर्यास्त के समय इस झील का रंग सुनहरी आभा में बदलता हुआ दिखाई देता है। आपको एक और बात बता दें कि मानसरोवर झील सर्दियों में पूरी तरह से जम जाती है। जहाँ तक धर्मों की बात है, ये झील हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखती है। श्रोताओं, एक और बड़ी खास बात, मानसरोवर झील को कैलाश पर्वत का दर्पण भी कहा जाता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। जी, इसका उत्तर है मानसरोवर झील में पास के कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है, खासकर साफ और शांत मौसम में। मानसरोवर और कैलाश पर्वत क्षेत्र से सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं। बौद्ध धर्म में मानसरोवर झील को मापाम युमत्सो कहते हैं, जबकि

0: जैन मान्यता में इस झील को ऋषभ देव से जोड़ा जाता है, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। आइए बात करते हैं इस झील में पाए जाने वाले जलीय जीवों की। तो श्रोताओ, यहाँ ठंडी जलवायु और दुर्गम परिस्थितियों के कारण जैव विविधता सीमित है, फिर भी कुछ अनुकूलित जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। इस झील में मछलियों की बड़ी अच्छी मात्रा है। पानी इतना साफ है कि अंदर तैरती हुई मछलियाँ भी 14 मीटर की गहराई तक करीब करीब साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। यद्यपि मान्यताओं के कारण यहाँ मछली पकड़ना या मारना निषिद्ध है। ये झील पर्वतीय पक्षियों और पशुओं के लिए एक आदर्श ठिकाना है। दुर्लभ प्रजाति के हंस, ब्राह्मणी बतख और पहाड़ी कौवे यहाँ मिलते हैं। जहाँ तक पशुओं की बात है, छोटे तिब्बती गधे और दुर्लभ प्रजाति के याक भी यहाँ मिलते हैं। तो श्रोताओ, अब करते हैं आज की चर्चा को समाप्त, लेकिन जाते जाते एक और रोचक तथ्य आपके साथ साझा करता हूँ। मानसरोवर झील जीवन से भरपूर है। यहाँ पशु पक्षी और दुर्लभ वनस्पतियाँ प्रचुरता से मिलती हैं, लेकिन पास के राक्षस ताल में खारे पानी के कारण लगभग कोई मछली या जलीय वनस्पति नहीं होती। इसीलिए लोक मान्यता में मानसरोवर झील को अच्छाई और राक्षस ताल को बुराई का प्रतीक माना जाता है। कुल मिलाकर मानसरोवर न केवल अध्यात्म और आस्था का केंद्र है, लेकिन ये ऊंचे दुर्गम स्थान की पारिस्थितिकी तंत्र का भी बेजोड़ उदाहरण है। तो श्रोताओ, ये थी जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। तो श्रोताओ, ये थी रोचक जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। हमारा IBRS नंबर भी नोट कर लें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की रोजाना की उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मंगल पांडे।
1: ये कार्यक्रम अमर शहीद मंगल पांडे के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अहम भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा सूचना देता है।
2: जी। अरे आशीष, दीपिका, आओ आओ। कहाँ से आ रहे हो भाई, बैठो।
3: दादी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था।
2: हाँ पूछो।
3: ये 1857 क्या है? आजकल अखबारों में कई लेख देखे हैं।
2: ऐसा है आशीष बेटा, ये कहानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की है। जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में बहुत बड़ा विद्रोह किया था।
3: अच्छा।
2: सभी देशवासी देश को आजाद कराने के लिए कूद पड़े थे। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ क्योंकि सभी देशवासी ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को मुक्त कराना चाहते थे।
3: अच्छा।
2: यानी आजादी आजादी आजादी। राजे महाराजे, नवाब, किसान, मजदूर, अमीर गरीब, छोटे बड़े सभी लोग और जांबाज सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। उस समय हिंदुस्तान के लोगों पर एक जुनून सवार था। देश की आजादी के लिए हर व्यक्ति मर मिटने के लिए तैयार था।
4: अच्छा।
2: ऐसा ही एक जांबाज सिपाही था, मंगल पांडे।
3: मंगल पांडे।
2: हाँ, मंगल पांडे 1857 के आरंभिक विद्रोहियों में से ये सबसे पहला विद्रोही था। उसने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया।
4: अच्छा।
2: उस समय ये लड़ाई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लड़ी जा रही थी।

0: दादी जी, लड़ाई में कौन कौन थे?
1: दीपिका, इस लड़ाई में कई नायक और नायिका थे, जैसे अवध में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे और राजा कुंवर सिंह जैसे वीर योद्धा थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी।
2: बड़े बहादुर थे ये।
1: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई गीत भी लिखे गए।
0: दादी दादी, हमें मंगल पांडे की कहानी सुनाओ ना।
2: वो कहाँ के रहने वाले थे?
1: सुनाती हूँ सुनाती हूँ। देखो बच्चों, मंगल पांडे बलिया जिले के रहने वाले थे।
2: अच्छा।
1: बचपन में उनकी माँ उन्हें देश प्रेम की कहानियाँ सुनाती थी। मंगल पांडे फौज की नौकरी बहुत पसंद करते थे।
0: अच्छा।
1: वो कलकत्ता गए और बैरकपुर छावनी में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। और धीरे धीरे वो एक होनहार सिपाही बन गए।
2: दादी, उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई?
1: भाई, उनकी ट्रेनिंग हुई बैरकपुर छावनी में, और ट्रेनिंग के बाद वो सिपाही नियुक्त हो गए। फिर उन्होंने कई साल फौज की नौकरी की।
2: अच्छा दादी जी, लेकिन वो हीरो कैसे बने?
1: बेटा, उन्होंने बैरकपुर छावनी में बड़े बड़े कारनामे किए।
0: अच्छा, क्या क्या? जरा सुनाओ ना दादी।
1: सुनाती हूँ सुनाती हूँ। देखो बच्चों, 25 फरवरी 1857 का दिन था। बैरकपुर छावनी के सिपाही बहुत नाराज थे।
0: ऐसा क्यों?
1: अंग्रेज गाय और सुअर की चर्बी लगा कारतूस चलवाते थे। इसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही परेशान थे। देसी सिपाही एकजुट हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए।
3: अरे अब तक तो अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाकर लूट रहे थे, अब वो हमारा धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए कारतूसों में चर्बी लगाई गई है।
2: दादी, फिर क्या हुआ?
1: फिर दूसरे दिन खाने के लिए मेस में सभी सैनिक इकट्ठे हुए और कारतूसों की चर्चा करने लगे। सैनिक गुस्से में चूर थे। उन्हीं में से एक सैनिक बोला,
3: हमें अपने धर्म की रक्षा खुद करनी होगी।
4: खुद करनी होगी, खुद करनी होगी,
5: खुद करनी होगी, सही कहे।
0: फिर क्या हुआ दादी?
1: फिर धीरे धीरे ये खबर देश की अन्य छावनियों में भी फैल गई। सैनिकों की बैठक पर बैठक होने लगी।
2: फिर क्या हुआ दादी?
1: सैनिकों की नाराजगी देखकर अंग्रेज मंगल पांडे वाली 19वीं देसी रेजिमेंट को तोड़ना चाहते थे।
0: अच्छा।
1: सिपाहियों को अंग्रेजों की इस चाल की

0: भनक पड़ गई। 26 मार्च रविवार का दिन था। सैनिकों में और असंतोष बढ़ गया।
1: हमें कुछ करना पड़ेगा, ऐसा चल नहीं सकता।
0: उसके बाद क्या हुआ? बैठक के बाद बैठक हो रही थी। माहौल बहुत गर्म था। एक भरी बैठक में मंगल पांडे ने सिपाहियों को ललकारा और कहा,
2: ये गोरे भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अब ये हमारे दीन धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिसमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे वीरों ने जन्म लिया। हम कदापि अपना धर्म भ्रष्ट न होने देंगे।
3: नहीं होने देंगे, बिल्कुल
2: नहीं। भले ही हमें फांसी के तख्त पर झूलना पड़े।
0: सैनिकों में गुस्सा और तनाव था, शायद कुछ होने वाला है। बच्चों, रोज की तरह परेड के मैदान में मंगल पांडे भी आया। उसका पारा बहुत गर्म था, गुस्से से चेहरा लाल था। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों की परवाह न करके परेड की लाइन से निकलकर सिपाहियों को ललकारा।
2: भाइयों उठो, किस चिंता में पड़े हो? मैं आप लोगों को धर्म की सौगंध दिलाता हूँ। आओ, भारत माँ की आजादी के लिए इन अधर्मी अत्याचारियों पर टूट पड़ो।
0: सैनिकों में और जोश भर गया। परेड के मैदान में अंग्रेज ऑफिसर मंगल पांडे का रौद्र रूप देखकर कांप उठा। कांपते स्वर में उसने सैनिकों से कहा,
4: हम पांडे को अरेस्ट मांगता है।
5: मंगल पांडे जिंदाबाद, मंगल पांडे जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।
0: तुरंत ही मंगल पांडे ने अंग्रेज ऑफिसर पर गोली दाग दी। ऑफिसर तो वहीं गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर लेफ्टिनेंट वॉम आया। मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई।
6: ए मंगल पांडे, वॉच आउट।
0: सारी छावनी में खलबली मच गई।
7: उसके बाद क्या हुआ दादी?
0: उसके बाद तुरंत ही कर्नल व्हीलर आया और मंगल पांडे को अरेस्ट करने का हुक्म दिया।
4: अरेस्ट करो,
6: मंगल पांडे को किसी के हाथ नहीं लगने देंगे।
7: दादी जी, फिर क्या हुआ?
0: कर्नल व्हीलर वहां से तुरंत लौट गया। तुरंत ही जनरल हियर्स एक फौजी टुकड़ी के साथ मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आए। मंगल पांडे ने गोरों की टुकड़ी आते देखकर अपनी बंदूक से खुद को गोली दाग ली। और मंगल पांडे जमीन पर गिर पड़ा।

0: के बाद क्या हुआ?
1: उसके बाद ठीक होने पर सैनिक अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के समय मंगल पांडे ने छाती तानकर खुले शब्दों में कहा,
2: हाँ, मैंने अंग्रेज अफसर पर गोली दागी थी, पर मेरा उनसे किसी प्रकार का निजी द्वेष नहीं था। ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं, राष्ट्र की है। मैं अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना चाहता हूँ।
0: क्या कोई कार्रवाई हुई?
1: हाँ, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानियों में खौफ का माहौल बनाना चाहते थे, इसलिए तुरंत ही सैनिक अदालत बैठी।
3: दादी जी, सैनिक अदालत का फैसला क्या था?
1: सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई। 18 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ये इस आंदोलन की पहली कुर्बानी थी। पूरे देश में फांसी की खबर फैल गई। भारत माता का वो सपूत था जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। इसके बाद आजादी की लड़ाई जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई।
3: इसके बाद क्या हुआ दादी?
1: इस बलिदान के कारण आज सारा देश मंगल पांडे को याद करता है। उन पर फिल्में बनाई गई। लोक साहित्यकारों ने तो उन पर कई गीत भी लिखे। मंगल पांडे पर प्रसिद्ध नारायण सिंह की कविता, जो भोजपुरी भाषा में लिखी है, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
3: अच्छा।
1: इस कविता में क्रांतिवीर मंगल पांडे का गौरव गान किया गया है।
4: जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैल, बलिया का मंगल पांडे के बलबेदी से ललकार भैल, मंगल मस्ती में चूर चलल, पहला बागी मसहूर चलल, गुरनी का पलटनी का आगे, बलिया के बांका सूर चलल, गोली के तुरंत निशान भैल, जननी के भेंट परान भैल, आजादी का बल बेदी पा, मंगल पांडे बलिदान भैल, जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैली।
3: दादी, इस लोकगीत का अर्थ क्या है?
1: इस लोकगीत में उल्लेख है कि 57 के युद्ध में वीरों को क्रांति में शामिल होने का आह्वान किया गया।
3: अच्छा।
1: बलिया के मंगल पांडे मस्त होकर क्रांति के लिए गोरों की सेना के सामने छाती तानकर खड़े हो गए। इससे भारत की सोई हुई वीरता जाग गई, जिसने बैरकपुर की बैरकों में अंग्रेजों की सेना में खलबली मचा दी।
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम मंगल पांडे, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बहादुर कशी का।
6: ये कार्यक्रम भारत के बहादुर बच्चों पर निर्मित कार्यक्रमों की श्रृंखला से लिया गया है, जिसमें एक बहादुर बच्ची कशिका के जीवन और उसकी बहादुरी को विस्तार से बताया गया है, और किस प्रकार इस बहादुर बच्ची ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर दूसरों को एक बड़ी विपत्ति से बचाया।
7: काशु बेटी, तुम और देवेंद्र नाश्ता कर लो।
8: माँ, आज तो छुट्टी है, आज भी जल्दी।
7: देखो बेटी, तुम्हारे पापा भी नाश्ता करके दुकान पर चले गए हैं। तुम लोग भी नाश्ता कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुझे बहुत सारा काम करना है और खाना भी तो बनाना है।
8: ठीक है माँ, हम नाश्ता कर लेंगे, पर देवेंद्र को तो आ जाने दो।
7: अच्छा ठीक है, देवेंद्र आ जाए तो तुम दोनों नाश्ता कर लेना, मैं पूजा करने जा रही हूँ।
8: अच्छा माँ।
9: माँ,

0: लो देवेंद्र भी आ गया।
1: दीदी मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है।
2: चलो तुम दोनों नाश्ता कर लो और अब मैं पूजा के लिए जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना, समझे?
0: ठीक है माँ।
1: नाश्ता नाश्ता यही ले आओ दीदी, ठीक है? मैं यही टीवी के पास बैठकर खाऊंगा।
0: ठीक है मैं अभी लाती हूँ।
1: ये देखो दीदी, ये मारा।
0: देवेंद्र चुप रहो, मैं भी देख रही हूँ।
1: अरे ये मारा।
0: अच्छा तुमने दरवाजा बंद किया था या नहीं?
1: बंद कर दिया होगा, ये तो देखो।
0: याद नहीं आ रहा तो जाओ देख कर आओ। मुझे लग रहा है कि दरवाजे पर कोई है। टीवी की आवाज कम करो।
1: कोई नहीं है दीदी, ये गिरा।
2: लगता है कोई आया है। काशु बेटी देखो दरवाजे पर कौन है।
0: अच्छा माँ, कौन? आप लोग कौन? कहिए किससे मिलना है? अरे
3: हमें अंदर आने दो।
0: अरे क्यों?
4: ए लड़की रास्ते से हट जा।
0: क्या काम है? ठहरो ठहरो मैं माँ को बुलाती हूँ।
3: लड़की हट।
0: माँ
3: ये चाकू देख रही है ना,
4: ज्यादा होशियारी मत दिखा।
0: अरे
4: मैं बंदूक की गोली तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा।
0: हट
4: रास्ते से।
0: क्या हुआ? देखो जल्दी
5: ये क्या है? अरे अरे कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को?
3: शोर मत मचा, जल्दी से चाबी निकालो। तुमने अभी तक चाबी नहीं निकाली।
0: हाँ, मेरी माँ को छोड़ दो।
3: ये चाकू देख रही है ना,
0: छोड़ दो।
5: मुझे मत मारो,
0: कुछ मत करो।
5: चाबी चाबी मुझे नहीं मालूम,
3: जल्दी।
5: याद नहीं कहाँ रखी है, छोड़ दो।
4: बहानेबाजी करती है, जल्दी से चाबी दे दे वरना गोली मार दूंगा।
5: अरे मेरे पास छोड़ो,
0: मेरी माँ को छोड़ो।
3: चुप चुप, आवाज निकाली तो यही ढेर कर दूंगा। चुप, आवाज नहीं।
4: सुनो सुनो, इसको उठा के दूसरे कमरे में ले चलते हैं। पकड़ो इसको, पकड़ो। अब इसकी आवाज बस यही सुन पाएगी। चाबी तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे। चलो।
5: हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
0: देवेंद्र।
1: हाँ दीदी।
0: चोर तो उस कमरे में गए, चलो इस कमरे से फोन करते हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ। पापा को फोन करती हूँ। देवेंद्र तुम खिड़की से देखते रहो, ठीक है?
1: अच्छा।
0: हेलो।
3: हाँ बेटा बोलो।
0: पापा।
3: हाँ।
0: पापा।
3: हाँ बोलो।
0: जल्दी से घर आ जाओ पापा, चोर घुसाए हैं।
3: कौन घुसा है?
0: माँ को बहुत मार रहे हैं।
3: अच्छा तुम घबराओ नहीं। नहीं नहीं, तुम ऐसा करो पड़ोसियों को बुलाओ, तब तक मैं आता हूँ, ठीक है?
0: अब देवेंद्र मैं बाहर से शोर मचाती हूँ, तुम दरवाजा बंद करके यहीं बैठ जाओ।
1: अच्छा।
0: बचाओ बचाओ, घर में चोर घुसाए हैं, बचाओ।
6: और शोर सुनकर भाटिया साहब के पड़ोसी इकट्ठे हो गए और दोनों चोरों को पकड़ लिया। लोगों ने चोरों की खूब पिटाई की। इसी बीच काशु यानी कशिका के पापा भी आ गए और पुलिस भी आ गई।
7: कितना बहादुर बच्चा है, देखो तो सही इसको। कशिका को
8: वाह वाह वाह,
7: कमाल कर दिया, कमाल कर दिया इस बच्चे ने।
2: आज तो हमारी जान कशिका ने बचा ली, उनके पास तो बंदूक भी थी, चाकू भी था। मैं तो डरी गई थी।
7: देखो ना, सभी जान बहादुर है मेरी
6: बच्ची। अगले दिन कशिका की बहादुरी के चर्चे सबकी जुबान पर थे। मोहल्ले, रिश्तेदारों और स्कूल में कशिका की ही चर्चा हो रही थी। और जानते हो बच्चों, इस बहादुरी के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से कशिका को 1000 रुपए का इनाम और प्रमाण पत्र मिला।
9: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहादुर कशिका, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है।

0: तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आपकी सेवा में आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं शमीम जोधपुरी की गई लोक रचनाएं। प्रस्तुत है कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

0: कार्यक्रम माटी के सूर्य ही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के एक बजने को है कुछ ही पलों में आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार देखे जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। ये 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली बढ़ोतरी है। वित्त वर्ष 2020-21 में ये आंकड़ा लगभग 84,000 करोड़ रुपए था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस शाखा ने जैसलमेर से सेना और बीएसएफ की गोपनीय जानकारियां लीक करने के आरोप में एक संदिग्ध जासूस को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान नाचना क्षेत्र के हिंगोला गांव निवासी मुश्ताक अली के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी पिछले 2 वर्षों से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंटों के संपर्क में था। वो पैसों के लालच में सोशल मीडिया के जरिए सेना और बीएसएफ की गतिविधियों के फोटो और वीडियो सीमा पार भेज रहा था। बहरहाल गिरफ्तार आरोपी को आज सुबह जयपुर लाया गया है, जहां अब विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों द्वारा उससे गहन पूछताछ की जा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मूज जलडमरू मध्य इस सप्ताह के अंत तक खुल जाएगा। इससे ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इसराइल की सैन्य कार्रवाई के बाद दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया था और कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर लगभग $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। प्रदेश में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न जिलों में शोभा यात्राओं और रैलियों के आयोजन हो रहे हैं। महाराणा प्रताप की जयंती और हल्दी घाटी के युद्ध की 450वीं वर्षगांठ पर उदयपुर में आयोजित समारोह किया जा रहा है। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत कर रहे हैं। समारोह को संबोधित करते हुए श्री भागवत ने तत्कालीन इतिहासकारों के नैरेटिव का खंडन करते हुए तथ्यों के साथ बताया कि प्रताप के पराक्रम और युद्ध नीति के सामने मुगल सेना को भारी नुकसान उठाकर पीछे हटने और छिपने पर मजबूर होना पड़ा था। प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण में मकान सूचीकरण और मकान गणना का काम निर्धारित समय में पूरा कर लिया गया है। जनगणना निदेशालय के अनुसार प्रदेश में 1 से 15 मई तक स्वगणना और 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर आंकड़े जुटाए गए। ये व्यापक अभियान राज्य के 41 जिलों और 10 नगर निगम क्षेत्रों में 1,34,000 से अधिक ब्लॉकों में चलाया गया। इसमें 1,40,000 प्रगणकों, 23,000 पर्यवेक्षकों और अन्य कर्मचारियों ने भाग लिया। इस चरण में मोबाइल ऐप के जरिए मकानों, मूलभूत सुविधाओं और संपत्तियों की जानकारी जुटाई गई, जिसे सीधे केंद्र को भेजा गया है। आज विश्व मगरमच्छ दिवस है। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण में मगरमच्छों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया जा रहा है। पाली जिले के जवाई और देसूरी क्षेत्र के बांधों में 350 से अधिक मगरमच्छ मौजूद हैं, जो क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यावरण का संतुलन भी बनाए रख रहे हैं। जिला वन अधिकारी प्रशांत कस्तूरी ने बताया कि मगरमच्छों को जीवित रहने के लिए स्वच्छ पानी, पर्याप्त आहार और शांत किनारों की आवश्यकता होती है। जवाई बांध में इनकी लगातार बढ़ती संख्या इस बात का सकारात्मक संकेत है कि यहां का वेटलैंड पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह स्वस्थ और इनके अनुकूल है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से होगा। भारत ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 64 रनों से हराया था। राष्ट्रीय पल्स पोलो अभियान के

0: तहत प्रदेश में आगामी 28 जून रविवार को बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। अभियान की तैयारियों को लेकर कल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की स्टेट टास्क फोर्स की बैठक संपन्न हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रस्तुत कार्यक्रम घर आंगन।

बनो आज रो घर आंगन कार्यक्रम ले हाजिर हूँ। मैं थारी सखी सहेली नीलम, तो सारी श्रोता भेणा को कार्यक्रम आई करूँ घणो घणो स्वागत और करूँ मोकली मोकली राम राम। और भेणो के हाल चाल है थारा? हमेशा की भांति आज भी भेणो अपने ही कार्यक्रम में चौके चौके बतलावन कर स्या, एक साथ ही चौका चौका मारवाड़ी गीत सुनकर कर स्या आपनो मनोरंजन। तो ये मीठे से लोक गीत से ही शुरू करा आज रो आपनो कार्यक्रम यो घर आंगन।

भेणों, आज है विशेष दिवस और वो है महाराणा प्रताप की जयंती। महाराणा प्रताप मेवाड़ का 13वां राणा और भारत का सबसे सम्मानित राजपूत शासकों में से एक हां। आपको जन्म यह तो बताई जावे कि 9 मई 1940 में राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा उदय सिंह द्वितीय के घर हुई हो। हिंदू पंचांग के अनुसार आपको जो जन्म है वो विक्रम संवत ज्येष्ठ शुक्ल की तृतीया नो हुई 1597 में। तो जेठ से लेकर आपको जन्मदिन जो है ज्येष्ठ मास की जो शुक्ल पक्ष की जो तृतीया हुए भी दिन मनाई जावे। और अतिथि भेणो आज है यानी 17 जून ने। 17 जून आज आप आपको 489वां जन्मदिन मना रहे हाँ। हल्दी घाटी युद्ध की भी 450वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। भारतीय इतिहास में कुछ युद्ध ऐसा भी है जिसको जो है आपा भेणो सारी जाना हाँ। हल्दी घाटी को युद्ध आपा बहुत अच्छी तरह से आपने राजस्थान में ओढ़ो है तो सारी भेण एक पूरी जानकारी है आपने की और आपा किताबों में भी बहुत ज्यादा इन्हें पढ़े भी हो। 18 जून 1576 ने यो जो युद्ध लड़ो गयो हल्दी घाटी को और देखो एक महान संघर्ष भी टे माने गए हो। और इमें चेतक जो घोड़ो हो बिको भी पराक्रम और स्वाभिमान आज भी भारतीय इतिहास में भेड़ो अमर है। अपा देखो महाराणा प्रताप के बारे में अपना हर एक राजस्थान को बच्चों बच्चों सब जाना है कब किता वीर पुरुषा। यही कारण है कि महाराणा प्रताप आज भी भारतीय जनमानस में कैसका स्वतंत्रता शौर्य राष्ट्र गौरव के लिए अमर प्रतीक के रूप में आपा ने माना हा। अमर प्रतीक वह बनेड़ा है। हर भारतीय के मन में आज भी महाराणा प्रताप को साहस त्याग राष्ट्रभक्ति और स्वाभिमान की भावना जीवित है। तो बहनों आज आपा देखो टावरा ने भी जो है सब किताबा पढ़ने देवा और बाने भी बतावा कि आपने जो राजस्थान राज्य में भी कई ऐसा महान वीर पुरुष होया है जका आपने देश ने आपके शासन के लिए कितनी मुश्किल को सामनो भी करो है। जहाँ की घास की रोटी भी माँ के बेटा ने खानी पड़ी इस तरीके की कहानियां प्रेरक दायक बच्चा ने भी सुनावा ताकि आपने बच्चा भी आपने इतिहास के बारे में जाना और कितना महान पुरुष आपने राजस्थान में भी होया है बाकी जानकारी आपा बच्चा ने जरूर देवा। और एक साथी बनो बतलाऊ तो आप और भी करांगा। अब सुनाओ मिठो सो लोकगीत।

0: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
3: बहनों अब बात करा आपने टाबरा की। बहनों अपना जब टाबर छोटा हो तो बामें भी टाइम आपने अच्छी आदत और संस्कार बने देना चाहिए और बने सहनशील भी बढ़ाना चाहिए। कई बार आप देखा हाँ कभी घर में टाबरा ने अगर थोड़ा सो कवा तो वह बहुत जल्दी रोन लग जाए, कोई चीज वह मांगे वह नहीं लाके देवा तो वह रोन लग जाओ। बने के दौरान आपने समझाना चाहिए और बने हर एक चीज के लिए बोलना चाहिए कि भी आज जरूरी को नहीं आज चीज तेने मिलेगी। और शुरू में अगर आप हर एक जीत बच्चे की पूरी करांगा तो वह देखो धीरे धीरे बन भाई आदत बढ़ जाएगी और जिया जिया वह बड़ा होगा तो बाकी देखो डिमांड भी बढ़ जाएगी। और जी के दौरान वह अपने से कोई चीज की मांग करे जब बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए तो आप कर देवा कहले कोई बात नहीं टाबर है ये चीज खातर कवे तो क्या टाबर करे ही करे। हाँ आ को नहीं कि आप हर एक चीज भी नहीं लेके देवा। हाँ कई बार कई चीज भी की पसंद आ जाए, बिना चाहे खिलौने की बात करा, ड्रेस की बात करा, कई चीज वो एक तरीके का देवना आज चीज खानी है तो बा बना के भी ना देवा, लेकिन हर एक जिद आपने पूरी नहीं करनी चाहिए। इसे क्या है बच्चों जो है जिद्दी बन जाओगे और आगे आपने दिक्कत होगी। वो आगे जब कोई चीज की मांग करोगे बड्डो होके जब आपने झुंझलाट आने लग जाएगी कि नहीं आज चीज तो दे कौन सका, फिर बच्चे का मन में भी बहुत ज्यादा दुख होगा कर मना ले आके कौन दी। वो के सहनशीलता भी कम मन में बिल्कुल भी कौन रहेगी। तो छोटा हुआ बच्चा जदि माना आपने मान लो घर में 2-3 टाबर है तो कोई चीज आवे तो बिना एक दूसरे से चीज जो है साझा करने की आदत भी गेरा ताकि वह मिल करके एक या दो चीज या खिलौना, एक खिलौना छोटा टाबर है तो वह देखो भी से खेल लेवे, फिर जिया पढ़ाई करे तो भी के दौरान भी देखो कॉपी और सब अपन अलग अलग ले आके देनी पड़े, पर किताबा भी देखो अलग क्लास में तो अलग ले आके देनी पड़े, नहीं तो जिया बड़ो बच्चों पढ़ रहे हो भी की जिया दूसरो बच्चों पढ़ रहे हो किताबा भाई भी काम में ले सके। इस तरीके की आदत जो है आप बच्चे ने शुरू में गिरांगा तो बच्चों जो है बड़ा होने के बाद में भी हर एक से चीज जो है आपकी साझा करनी सीख जाएगा। बिना जीवन में कदे भी यहाँ समस्याओं को सामना करना पड़ेगा। कई बार कोई महंगी चीज आप कौन ले सका, एक ही ले सकांगा तो वह देखो भी मैं दोनों भाई बहन है या काका बाबा का है वह भी मैं ही काम निकाल ले। एक ऐसा था खाने पीने की चीज जो है बच्चों आप बच्चा की आप तो बहनों घर पूरा करते वहां, लेकिन जब बच्चा अपना बड्डा हो जाए जब मान लो मैं 10वीं पास कर ली या 12वीं पास कर ली, जब मैंने 12 भेजा बिक के दौरान बने बहुत ही समस्याओं को सामना करना पड़ा। तो आप शुरू से ही बच्चा ने आदत हर एक काम की डाला, चाहे घर रहे जदि मैंने खुद का कपड़ा समेटना है, खुद को बैग ने संभाल के रखना है, खुद को बेड पे जी पर सोया है तो बिना चादर सही करनी है, कपड़ा समेटना है, ऐसा सब आदत आप शुरू से बच्चे में घेर देवांगा तो जब मैंने 12 पढ़ने तक भेजांगा तो आ समस्याओं को सामना कौन नहीं करना पड़ेगा। फिर बहनो बात आवे चाहे आपनो बेटो हो या बेटी, मान लो 12वीं पास कर ली या 10वीं के बाद में भी आप बिना दूसरे शहर में कोई कोचिंग में एडमिशन करवावा तो बैठे की भी पूरी जानकारी जो है बहनों पहले आपने ले लेनी चाहिए। चाहे बैठे जी स्कूल में या जी कोचिंग में आप टाबर ने भेज रहे हैं तो बैठे की पूरी जानकारी होनी चाहिए अपना गन बैठे की सुरक्षा है, सीखने को के माहौल है, के सुविधा अपने टाबर ने मिलेगी, आ सब जानकारी आपने पहले ले लेनी चाहिए कि तो ही पर खर्चो

अगर आपना अगर पहले जानकारी होए तो अपनो बच्चों बैठे अच्छे से पढ़ सकेगो। सुरक्षा और स्वच्छता की जानकारी भी अपना बैठे से ले लेनी चाहिए। और बैठे आजकल जिया कैमरा लगे डे भी लगे डे बैठे जो पढ़ाना अध्यापक है बड़े प्रशिक्षित कर्मचारी रख रखे है गे और पास में ही प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था भी है गे। और जो छोटा बच्चा अगर भेजा छोटा ने भी कई बना जी बारह पढ़ने भेजे तो बैठे सीखने को के माहौल है के खेल की भी में व्यवस्था है के क्योंकि बच्चा के लिए खेल नो भी बहुत ज्यादा जरूरी है बनो। तो वह बारह कौन सा खेल खिलाओगा कितना टाइम बच्चा ने पढ़ाई करनी होगी मनोरंजन का बैठे के साधन है ऐ सब जानकारी आपने पहले ले लेनी चाहिए। और बैठा आपने टाबर ने भेज दिया तो आप जिया कमरों लेके रहो या कोई पीजी में कठे कौन सी में छोड़ दिया बैठे के तरीके को खानो है आप भी जानकारी आपने पहले ले लेनी चाहिए ताकि बाद में आपने समस्या को सामना नहीं करना पड़े। कई बार कि आप अनजान बन के या जठे कोई आपने कहे बैठे बापा बच्चा ने पढ़ना भेज देवा और फिर बाद में भी बच्चे को बैठा न तो ढंग से पढ़ाई हुआ न भी को मन लगे क्योंकि पूरी व्यवस्था नहीं होगी तो बच्चों बैठा पढ़ भी कौन सकेगो। तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने बेटा या बेटी को कठे भी बारे अगर पढ़ना भेज रहे हैं तो बैठे की पूरी जानकारी अपने पहली ले ले वहां भी के बाद ही आपने टाबरा ना बैठे पढ़ना भेजा और कितना दिन तक वो जो पढ़ाई कराओगे कौन सा टाइम की छुट्टी होगी और के सुविधा से मान लो कोई बच्चा आपा कमरों लेके रह रहे है तो बट से आपकी स्कूल है बैठे के साधन सजावेगो कितना बजे आवेगो खाना को के टाइम पर रख रख ऐ जानकारी आपने पहली ले लेनी चाहिए ताकि अपना बच्चा ने कोई तरह की परेशानी नहीं हो। और कई भना तो जिया बच्चा ने दो या तीन बच्चा है सागे पढ़ रहा देखो कमरों लेके है तो बीमे भी आप देखो आप एडजस्ट कर सका जिया कदे बच्चे की नानी कदे दादी कदे आपा ने अगर आप काम काज नहीं है घरे ही रहा तो थोड़ी सी अपनी छुट्टी होवे भी के दौरान आप जा टाबरा ने संभाल लेवा ताकि बच्चों जो है वो अच्छे से बैठे पढ़ाई कर सके। जी पढ़ाई के लिए आपने आपा भी ना भेज रहे हैं बैठे अच्छे से वो पढ़ लिख करके भी पढ़ाई में आपकी सफलता जो है प्राप्त कर सके। जो भी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं बिना कौन सी के किताब बट से उपलब्ध कराई जाओगी कौन सी आपने दिरानी है ऐ सारी जानकारी बहनों आपने पहले ले लेनी चाहिए ताकि आपने कोई समस्या को सामना नहीं करना पड़े। बतलाओ तो बहनों आपकी यू ही जारी रहेगी पहली सुनाए मिठो सो लोकगीत।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
2: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: बहनों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव एक आम समस्या बन रही है। तनाव कोई भी उम्र में हो सके, वो देखो कई बार आप टाबरा से बात करें तो टाबर भी आई कवे कह नहीं मैं तो मेंटली जो डिस्टर्ब हो रही हूँ, और चाहे बड्डा की बात करा या आपने बात करा, घर में इतना काम हो भी के दौरान देखो आपने कोई बात न ले चिंता हो ही जाए, तो तनाव जो है एको असर बहनों अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर ही पड़ा है। बहनों आज आप बात करें अपने टाबरा की, तो टाबरा चाहे बेटो हो या बेटी, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में वह ई कदर डुबेड़ा है कि बने अपने कन बैठने के लिए टाइम ही कौन मिला है। और शिक्षा की अगर बात करें आप, तो वह टाबर देखो टाबर पढ़ाई में भी लग गया रहे, और एक साथ ही साथ बात करा आजकल जो डिजिटल के अनुसार जो मोबाइल है भी मैं भी देखो बच्चा रखना जरूरी, मोबाइल में सी वह देख देख करके हर एक चीज की तैयारी करें, और वह चाहे भाई हर एक बच्चे चाहो को अपा भी चाहवा का अपना बच्चों को जो करियर है वो अच्छो बने, युवा बच्चा है जो वो अच्छे से पढ़ लिख करके आगे बढ़े। पर ये प्रतिस्पर्धा के दौर में बहनों अपना जो बच्चा बच्ची है बने पढ़ाणो आजकल ये आप अपने पढ़ाओ तो बापा ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज स्मार्ट स्टडी और सही मार्गदर्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। रटने की बजाय अपना टाबरा ने जो है समझाने के प्रयास करा। छोटा टाबर है बहनों जब तो बन देखो किताबों ही पढ़ाना हुआ है, आप देखो ध्यान भी दे ले वहां का आज वो होमवर्क मिले टाबर ने वो भी ना करना है, और बिना अगर मोबाइल से काम करना अगर मिले छुट्टियां के दौरान तो भी आप देखो अपना ही मोबाइल हो आप बने लोग खोल के दे दे वहां वो काम करे कौन सो काम करे अपनी निगरानी में हो। पर जी जी अपना बच्चा बड़ा हुआ है तो जब वह देखो मगन खुद को मोबाइल हो वह कितनी देर पढ़ाई कर रहा है, कितनी देर भी फोन ने बेवजह चला रहा है, एक ही जानकारी आपने रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और बच्चा ने समझावा कभी थाने से जरूरी है बी के दौरान ही फोन से पढ़ना नहीं, तो देखो किताबों से पढ़ना चाहिए। किताबों से अगर बच्चों पढ़ेगो तो वो देखो बी की आपा कैसा एक तो किताब ने पढ़ेगो फिर भी चीज ने भी ने लिखेगो तो इसे क्या भी कि दो तीन बार रिविजन होगी बिना अच्छे से हर एक चीज याद भी हो जाओगी। एक साथ ही बहनों अपन जो बच्चा अगर पढ़ रहा है तो बने तनाव मुक्त माहौल देना जरूरी है। घर को जो माहौल

है, बोझ अगर बच्चा पढ़ रहा है तो बाना भी हिसाब से शांत वातावरण रहना चाहिए। बच्चा अच्छे से कोई चीज ने पढ़ रहा है तो बाको ध्यान इन्हें भी नहीं जावे। तो भी के दौरान आपा भी घर में अगर कोई दो बहना अगर आपस में बात करिए तो बाना आपा ने भी बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों अगर पढ़ रहे तो भी को ध्यान अपनी तरफ आ जाएगा और वो ढंग से पढ़ाई कौन कर सकेगा। और एक साथ ही अपना अपनी सोच भी सकारात्मक रखा और बच्चे की सोच भी सकारात्मक बनाए रखा। अपना बच्चे पे तो यहाँ प्रेशर नहीं देवा कर नहीं कोई बच्चा के इतना नंबर आए तो तेरा भी इतना नंबर आना चाहिए। नहीं बहनों, बच्चे की अलग अलग रुचि हो, जहाँ कोई बच्चों कोई विषय में ज्यादा नंबर डाल रहे है, कोई बच्चे के कारण से कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है, तो अपन एक ही जानकारी लेनी जरूरी है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की तरफ भी अपनों ध्यान जानो चाहिए। पढ़ाई अपा यानी कि बच्चे ने सारा दिन पढ़ाई पढ़ाई में लगाए रखा बिना खेलने को भी मौको देवा, इससे भी को शारीरिक और मानसिक विकास हो सी। और बच्चे ने पर्याप्त नींद भी लेने के लिए कहा। और अपना जो टाबर है कई जो है रात में तो पूरी रात फोन पे काम करेगा, कभी मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, और फिर बने देखो बाकी भूख भी बंद हो जावे तो वह नए ढंग से खानो खाओगा, खानो नहीं खाओगा तो वह देखो कमजोर दिनों दिन कमजोरी आ जाएगी बाकी, और वह ढंग से आपकी पढ़ाई कौन कर सकेगा। तो बच्चे को जो संतुलित आहार आप बच्चा ने देवा हल्को फुल्को, जब परीक्षा के दौरान अगर पेपर देने जा रहे हो तो कई बच्चा जो है बिना खाए पिए चल जाओ, फिर मांगो बेटा जी घबराने लग जाओ, जितनी मांगी तैयारी के रेडी हो बीतो वे पेपर में लिख भी कौन सके। तो बना हल्को फुल्को नाश्तो जरूर करा के भेजा, और खेलने को भी टाबर ना पा पूरो मौको दे। आप अगर बच्चों कंटिन्यू पढ़ रहे हो तो बिना थोड़ी देर खड़े भी करा कर नहीं, थोड़ी देर बीच में घूम फिर ताकि तेरा जो है थोड़ा सो माइंड जो है अलग जाओ जाओगे बी के बाद तू दूसरा सब्जेक्ट जो है बी की तैयारी करने लग जाए। फिर बनो अब बात करा आपने टाबरा की, तो वह मोबाइल जो है बहनों रात भर करने रखे तो बांकन आप जो है रात में उठ करके बच्चे ने देखा कब वो सही में ही 10 बजे तक वो पढ़ाई कर रही है 11 बजे तक कर रही है, तो भी के बाद में आपा फोन आपने कन ले लेवा, क्योंकि बच्चा की है अगर आपा खुद भी अभी मैं अगर कोई रील देखने लग जाऊंगा तो बच्चा भी कही कि बोला तो आई है कि मैं पढ़ाई करें और रील देखने लग जाए फिर वहां को रिजल्ट आवा जब आप देखांगे इतना नंबर कम किया है। तो आप शुरू से ही बच्चे ने संभाला, आपनो बेटा हो या बेटी हो दोनों भी जब पढ़ाई कर है तो भी के दौरान बने जो हर एक सुविधा बन जो देनी है बाबा ने देवा, बने चाहे किताब कोई चाहिए या कोई तरह की और बने सुविधा चाहिए या बा कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो आप बच्चा ने पूछा, और बी की जो है पढ़ाई संबंधित चाहे जहाँ कोई गणित को बन कोई चीज नहीं समझ आ रही है तो आप बी कोई दूसरे अध्यापक से बात करा, आप खुद समझा सका तो खुद बच्चा ने बिना अच्छे से समझावा ताकि बच्चों जो समझ जाओगे रटने की आदत जो बिल्कुल छोड़ देवेगो तो बिना आपकी जो परीक्षा में जरूर सफलता भी मिलेगी। तो इसके लिए जरूरी है कि आप खुद अपने बच्चे को ध्यान रखा ताकि वे जीवन में जो भी कोई भी प्रतियोगिता का पेपर देवा तो माने सफलता मिले। और अगर कई बार कम नंबर आ जाए बहनों तो भी के दौरान भी बहुत सा बच्चा बहुत ज्यादा निराश हो जाए कि नहीं मैं तो कुछ कर ही कौन सकूं, तो बा को भी आप हौसला बढ़ावा कभी ठीक है ई बारी ई चीज में तेरा नंबर कम आया के कारण से आया है, कारण आपने पकड़ना चाहिए भी मैं सुधार करना चाहिए ताकि बच्चों वापिस आपकी जो है मन लगा करके अच्छे से पढ़ाई करे। बनो बतलाऊ तो आपने यूं ही जारी रहेगी, पहली सुन लाई मिठो सो लोकगीत।

0: एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा, भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा। 2020-21 की तुलना में 110% की वृद्धि। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला लखनऊ में जारी। अब समाचार विस्तार से। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया और इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने तथा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। G7 नेताओं ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। G7 देश के नेताओं ने विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ से निपटने की कोशिशें तेज करने का संकल्प लिया है। इसमें वे कमजोर मध्यम आय वाले देश भी शामिल हैं, जो अभी कोरोना महामारी के दौरान G20 के कर्ज राहत ढांचे के लिए योग्य नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वॉशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हमारे संवाददाता अंकित कुमार एवियन से G7 सम्मेलन के घटनाक्रमों पर ताजा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जी अंकित, दोनों नेताओं के बीच किन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है?
1: जी लवली, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है, ये कई मायनों में अहम है। हालांकि दोनों नेता कल ग्रुप फोटो और वर्किंग सेशन के समय मिले थे, लेकिन अब सबकी निगाहें इस द्विपक्षीय मुलाकात पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान पश्चिम एशिया संकट को लेकर बात हो सकती है। देखिए, भारत हमेशा से शांति और बातचीत का पैरोकार रहा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर व्यापक बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की प्रगति पर भी बात हो सकती है। भारत ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात कर सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट हो या अन्य कोई भी भू राजनीतिक तनाव हो, ऊर्जा क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात हो सकती है। इन मुद्दों के अलावा श्री मोदी और श्री ट्रंप भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार के सभी पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। लवली,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। श्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सत्र में भी हिस्सा लेंगे। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मद से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी CEOs के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जो भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत करेगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब ये आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। MyGov की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमरीकी कंपनी के विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था।
1: भारत आज विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में लगातार अपनी जगह बनाए हुए है। ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का मुकाबला कई बड़े और विकसित देशों से है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के कृषि निर्यात में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हमारा कृषि निर्यात $53 अरब तक पहुँच गया और इसकी वृद्धि दर भी काफी अच्छी रही है।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिशें न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।
2: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
0: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसके राजनीतिक विंग रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट के सक्रिय सदस्यों के रूप में हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
3: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
4: कंडक्टेड इन अ फ्लॉलेस मैनर

0: इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है।
1: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की हिजबुल्ला और सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की है। फ्रांस में जारी G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाइयों के संचालन में अधिक जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन की घोषणा के बाद से इसराइल ने लेबनान में युद्ध विराम का कई बार उल्लंघन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि इसराइली बलों ने 48 घंटे में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन ईरान और अमेरिका के बीच जारी व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है। वहीं इस बीच हिजबुल्ला के अधिकारियों का कहना है कि समझौते के बाद से संगठन ने कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल को भी युद्ध विराम की शर्तों का पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इसराइली नेतृत्व ने संकेत दिया है कि सुरक्षा खतरों को देखते हुए सैन्य अभियान जारी रहेंगे और उत्तरी सीमा पर सेना हाई अलर्ट पर बनी रहेगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 1 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया है। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से पराजित किया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पहुंचा। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: आप सुन रहे हैं तराने नए पुराने, सुनिए मोनाली ठाकुर को, फिल्म का नाम है लुटेरा।

0: सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।
1: अंतराल के बाद फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं तराने नए पुराने। सुनिए मैना फिल्म का गीत, आवाजें हैं पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की।

है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय दिन के 3 बजे हैं। अब हमारी आज की पहली सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 4:58 पर दूसरी सभा में

FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। अब आज की हमारी सायंकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए सुने हमारे युवा दोस्तों का अपना कार्यक्रम युववाणी।

जी दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज है बुधवार और बुधवार को होता है हमारा खास सेगमेंट विज्ञान धारा। जी दोस्तों, खास सेगमेंट पर बात करने से पहले बात करते हैं आज के खास दिन के बारे में। और दोस्तों, जब जब भारत की वीरता का इतिहास लिखा जाएगा, एक नाम जो है वो स्वर्ण अक्षरों में सबसे ऊंचा दिखाई देगा। जब जब स्वाभिमान की बात होगी, एक चेहरा हमारे सामने गर्व से खड़ा नजर आएगा। जब जब मातृभूमि के लिए त्याग और संघर्ष की मिसाल दी जाएगी, एक गाथा जो है वो पूरे जोश के साथ सुनाई जाएगी और वह नाम है मेवाड़ के सिंह वीर शिरोमणि, स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप। जी बिल्कुल दोस्तों, आज हम केवल एक महान राजा को याद करने नहीं आए हैं, बल्कि उस अदम्य साहस को नमन करने आए हैं जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। उस जज्बे को सलाम करने आए हैं जिसने हमें सिखाया कि जीवन में सब कुछ खोकर भी यदि स्वाभिमान बचा है तो इंसान कभी पराजित नहीं हो सकता। तो आइए पूरे उत्साह और गर्व के साथ बोलें, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जय, मेवाड़ के गौरव महाराणा प्रताप की जय, भारत माता की जय। और दोस्तों, अब सुनते हैं उस अमर योद्धा की प्रेरणादायक गाथा जिसने संघर्ष को अपना जीवन और स्वाभिमान को अपना धर्म बनाया। और आज जो है महाराणा प्रताप जयंती जो है वो हम मना रहे हैं दोस्तों। और इतिहास के पन्नों में बहुत से राजा हुए, कई साम्राज्य बने और मिट गए, लेकिन कुछ

व्यक्तित्व जो हैं वो ऐसे होते हैं दोस्तों जो समय की सीमाओं से परे जाकर युगों युगों तक लोगों के दिलों में जीवित रहते हैं। महाराणा प्रताप भी ऐसे ही महानायक थे। महाराणा प्रताप का जन्म जो है वो 9 मई 1940 को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ और बचपन से ही उनमें साहस, स्वाभिमान और नेतृत्व के गुण जो है वो दिखाई देते थे। वे केवल मेवाड़ के शासक नहीं थे बल्कि अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता और सम्मान के प्रहरी भी थे। उस समय भारत का बड़ा हिस्सा जो है वो मुगल साम्राज्य के अधीन था। अनेक राजाओं ने अपने राज्य और सुविधाओं को बचाने के लिए उन समझौते कर लिए, लेकिन महाराणा प्रताप ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि वे अपने स्वाभिमान और मेवाड़ की स्वतंत्रता के साथ कोई समझौता है वो नहीं करेंगे। और यही वह निर्णय था जो दोस्तों जिसने उन्हें इतिहास के महानतम योद्धाओं की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। साथियों, महाराणा प्रताप का जीवन जो है वो हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत केवल सेना या धन में नहीं होती है बल्कि दृढ़ इच्छा शक्ति में होती है। जब परिस्थितियां कठिन थी, संसाधन कम थे, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने जंगलों में रहकर संघर्ष किया, कष्ट सहे, लेकिन अपने लक्ष्य से कभी भी पीछे नहीं हटे। और जो युवा साथी हैं वो भी उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, उनको भी महाराणा प्रताप से बहुत सारी बातें सीखनी चाहिए। और हमें युद्ध के मैदान में नहीं लड़ना, लेकिन हमें आलस्य, नकारात्मक सोच, असफलता के डर और निराशा से लड़ना है। ये बात जो है वो मेरे युवा साथियों के लिए है कि युद्ध जो है वो हमें नहीं करना है, लेकिन आलस्य, नकारात्मक सोच और असफलता का जो डर है वही युद्ध है हमारे सामने, उनसे हमें लड़ना है। हमें अपने सपनों के लिए संघर्ष करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है और अपने देश के विकास में योगदान देना है। महाराणा प्रताप हमें सिखाते हैं कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हों तो जीत जो है वो निश्चित है। और जब हम महाराणा प्रताप की बात करते हैं दोस्तों, तो उनके प्रिय जो अश्व है चेतक, उसका नाम भी गर्व से लिया जाता है। चेतक केवल एक घोड़ा नहीं था, वह निष्ठा, साहस और समर्पण का प्रतीक था। हल्दीघाटी के युद्ध में चेतक ने अपने स्वामी की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान दे दिया और ये घटना आज भी हमें कर्तव्य और वफादारी का संदेश देती है। दोस्तों, महाराणा प्रताप की सबसे बड़ी विरासत जो है वो उनका स्वाभिमान है। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अपने सम्मान और सिद्धांतों को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। आज महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर आइए हम सब भी जो है वो संकल्प लें कि हम अपने जीवन में अनुशासन अपनाएंगे, हम कठिनाइयों से नहीं घबराएंगे और हमें जो है अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना होगा और अपने कर्मों से राष्ट्र का गौरव जो है वो बढ़ाना होगा। क्योंकि जब युवा जागता है तो इतिहास बदलता है और जब युवा आगे बढ़ता है तो राष्ट्र आगे बढ़ता है और जब युवा महाराणा प्रताप के आदर्शों को अपनाता है तो सफलता जो है वो स्वयं उसके कदम चूमती है। तो इसी तरीके से महाराणा प्रताप से हम बहुत सारी बातें सीख सकते हैं दोस्तों, बहुत सी ऐसी बातें जो अगर हम हमारे जीवन में उतार लें तो आसानी से हमारा जीवन जो है वो आगे बढ़ सकता है। यदि महाराणा प्रताप के जीवन से सफलता का एक सूत्र निकाला जाए तो दोस्तों वह यह है, साहस, संघर्ष, स्वाभिमान, धैर्य, और इन सब को मिलाकर जो सफलता है वो हमें मिलती है। साहस आपको शुरुआत कराता है, संघर्ष आपको मजबूत बनाता है, स्वाभिमान आपको सही रास्ते पर रखता है, धैर्य आपको मंजिल तक पहुंचाता है और इस तरीके से आप जो है सफलता तक पहुंच जाते हैं। और अगर इसी के साथ हम युवा साथियों की चुनौतियों की बात करें तो आज तकनीक की ने जितना जीवन आसान बनाया है, लेकिन इसके साथ बहुत सी चुनौतियां भी आई है। समय की बर्बादी, नकारात्मक सोच, अनुशासन की कमी और लक्ष्य से भटकाव, ऐसे समय में महाराणा प्रताप का जीवन हमें अनुशासन और समर्पण का महत्व सिखाता है। हर दिन आप स्वयं से पूछिए कि मैं अपने लक्ष्य के लिए क्या कर रहा हूँ, कितना समर्पित हूँ, तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये आपको आपके जीवन में और ज्यादा आगे बढ़ाने में काम आएगी। तो महाराणा प्रताप का अगर हम दोस्तों सबसे बड़ी गुण की बात करें तो हमने बात की कि स्वाभिमान जो है वो उनमें काफी अच्छा था। तो उन्होंने हमें ये सिखाया कि व्यक्ति जो है उसके पास धन की कमी हो सकती है, संघर्ष कर सकता है, लेकिन उसे अपना सम्मान कभी नहीं खोना चाहिए। आज के समय में भी यह शिक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है। यदि आपके पास ज्ञान है, चरित्र है और आत्मसम्मान है तो दुनिया की कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। तो अपने सिद्धांतों को कभी मत बेचिए, सफलता देर से मिलती है लेकिन ईमानदारी का रास्ता जो है वो कभी भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए, उस पे हमेशा चलते रहना चाहिए। तो दोस्तों, महाराणा प्रताप जो है उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत सारी प्रेरणा जो है वो मिलती है। और आज का दिन जो है उनको याद करने का दिन है, महाराणा प्रताप की जयंती के रूप में हम जो है वो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो महाराणा प्रताप को हम शत शत नमन करते हैं

जी दोस्तों, म्यूजिकल ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की मेवाड़ के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की, और आज जो है वो हम बात करेंगे कि एक ऐसे महान व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित करेंगे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज, शिक्षा, राष्ट्र और मानव सेवा के लिए समर्पित कर दिया। जी बिल्कुल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ओडिशा के गौरव समाज सेवी, स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और शिक्षाविद गोपाल बंधु दास की, जिन्हें प्रेम और सम्मान से उत्कल मणि जो है वो कहा जाता है। और अगर हम उत्कल मणि का अर्थ जाने तो उड़ीसा का रत्न ये है जो इसका अर्थ होता है। और आज उनकी पुण्यतिथि पर आइए उनके जीवन, संघर्ष और योगदान को याद करें और उनसे प्रेरणा जो है वो हम ले सकते हैं। बहुत सी बातें हमें सीखने को मिलती है उत्कल मणि जो गोप बंधु दास हैं उनसे। दोस्तों, गोप बंधु दास का जन्म जो है 9 अक्टूबर 1877 को ओडिशा के पुरी जिले के एक गांव में हुआ था, और बचपन से ही वे अत्यंत प्रतिभाशाली, संवेदनशील और समाज के प्रति समर्पित थे। उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और आगे चलकर कानून की पढ़ाई भी की, लेकिन उनका उद्देश्य जो है वो केवल व्यक्तिगत सफलता प्राप्त करना नहीं था बल्कि समाज की सेवा करना था। उन्होंने महसूस किया कि देश और समाज की उन्नति के लिए शिक्षा जो है वो सबसे बड़ा साधन है। गोप बंधु दास का मानना था कि शिक्षा जो है वो केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि वह व्यक्तित्व की चरित्र और नैतिकता, समाज सेवा की भावना का विकास भी जो है वो शिक्षा को करना चाहिए। और इसी सोच के साथ उन्होंने एक विद्यालय की भी स्थापना की जिसका नाम सत्यवादी बना विद्यालय था, जिसे अब सत्यवादी हाई स्कूल के रूप में जाना जाता है। ओडिशा के सखी गोपालपुरी में स्थित ये एक ऐतिहासिक और राष्ट्रवादी विद्यालय है, और इसे 1909 में स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक जो उत्कल मणि गोप बंधु दास है द्वारा ब्रिटिश शासन की शिक्षा प्रणाली के विकल्प के रूप में स्थापित किया गया। और यह विद्यालय अपनी अनूठी कार्य प्रणाली और इतिहास के लिए जाना जाता है। खुले में शिक्षा इसमें दी जाती है। ये विद्यालय जो है गुरुकुल परंपरा की तर्ज पर घने वनों और बरगद के पेड़ों के नीचे चलाया जाता है, जहाँ प्रकृति के सानिध्य में छात्रों को पढ़ाया जाता था। और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण जो है वो इसका मुख्य उद्देश्य था। छात्रों में राष्ट्रवादी चेतना, सेवा, आत्मसम्मान और भारतीय संस्कृति को जागृत करना, और ब्रिटिश जो औपनिवेशिक थे वो मानसिकता से मुक्त हो, ये इसका राष्ट्रवादी दृष्टिकोण था। पंच सखा का योगदान इस विद्यालय की स्थापना जो है और संचालन में गोप बंधु दास के साथ साथ पंच सखा, पांच जो मित्र हैं के रूप में प्रसिद्ध विद्वान नीलकंठ दास, गोदावरीश मिश्र, आचार्य हरिहर, कृपा सिंधु मिश्र का जो महत्वपूर्ण योगदान था। और ये जो विद्यालय है, सामाजिक सुधार की जो बातें हैं वो इसमें सिखाई जाती है। इस विद्यालय के शिक्षकों और छात्रों ने समाज सुधार में भी सक्रिय भूमिका निभाई, और ये विद्यालय जो है वो ओडिशा के पुरी जिले में सखी गोपाल नामक स्थान पर है, जो पुरी से लगभग 20 किलोमीटर और भुवनेश्वर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इस विद्यालय की विशेषता यही थी दोस्तों कि यहाँ विद्यार्थियों को प्रकृति के बीच में शिक्षा दी जाती, साथ ही उनमें राष्ट्र भक्ति, अनुशासन और सेवा की भावना जो है वो विकसित की जाती। आज भी उनका ये शैक्षिक जो दृष्टिकोण है वो अत्यंत प्रासंगिक माना जाता है। गोप बंधु दास की अगर हम बात करें दोस्तों, तो गोप बंधु दास का जीवन जो है वो मानव सेवा का पर्याय था। जब भी ओडिशा में बाढ़, अकाल और अन्य प्राकृतिक आपदाएं आती तो वे स्वयं लोगों की सहायता के लिए आगे बढ़ते। वे केवल भाषण देने वाले नेता नहीं थे बल्कि लोगों के दुख दर्द को अपना दुख समझते थे, और कहा जाता है कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुखों से अधिक जो है वो महत्व समा

समाज की भलाई को दिया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची महानता दूसरों की सेवा में है। गोपबंधु दास भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े रहे। वे महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे और राष्ट्रीय चेतना को जन जन तक पहुंचाने का कार्य जो है वो करते थे। उन्होंने लोगों में स्वतंत्रता, स्वाभिमान और राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत की। उनका विश्वास था कि स्वतंत्र भारत जो है उसका निर्माण शिक्षित, जागरूक और जिम्मेदार नागरिकों द्वारा ही संभव है। साथ ही साथ उन्होंने पत्रकारिता में भी योगदान दिया। गोपबंधु दास एक प्रभावशाली पत्रकार भी थे। उन्होंने ओडिशा के लोगों की समस्याओं को सामने लाने और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए पत्रकारिता को माध्यम बनाया। उनके द्वारा स्थापित समाचार पत्र जो है वो आज भी ओडिशा के प्रमुख समाचार पत्रों में से एक माना जाता है। पत्रकारिता के माध्यम से उन्होंने जनता की आवाज को शक्ति प्रदान की और समाज सुधार के कार्यों को और भी ज्यादा आगे बढ़ाया। अब दोस्तों बात करें कि उन्हें उत्कल मणि क्यों कहा गया, तो गोपबंधु दास की व्यक्तित्व में शिक्षा, सेवा, त्याग, नेतृत्व और राष्ट्रभक्ति का अद्भुत समन्वय था। उन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक जो क्षण है वो जनता की भलाई के लिए समर्पित किया। इसी कारण ओडिशा की जनता ने उन्हें उत्कल मणि की उपाधि दी। और ये केवल एक सम्मान नहीं था बल्कि उनके प्रति जनता के प्रेम और विश्वास का प्रतीक था। अब युवा साथियों के लिए भी एक संदेश है दोस्तों कि गोपबंधु दास का जीवन जो है वो हमें कई महत्वपूर्ण सीख देता है। पहली सीख की शिक्षा का उद्देश्य जो है वो केवल नौकरी पाना नहीं है बल्कि समाज को बेहतर बनाना भी है। दूसरी सीख ये है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो दूसरों की सेवा करे। और तीसरी सीख उनसे हमें ये मिलती है दोस्तों कि राष्ट्र निर्माण में हर नागरिक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज के युवाओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेकर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। 17 जून 1928 को गोपबंधु दास का निधन हुआ। उनका जीवन काल भले ही अपेक्षाकृत छोटा रहा लेकिन उनके कार्यों की जो छाप है वो आज भी अमिट है। उनके पुण्यतिथि हमें याद दिलाती है दोस्तों कि एक व्यक्ति अपने जो समर्पण, सेवा और दृढ़ इच्छा शक्ति से समाज में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है। ये दिन केवल उन्हें याद करने का नहीं है बल्कि उनके आदर्शों को अपनाने का अवसर है। दोस्तों उत्कल मणि गोपबंधु दास का जीवन जो है वो त्याग, सेवा और राष्ट्रभक्ति का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने शिक्षा को समाज परिवर्तन का माध्यम बनाया, पत्रकारिता को जन सेवा का साधन बनाया और अपना पूरा जीवन जो है वो मानव कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। आइए उनकी पुण्यतिथि पर हम सभी संकल्प लें कि हम भी समाज की भलाई, शिक्षा के प्रसार और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देंगे। इसी श्रद्धांजलि के साथ हम उत्कल मणि गोपबंधु दास को सत सत नमन करते हैं। और दोस्तों इसी के साथ कार्यक्रम में भी आगे बढ़ते हैं। खास सेगमेंट में बातें यही जारी रहेगी। फिलहाल ये चलते हैं आपको एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक पर।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
3: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया, अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
4: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: जी दोस्तों, खास सेगमेंट विज्ञान धारा में बात करते हैं कि विज्ञान ने कितनी प्रगति कर ली है। जी दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप जो है वो अपने किसी प्रिय अभिनेता, नेता या मित्र का एक वीडियो देखते हैं। वीडियो में वो जो व्यक्ति है वो कुछ ऐसा कह रहा है जो उसने कभी कहा ही नहीं। उसके चेहरे के हाव भाव बिल्कुल वास्तविक लग रहे हों, उसकी आवाज भी जो है वो बिल्कुल असली प्रतीत हो रही हो, लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो वीडियो है वो पूरी तरह नकली है। सुनने में ये किसी विज्ञान कथा फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन आज की दुनिया में ये एक वास्तविकता है। आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ऐसी तकनीक विकसित कर दी है कि किसी व्यक्ति के चेहरे, आवाज और हाव भाव की जो हूबहू है वो नकल कर सकती है, और इस तकनीक को हम डीप फेक के नाम से जानते हैं। जी दोस्तों, डीप फेक जो है वो शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, डीप और फेक। और यहाँ डीप का संबंध जो है वो डीप लर्निंग नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक से है, और फेक का अर्थ है नकली। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो डीप फेक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति के चेहरे, आवाज या हाव भाव की इतनी सटीक नकल की जाती है कि वो बिल्कुल असली प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए किसी प्रसिद्ध अभिनेता, खिलाड़ी या नेता की पुरानी वीडियो और तस्वीरों का उपयोग करके ऐसा वीडियो बनाया जा सकता है जिसमें वह व्यक्ति जो है वो ऐसी बातें करता दिखाई दे जो उसने वास्तव में कभी कही ही नहीं। और यही कारण है कि डीप फेक जो है वो आज दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों कि डीप फेक जो है वो किस तरीके से काम करता है, और सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो तकनीक है वो काम कैसे करती है। तो डीप फेक बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग जो है वो किया जाता है। कंप्यूटर को किसी व्यक्ति की हजारों तस्वीरें, वीडियो और ऑडियो जो रिकॉर्डिंग है वो दिखाई जाती है। इसके बाद AI उस व्यक्ति के चेहरे की बनावट, मुस्कान, आंखों की हरकत, बोलने के तरीके और आवाज के पैटर्न को सीख लेता है, और जब कंप्यूटर पर्याप्त जानकारी सीख जाता है तब वो नया वीडियो और ऑडियो जो है वो तैयार कर सकता है जो देखने और सुनने में बिल्कुल वास्तविक लगता है। यानी कि मशीन इंसान की डिजिटल नकल तैयार कर देता है। अब दोस्तों बात करें कि जो डीप फेक है उसके हम पॉजिटिव जो भी उसको किस तरीके से काम में ले सकते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हर तकनीक जो है वो केवल नुकसानदायक नहीं होती है। यदि सही तरीके से उपयोग किया जाए तो डीप फेक जो है वो उसके बहुत सारे लाभ भी हमें मिलते हैं। जैसे कि इतिहास के महान व्यक्तियों को डिजिटल रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। कल्पना कीजिए कि छात्र जो है वो महात्मा गांधी, APJ अब्दुल कलाम या किसी वैज्ञानिक को स्क्रीन पर बोलते हुए देखें और उनके विचार जो है वो सुने। इससे शिक्षा जो है अधिक रोचक बन जाती है, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। और हम बात करें मनोरंजन के लिए तो फिल्म उद्योग में डीप फेक का उपयोग विशेष प्रभाव बनाने के लिए किया जा सकता है। कई बार कलाकारों को युवा दिखाने या पुराने जो दृश्य हैं उनको पुनः जीवंत करने में इस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही साथ किसी व्यक्ति के वीडियो में होठों की गतिविधियों को दूसरी भाषा के अनुसार बदला जा सकता है, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों तक संदेश जो है वो आसानी से पहुंच सकता है। साथ ही साथ कुछ शोधकर्ता डीफेक जैसी तकनीकों का उपयोग उन लोगों की आवाज पुनः बनाने के लिए कर रहे हैं जो बोलने की क्षमता जो है वो खो चुकी हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे तरीकों में ये जो है हमारे लिए उपयोगी साबित हो सकता है। और दोस्तों, किस तरीके से हम डीप फेक की पहचान जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ संकेतों पर ध्यान देकर डीप फेक को पहचाना जा सकता है। जैसे कि कोई भी वीडियो अगर आप देखते हैं तो चेहरे की जो गतिविधियां हैं वो असामान्य हमें लग सकती है, होठों और आवाज में तालमेल की कमी हो सकती है, आंखों के झपकने की गति जो है वो प्राकृतिक नहीं लगती, वीडियो की गुणवत्ता जो है कुछ हिस्सों में असमान दिखाई देती है, किसी सनसनीखेज वीडियो को तुरंत सच मानने के बजाय विश्वसनीय स्रोतों से हमें सत्यापन जो है वो करना चाहिए, कुछ जागरूकता जो है वो हमें रखनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आज का युग जो है डिजिटल युग है, जितना महत्वपूर्ण नई तकनीकों को सीखना है उतना ही उनके प्रति जागरूक रहना भी है। सोशल मीडिया पर दिखने वाली जो हर चीज़ है वो सच नहीं होती। किसी भी वीडियो, फोटो या ऑडियो को साझा करने से पहले उनकी सत्यता की जो जांच है वो हमें अवश्य करनी चाहिए। डिजिटल नागरिक के रूप में ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और साथ ही साथ विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले वर्षों में डीप फेक तकनीक का जो उन्नत है वो और भी ज़्यादा अधिक होगी, और इसके साथ साथ ऐसी तकनीकें भी विकसित की जा रही है जो डीप फेक की पहचान करें। तो भविष्य में जो AI है वो समस्या का समाधान बन के हमारे सामने आएगा। तो साथियों, डीप फेक आधुनिक तकनीक का एक अद्भुत उदाहरण है और ये हमें दिखाता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता कितनी शक्तिशाली हो चुकी है। लेकिन हर शक्ति के साथ साथ जिम्मेदारी भी आती है। यदि डीप फेक का उपयोग शिक्षा, मनोरंजन और जनहित के लिए किया जाए तो ये वरदान साबित हो सकता है, लेकिन यदि इसका दुरुपयोग किया जाए तो ये समाज, लोकतंत्र और व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। इसलिए आवश्यक है कि हम जो है वो तकनीक के साथ साथ जागरूकता को भी बढ़ाएं और हमेशा याद रखें कि डिजिटल जो युग है, डिजिटल दुनिया है, उसमें केवल स्मार्ट होना पर्याप्त नहीं है बल्कि जागरूक होना भी उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम समझते हैं फिर भी हम गलतियां कर बैठते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जो डीप फेक है वो किस तरीके से काम करता है, ये सब बातें हमने जान ली हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। और ये तकनीक जो है वो हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाती है कि विज्ञान स्वयं ना तो अच्छा होता है और ना बुरा, बल्कि उसका उपयोग जो है उसे उपयोगी और हानिकारक बनाता है। डीप फेक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग जैसे वैज्ञानिक आविष्कार मानव बुद्धि और विज्ञान की अद्भुत उपलब्धियां हैं, और इनकी सहायता से शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन और शोध के क्षेत्र में नए अवसर पैदा हो रहे हैं। लेकिन यदि इनका गलत उपयोग किया जाए तो ये तकनीक भ्रम, धोखाधड़ी और गलत जानकारी फैलाने का कारण बन सकती है। इसलिए विज्ञान का वास्तविक उद्देश्य जो है वो केवल नई तकनीक बनाना नहीं बल्कि मानव जीवन को बेहतर और सुरक्षित बनाना है। एक जागरूक नागरिक के रूप में हमें वैज्ञानिक सोच अपनानी होगी, हर जानकारी को परखना होगा और तकनीक का जिम्मेदारी से साथ उपयोग जो है वो हमें करना होगा। आइए हम संकल्प लें कि विज्ञान और तकनीक का उपयोग मानवता, सत्य और समाज के कल्याण के लिए करेंगे, क्योंकि जब विज्ञान के साथ विवेक जुड़ता है तभी प्रगति का जो मार्ग है वो प्रशस्त होता है। जी बिल्कुल दोस्तों, कार्यक्रम में बातें आगे यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल ये चलते हैं आपको एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक पर।

जी दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां हरे भरे खेतों की जगह बंजर भूमि हो, नदियां सूख चुकी हो, पेड़ पौधे समाप्त हो रहे हो और पीने के पानी के लिए लोग जो है वो संघर्ष कर रहे हो। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना आज दुनिया के अनेक देश जो हैं वो कर रहे हैं। धरती हमें भोजन देती है, पानी देती है, जीवन देती है, लेकिन जब यही धरती अपनी उपजाऊ शक्ति खोने लगती है, जब हरियाली धीरे धीरे रेगिस्तान में बदलने लगती है, तब उसे मरुस्थलीकरण कहा जाता है। और इसी गंभीर समस्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष जो है वो 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने का विश्व दिवस जो है वो मनाया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि मरुस्थलीकरण क्या है। मरुस्थलीकरण का अर्थ है उपजाऊ भूमि का धीरे धीरे बंजर या रेगिस्तानी भूमि में बदल जाना। ये केवल रेगिस्तान के फैलने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि भूमि की गुणवत्ता जो है उसमें गिरावट का भी आना है। जब मिट्टी अपनी उर्वरता खो देती है, पेड़ पौधे कम होने लगते हैं और भूमि पर खेती जो है वो कठिन हो जाती है, तब मरुस्थलीकरण की स्थिति उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं सूखे के बारे में। तो सूखा दोस्तों वह स्थिति है जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक सामान्य से कम वर्षा होती है। इस कारण जल स्रोत जो है वो सूखने लगते हैं, फसलें प्रभावित होती है और पानी की कमी जो है वो पैदा हो जाती है। सूखा केवल पानी की समस्या नहीं है, बल्कि ये भोजन, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है। अब इस बारे में विज्ञान का क्या कहना है? विज्ञान के अनुसार मरुस्थलीकरण और सूखे के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान जो है वो लगातार बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने से मिट्टी की नमी तेजी से समाप्त होती है और वर्षा का चक्र जो है वो प्रभावित होता है। साथ ही साथ वनों की कटाई, पेड़ मिट्टी को बांध कर रखते हैं। जब बड़े पैमाने पर जंगल काटे जाते हैं तो मिट्टी का कटाव जो है वो बढ़ जाता है और भूमि बंजर होने लगती है। साथ ही साथ जब पशु किसी क्षेत्र की वनस्पतियों को अत्यधिक मात्रा में खा लेते हैं तो भूमि की सुरक्षा है वो कम हो जाती है। और जल का अत्यधिक दोहन भी इसका कारण है कि भूजल का अत्यधिक उपयोग भी भूमि को कमजोर बनाता है। भारत और मरुस्थलीकरण की बात की जाए दोस्तों, तो भारत के बारे में हमेशा एक बात कही जाती है कि भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और कुछ अन्य जो क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण की समस्या विशेष रूप से देखी जाती है। यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में ये चुनौती जो है और भी गंभीर हो सकती है। अब अगर हम बात करें मरुस्थलीकरण के प्रभाव के बारे में, तो सबसे पहले कृषि पर इसका प्रभाव पड़ता है कि उपजाऊ भूमि जो है वो कम होने से फसल उत्पादन घटता है। साथ ही साथ जल संकट पैदा होता है। नदियां, तालाब और भूजल स्रोत जो हैं वो प्रभावित होते हैं। जैव विविधता पर भी असर होता है। पौधों और जीव जंतुओं की अनेक जो प्रजातियां हैं वो संकट में पड़ जाती है। साथ ही साथ आर्थिक प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। किसानों की आय कम होती है और रोजगार के जो अवसर हैं वो भी प्रभावित होते हैं। सूखे का सामाजिक प्रभाव की अगर हम बात करें तो सूखा जो है वो केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं है, बल्कि ये सामाजिक और आर्थिक संकट भी पैदा करता है। कई बार लोग रोजगार की तलाश में पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं और पानी और जो भोजन है उसकी कमी समाज पर गहरा प्रभाव डालती है। और अब बात करते हैं दोस्तों कि इसका समाधान क्या है और इसके किस तरीके से हम निपट सकते हैं। तो सबसे पहला समाधान जो है वो ये है कि वृक्षारोपण हम कर सकते हैं। अधिक से अधिक पेड़ लगाना और उनकी देखभाल करना। सबसे जरूरी बात ये है दोस्तों कि आप सिर्फ पेड़ ना लगाएं, उनकी देखभाल भी करें। पेड़ लगाने के साथ साथ जरूरी है कि उनकी देखभाल होना। अगर देखभाल, कई बार ऐसा होता है कि हमने पेड़ लगाया और उसे छोड़ दिया, उस पर ध्यान नहीं देते, तो ऐसा नहीं करना है। पेड़ लगाकर उसकी पूरी जो देखभाल है वो आपकी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को एक जागरूक नागरिक बनके आपको उठाना है। साथ ही साथ जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना और टिकाऊ कृषि जो है वो करनी चाहिए। ऐसी खेती है उसको अपनाना चाहिए जिसमें पानी की जो कम है वो खपत हो। साथ ही साथ मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए वैज्ञानिक उपाय हैं वो अपनाना जरूरी है। भूमि संरक्षण करना जरूरी है। जन जागरूकता होना बहुत ज्यादा आवश्यक है दोस्तों। लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब जो मेरे युवा साथी हैं उनकी भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। और वो किस तरीके से है कि पर्यावरण की रक्षा जो है वो केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमें समझना होगा। हर नागरिक का योगदान इसमें बहुत ज्यादा आवश्यक है। आप एक पेड़ लगाकर, पानी बचाकर और दूसरों को जागरूक करके बहुत बड़ा परिवर्तन है वो ला सकते हैं।
याद रखिए, आज बचाया गया पानी जो है वो आने वाली पीढ़ियों का जीवन बचा सकता है। और अगर आपने इनमें से एक भी काम किया है और कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। आप केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी का भी जीवन जो है वो संरक्षित कर रहे हैं। और आज जो है मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने का विश्व दिवस है वो हम मना रहे हैं। और दोस्तों इस विश्व दिवस का महत्व भी यही है, ये दिवस हमें याद दिलाता है कि धरती के संसाधन जो है वो सीमित हैं। यदि हम उनका विवेकपूर्ण उपयोग नहीं करेंगे तो भविष्य की पीढ़ियों को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ये दिवस केवल एक तिथि नहीं है बल्कि एक चेतावनी और एक अवसर भी है। विज्ञान हमें केवल समस्याओं के बारे में नहीं बताता बल्कि उनके समस्या के समाधान भी हमें जो है वो देता है। आधुनिक तकनीक, जल संरक्षण प्रणाली, मौसम पूर्वानुमान, सूखा प्रतिरोधी फसलें और पर्यावरणीय अनुसंधान जो है इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यही विज्ञान की शक्ति है, समस्याओं को समझना और उनका समाधान खोजना। दोस्तों मरुस्थलीकरण और सूखा केवल पर्यावरणीय चुनौतियां नहीं है बल्कि मानव जीवन, कृषि, जल और भविष्य से जुड़ी गंभीर समस्याएं हैं। आज आवश्यकता है कि हम प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलें। और आइए इस विश्व दिवस पर हम संकल्प लें कि हम पानी बचाएंगे, हम पेड़ लगाएंगे, हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और हरी भरी धरती जो है वो छोड़ेंगे। याद रखिए कि धरती हमारी जरूरतें पूरी नहीं कर सकती, लेकिन हमारा जो है वो पूरी तरीके से जरूरतें हैं वो पूरी करती है, लेकिन हमारा लालच जो है वो कभी पूरा नहीं कर सकती। इस बात को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी के साथ दोस्तों लिए चलते हैं आपको एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक पर।

जी दोस्तों, आज के कार्यक्रम ने हमने बहुत सी उपयोगी और प्रेरणादायक जानकारियां प्राप्त की, और आइए हम सभी मिलकर ज्ञान, जागरूकता और सकारात्मक सोच के साथ एक बेहतर भविष्य के निर्माण में अपना योगदान दें। इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। फिलहाल कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दें आपकी दोस्त डिंपल शर्मा को। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.7 MHz पर। श्रोताओं, इस समय शाम के 5:55 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण में आज की सायंकालीन सभा के शेष रहे कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय के बारे में।

अब से थोड़ी देर में यानी शाम 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। अंग्रेजी में समाचार होंगे शाम 6:05 पर। ये समाचार हम आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले करेंगे। शाम 6:10 पर सुनिए देशभक्ति फिल्म गीत। 6:20 पर श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले संस्कृत में समाचार।

शाम 6:30 मिनट का समय रहेगा हिंदी में प्रादेशिक समाचारों का। जिले की चिट्ठी का प्रसारण होगा शाम 6:42 पर। 6:48 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। ये समाचार प्रसारण हम आकाशवाणी केंद्र जयपुर अजमेर से प्रसारित करेंगे।

कार्यक्रम खेती और गृहस्थी का प्रसारण समय रहेगा शाम 7 बजे का। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चाएं, लोकगीत एवं लोक भजन, फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता श्रोता सुन पाएंगे रात्रि 8 बजे।

रात्रि 8:45 पर सुनिए समाचार संध्या। न्यूज एट 9 का प्रसारण होगा रात्रि 9 बजे। ये समाचार प्रसारण आप आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से सुनेंगे। राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम श्रोता सुन पाएंगे रात्रि 9:15 पर।

कार्यक्रम चर्चा का विषय है। श्रोता सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। यह कार्यक्रम हम आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से प्रसारित करेंगे। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। सुगम संगीत का प्रसारण आप सुन पाएंगे रात्रि 10:30 पर। सभा के आखिर में श्रोता सुनेंगे रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार। 11:05 पर अंग्रेजी में समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण में आज की सायंकालीन सभा के शेष रहे कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय के बारे में। हम आपकी सेवा में आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले, पहले हिंदी में और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार। समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। सत्र का विषय था सभी के लिए संतुलित, समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। श्री मोदी ने अफ्रीका, लैटिन अमरीका और प्रशांत द्वीप देशों को जोड़ने वाली संपर्क परियोजनाओं का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने संपर्क और व्यापार में तेजी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवागमन भागीदारी तैयार करने का भी सुझाव दिया। इसके अंतर्गत G7 देशों की पूंजी, भारतीय प्रतिभाओं और ग्लोबल साउथ के देशों को एक साथ लाया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि ठोस वृद्धि से समावेशन और लोगों के कल्याण को मजबूती मिलती है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ भारत की विकास गाथा के बारे में भी बताया। इसके अलावा श्री मोदी सुरक्षित, त्वरित और प्रभावी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित एक कार्य सत्र में भी शामिल हुए। इसमें G7 सदस्य देशों, सहभागी देशों और प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने डिजिटल नवाचार के भविष्य के बारे में चर्चा की। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ड्स के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्ड्स के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि बातचीत बहुत लाभकारी रही। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, अर्थव्यवस्था, रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री मोदी ने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ करने के पर भी बातचीत की। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज शाम होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर सभी की नजरें लगी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह द्विपक्षीय बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद है कि इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर प्रमुखता से बात होगी।

यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज जलडब्रू मध्य को फिर से खोलने के लिए एक समझौता तय किया है। अब तक हुए काम को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा के अहम मुद्दे पर भी बात कर सकता है। इन महत्व

0: के साथ बैठक करेंगे। भारत और फ्रांस ने पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन पर नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कार्य मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल इस सम्मेलन में शामिल होंगे। ओमान में भारतीय दूतावास ने एमटी सट्टेबेलो हमले में मारे गए दो भारतीय आदित्य शर्मा और शिवानंद चौरसिया के पार्थिव शरीर की स्वदेश वापसी की पुष्टि की है। हाल ही में एमटी सट्टेबेलो जहाज में हुए हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। श्री मोदी ने श्री सिंह ने कहा कि ये पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। गुजरात में वडोदरा में एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई है और 27 अन्य घायल हो गए। आज तड़के बांसवाड़ा से सूरत जा रही एक बस एक खड़े ट्रक से टकरा गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 13 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन ने शतकीय पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Naresh Magu. Prime Minister Narendra Modi today addressed a crucial working session themed Promoting Balanced, Inclusive and Sustainable Economic Growth for the Benefit of All at the ongoing G7 summit in Avion, France. Our correspondent covering the Prime Minister's visit has filed this report.
2: In his address at the session, the Prime Minister underscored the need for international financial institutions to develop mechanisms that impart economic resilience to developing countries. He also proposed connectivity projects linking Africa, Latin America and the Pacific Island countries. He also suggested the creation of international mobilization partnership for accelerating connectivity and trade, in which G7 capital, India's talent and Global South's ownership could be combined. During the session, Mr. Modi also highlighted that tangible growth leads to inclusion and well-being of the people. And spoke about India's growth story underpinned by Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas. Ankit Kumar, Akashwani News, Avion, France.
1: The high-level session was attended by G7 member nations, partner countries and key representatives from the International Monetary Fund and the OECD. Mr. Modi also participated in a working lunch focused on ensuring safe, rapid and effective deployment of artificial intelligence. This meeting brought together G7 member countries, partner nations, and the CEOs of leading AI companies to discuss the future of digital innovation. Prime Minister Modi and German Chancellor Friedrich Merz exchanged views on regional and global developments, including the situation in West Asia and the Russia-Ukraine conflict. The two leaders also reviewed the progress in bilateral engagements and expressed satisfaction at the renewed momentum in the India-Germany strategic partnership, with the successful visit of Mr. Merz to India and the conclusion of the India-EU FTA negotiations earlier this year. Mr. Merz invited the Prime Minister for the 8th India-Germany intergovernmental consultations scheduled to be held later this year in Germany. Prime Minister Modi also held a meeting with President of the European Commission, Ursula von der Leyen, and President of the European Council, Antonio Costa, on the sidelines of the summit. Now all eyes are firmly set on the Prime Minister, Mr. Modi's highly anticipated bilateral meeting with United States President Donald Trump, scheduled for this evening. Union Home Minister Amit Shah today reviewed the functioning of the National Cybercrime Helpline 1930 at a meeting in New Delhi and instructed the officials to revamp it. Mr. Shah also directed the officials to use artificial intelligence and multilingual support to facilitate ease of reporting. He directed the agencies to work closely with the states to pivot

0: श्रोता कार्यक्रम की शुरुआत में सुन रहे थे परदेसी बाबू फिल्म का गीत, आवाज आनंदराज आनंद की।
1: आपको जब भी प्यार जताना होता था हिंदुस्तान का झंडा भेज देते थे।
0: आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं दिल जले फिल्म का गीत, आवाजें कुमार सानू और आदित्य नारायण की।

0: ALA इत्यस्य सक्रियसदस्याः सन्ति ये पश्चिम इम्फाल मण्डलात् गृहीताः एते अनेकेषु हिंसाचार अपराधेषु संलिप्ताः आसन् अपरपक्षे कामजोंग उख्लोल मण्डलयोः सशस्त्र समूहैः उपयुज्यमानाः 26 अवैध गुहास्थानानि ध्वस्तीकृतानि क्रिकेट क्रीडायां लखनऊ नगरे स्पर्धा त्रयाणां श्रृंखलायाः द्वितीयायां एकदिवसीय अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडायां अफगानिस्तान देशं विरुध्य 1-0 अग्रस्थं भारतं 3-400 धावनांकानां लक्ष्यं अददात् यत्र दलनायकेन शुभमन गिलेन 150 ईशान किशनेन च 75 धावनांकानि रचितानि इतः प्राग अफगानिस्तान देशः पणकं विजित्य प्रथमतया क्षेत्ररक्षणं अचिनोत् पुनः एकवारं मुख्याः वार्ताः G7 इत्यस्य नेतारः वैश्विक स्थिरतां सुरक्षा सहकारं बहुराष्ट्रिय संघटित अपराधस्य प्रतिकार प्रयत्नांच केन्द्रीय मानाः घोषणानां श्रृंखलाः स्वीकृतवन्तः फ्रांस देशस्य एवियान नगरे G7 इति शिखर सम्मेलनेन समं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्पेन सह मेलनं करिष्यति रक्षामंत्री राजनाथसिंहः भारतस्य सार्वभौमता निर्विवाद्यमिति कथयन् आतंकवादं विरुध्य सर्जिकल स्ट्राइक्स बालाकोट ऑपरेशन सिंदूर इत्येतानि च निर्णायकानि कार्याणि इति उदघोषयत् भारतस्य रक्षोत्पादनं निवर्तमान वित्तीयवर्षे 10.78 लक्षं कोटिरूप्यकाणि अभिलेख्यं यावत् वर्धितम् इति वार्ताः
1: नमस्कार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अंतिम पायदान के व्यक्ति को जनहित योजनाओं और सरकारी सेवाओं से जोड़ने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन बनाने पर जोर दिया और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से उनके संघर्ष को नमन किया जा रहा है समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को पीएम विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ के अनुसार नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम के माध्यम से ये राशि प्रदान की जाएगी पिछले साल अगस्त में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना है इस योजना से देश भर में लगभग 15 लाख आशार्थियों को रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिली है योजना के तहत पहली बार कार्यबल में शामिल होने वाले कार्मिकों को 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में दी जाती है साथ ही रोजगार देने वाले नियोक्ता प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए हर महीने 3,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त 20 जून को जारी की जाएगी इसके माध्यम से 9,44,00,000 से अधिक पात्र किसानों को लाभान्वित किया जाएगा इस किस्त के जरिए 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी योजना के तहत किसानों को हर साल 2,000 रुपए की 3 किस्तों में कुल 6,000 रुपए सालाना की आर्थिक सहायता दी जाती है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज उदयपुर में शहरी सेवा शिविर का जायजा लिया श्री शर्मा ने उदयपुर विकास प्राधिकरण परिसर में आयोजित शिविर में लाभार्थियों को पट्टे प्रमाण पत्र और दिव्यांगों को सहायता राशि के चेक तथा सहायक उपकरण वितरित किए इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिविर में मौजूद लोगों से बातचीत कर फीडबैक भी लिया मुख्यमंत्री ने आमजन से अपने

0: आसपास के जरूरतमंद लोगों को शिविरों तक पहुंचाने में सहयोग करने का आह्वान किया, जिससे ज्यादा से ज्यादा पात्र व्यक्तियों को योजनाओं और सेवाओं का फायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों की सामूहिक भागीदारी से ही शिविरों की सार्थकता सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं और सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाना है।
1: मित्रों, इन शिविरों के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारी शहरी क्षेत्रों जो भी हमारे वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको उनका लाभ मिलना चाहिए, चाहे वो नामांतरण का हो, शुद्धिकरण का हो, बंटवारे का हो, पट्टों का हो, उसके घर में किसी तरह से कोई परेशानी जैसे नाली, सड़क, खरंजा, सिवरेज खराब, बिजली की व्यवस्था, ये सारे विषय उसमें आते हैं। हम चाहते हैं कि इन शिविरों का आम जन को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले।
0: पांचना बांध का पानी कमांड एरिया की नहरों में छोड़े जाने की मांग को लेकर सवाईमाधोपुर जिले के खंडीप गांव में किसानों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने मुख्यमंत्री श्री शर्मा से मुलाकात कर पानी छोड़े जाने के संबंध में पत्र सौंपा। उन्होंने मुख्यमंत्री से बातचीत कर समस्या का समाधान करने और तुरंत पानी छोड़े जाने का आग्रह किया। वहीं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने किसान प्रदर्शनकारियों से इस मामले पर जातिगत राजनीति नहीं करने की बात कही, साथ ही सामाजिक समरसता बनाए रखने पर जोर दिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज कोटा प्रवास पर हैं। वे शिक्षा व्यवस्था में सुधार और परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर दशहरा मैदान में विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। बांसवाड़ा से सूरत जा रही एक यात्री बस आज तड़के वडोदरा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 27 यात्री घायल हो गए। घायलों को वडोदरा के SSG अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में जान गंवाने वाले लोग बांसवाड़ा के निवासी थे। दुर्घटना की सूचना मिलते ही NDRF और SDRF की टीमें तथा अन्य बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। आज विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस है। ये दिन मरुस्थलीकरण और सूखे के असर से निपटने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सरकार ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए तेजी से काम किया जा रहा है। श्री यादव ने कहा कि ऐसे इलाके जहां मिट्टी में खारापन बढ़ने का खतरा अधिक है, वहां प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और यूरिया तथा केमिकल फर्टिलाइजर के अधिक इस्तेमाल से बचना चाहिए। उन्होंने विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की जरूरत पर जोर दिया।
2: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
0: जन आधार कार्ड को अब डिजी लॉकर पर प्राप्त और साझा किया जा सकता है। राज्य सरकार और डिजी लॉकर के बीच हुए समझौते के तहत प्रदेशवासियों को ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस व्यवस्था से नागरिक डिजी लॉकर ऐप या वेबसाइट पर लॉगिन कर अपना जन आधार दस्तावेज डाउनलोड और सुरक्षित रख सकेंगे। साथ ही जन आधार से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लिए इसकी डिजिटल प्रति का उपयोग भी किया जा सकेगा। गौरतलब है कि राज्य में परिवारों की पहचान के लिए जन आधार अहम दस्तावेज है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए इसे व्यापक रूप से काम में लिया जाता है। प्रदेश में शिशु मृत्यु दर IMR में लगातार सुधार हो रहा है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के ताजा आंकड़ों के अनुसार शिशु मृत्यु दर में एक अंक की कमी दर्ज

0: की गई है। स्वास्थ्य विभाग में शिशु स्वास्थ्य परियोजना निदेशक डॉ प्रदीप चौधरी ने आकाशवाणी को बताया कि नियमित स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से शिशुओं को बेहतर देखभाल मिल पा रही है।
1: हमारे राज्य में जो नवजातों की जो बीमार नवजात है स्पेशली उनकी जो उपचार के लिए जो सुविधाओं का विस्तार हुआ है, अभी राज्य में 71 स्पेशल न्यूबोर्न केयर यूनिट्स, जिनको सामान्य भाषा में आप नर्सरी भी बोलते हैं, और लगभग 1,20,000 के लगभग नवजात वित्तीय वर्ष 25-26 में इन यूनिट्स में भर्ती कर उपचारित किए गए थे। उसके अलावा आशाओं द्वारा घर घर जाकर जो नवजात होते हैं उनकी होम बेस्ड न्यूबोर्न केयर विजिट किया जाना, उसके बाद 3, 6, 9, 12, 15 महीने पे भी बच्चों की विजिट आशाओं द्वारा की जाती है, उनका टीकाकरण इंश्योर किया जाता है। टीकाकरण का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है शिशु मृत्यु दर को कम करने में।
0: वीरता और स्वाभिमान के अमर प्रतीक महाराणा प्रताप की जयंती और हल्दीघाटी विजय के 450 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम रखे गए। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़ी ने भारतीय क्षत्रिय महासंघ की ओर से जयपुर में आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत की। इस मौके पर राज्यपाल ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का स्मरण करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। श्री बागड़ी ने कहा कि उन्होंने आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया। उनका जीवन अन्याय और अनैतिकता से लड़ने की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर उदयपुर में शोभा यात्रा निकाली गई और राष्ट्र चेतना संकल्प सभा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विभिन्न धार्मिक पीठों के साधु संत तथा बड़ी संख्या में प्रदेशवासी कार्यक्रम में शामिल हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने महाराणा प्रताप के संघर्ष को देश की स्वतंत्र चेतना, स्वाभिमान और सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा का प्रतीक बताया।
2: हल्दीघाटी युद्ध में विजय हुई महाराणा प्रताप की, भारत के पक्ष से लड़ने वाले लोगों की, वहां लड़े थे थोड़े से मेवाड़ के वीर, मेवाड़ की जनता के साथ राणा प्रताप नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम पूरा भारत उस लड़ाई पर निगाहें टिकाए बैठा था। और उस लड़ाई ने यह तय कर दिया कि ये जो विदेशी आक्रमण है ये भारत को झुका नहीं सकता। हम भारतवासी अपने धर्म संस्कृति सहित यहाँ पहले से है, बाद में भी रहेंगे।
0: वीर योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती पर पाली, डूंगरपुर, भरतपुर और चूरू सहित विभिन्न जिलों में पुष्पांजलि और गौरव गान कार्यक्रम रखे गए। इस उपलक्ष्य में किशनगढ़ में हेलमेट वितरण कर यातायात सुरक्षा का संदेश दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने आज साइबर अपराधियों को पैरासाइट यानी परजीवी कहा। अदालत ने कहा कि मासूम निवेशकों को ठगने वाले इन अपराधियों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने अलग अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही। साइबर अपराध के पीड़ित पूरे देश में फैले हुए हैं और कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे अपराधियों को जेल में रखना समाज के हित में है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से आज से नशा मुक्त भारत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। हर साल 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में ये पहल की गई है। इस साल की थीम नशा मुक्त भारत अभियान, विकसित भारत की पहचान रखी गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अंतिम पायदान के व्यक्ति को जनहित योजनाओं और सरकारी सेवाओं से जोड़ने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन बनाने पर जोर दिया और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से उनके संघर्ष को नमन किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से अलवर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। अलवर जिले में इन दिनों विकास परियोजनाओं, जल संरक्षण, कृषि जागरूकता और खेल गतिविधियों को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज जिले की चिट्ठी में बात करेंगे ऐसी ही कुछ प्रमुख गतिविधियों की। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास बीते दिनों अलवर आए। उन्होंने अलवर, खैरथल तिजारा और कोटपूतली बहरोड जिलों से जुड़े करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाले विकास कार्यों और परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान सड़क परियोजनाओं, रेलवे से जुड़े कार्यों, क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, अलवर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास, आधुनिक बस स्टैंड निर्माण, ई बस संचालन तथा किशनगढ़ बास क्षेत्र में एयर स्ट्रिप और MOR निर्माण से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। अधिकारियों को सभी काम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान पेयजल परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। रामजल सेतु परियोजना, अलवर भरतपुर चंबल मेगा पेयजल परियोजना, यमुना लिंक परियोजना, राणा प्रताप सागर बीसलपुर वाटर लिंक परियोजना तथा रूपारेल नदी पुनरुद्धार जैसे कार्यों की प्रगति पर चर्चा हुई। अधिकारियों को इन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। साथ ही औद्योगिक विकास से जुड़े विषयों पर भी विचार किया गया। अलवर, भिवाड़ी और नीमराणा के औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने और नए औद्योगिक क्षेत्रों में गतिविधियां बढ़ाने पर जोर दिया गया। पर्यटन क्षेत्र में बाबा भर्तृहरि, बाबा मोहनराम, गरबाजी, लालदास महाराज मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों के विकास पर चर्चा की गई। कांकवाड़ी, कुशालगढ़, अजबगढ़, नीमराणा और तिजारा फोर्ट को पर्यटन सर्किट से जोड़ने की योजना पर भी विचार किया गया। बैठक से पहले केंद्रीय मंत्री और मुख्य सचिव ने मिनी सचिवालय परिसर में राजीविका महिला समूहों की ओर से लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन किया। उन्होंने महिलाओं से संवाद कर उनके द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों की जानकारी ली। बीते दिनों इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित 5वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर बालिका और बालक बॉक्सिंग प्रतियोगिता का समापन हुआ। वन और पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने समापन समारोह में भाग लेकर विजेता खिलाड़ियों को पदक प्रदान किए। बालिका वर्ग में अलवर की टीम विजेता रही और कोटा की टीम उपविजेता रही। वहीं बालक वर्ग में भरतपुर की टीम विजेता और अलवर की टीम उपविजेता रही। विभिन्न खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर और अन्य श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। जिले में जल संरक्षण के उद्देश्य से चलाए गए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के दौरान विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं। गंगा दशहरा के अवसर पर राजगढ़ क्षेत्र के मंगलसर बांध पर अभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। वन राज्य मंत्री संजय शर्मा, प्रमुख शासन सचिव रवि जैन और जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने इस दौरान सरोवर पूजन किया। कार्यक्रम के दौरान कलश यात्रा निकाली गई और उपस्थित लोगों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। अभियान के दौरान जल स्रोतों की साफ सफाई, जल संचयन और पौधरोपण के माध्यम से लोगों को पानी बचाने के प्रति जागरूक किया गया। अलवर जिले के बगड़ राजपूत गाँव में खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की गई। अभियान की शुरुआत के लिए केंद्रीय कृषि और कृषक कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर पहुंचे। उन्होंने कृषि गोष्ठी में भाग लेकर किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करने और परंपरागत खेती को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि खेत की सेहत और मानव स्वास्थ्य का आपस में सीधा संबंध है। कृषि अधिकारियों से किसानों को जागरूक करने और विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाने को कहा। इस दौरान प्रगतिशील किसानों ने अपने अनुभव साझा किए। गुजुकी गांव के किसान महेंद्र कुमार सैनी ने पॉलीहाउस, मल्चिंग और वर्मी कंपोस्ट जैसी योजनाओं से आय बढ़ने की जानकारी दी। वहीं किसान नवाब सिंह ने मधुमक्खी पालन से होने वाले लाभों के बारे में बताया। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के अवसर पर अलवर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। वन और पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने मथुराधीश मंदिर में पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। अलवर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
3: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो 19 जून ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना रा तहत करीब 2,400 करोड़ रुपया री प्रोत्साहन राशि देवन रो कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आखिरी पांत रा हर एक जना ताई जनता रा भलारी सरकारी योजनावां और सेवावां रो फायदो पूगावन रो संकल्प दोहरायो। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव विकास और पर्यावरण ने बचावन बीच संतुलन बनावन माथे जोर दीनो और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप री जयंती रे मौके आज राज्य में

0: भांत भांत रा कार्यक्रम रा खैरवान याद करी जिया। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो 19 जून ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना पीएम वीबीआरवाई रातेत करीब 2400 करोड़ रुपयारी रकम पात्र लोगों ने देवन रो कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री रा दफ्तर सेवा तीर्थ माए रख्या जावन वाला राष्ट्रीय कार्यक्रम रे जरिए आ रकम दी जावेला। लारला साल अगस्त महीना माए चलाई ची ई योजना रो मकसद नौकरी धंधा रा मौका माए बढ़ोतरी सागे सामाजिक हिफाजत रो दायरो बढ़ावनो है। पीएम वीबीआरवाई उन देश माए करीब 15 लाख जना ने काम धंधो करण माए मदद मिलेला। ई योजना रा तहत पहले दफा शामिल होवन वाला ने 15,000 रुपया ताई री रकम दो किश्ता माए दी जावे है। इस आगे नौकरी देवन वाला ने हर अतिरिक्त कर्मचारी सारू हर महीना 3,000 रुपया ताई री रकम मिले है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि री 23वीं किश्त 20 जून न जारी करी जावेला। पीएम किसान सम्मान निधि री ई किश्त रे जरिए 9,44,00,000 उम्बत्ता पात्र किसाना रा खाता माए 18,880 करोड़ रुपये उम्बत्ती रकम जमा कराई जावेला। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि रा तहत किसाना ने हर साल 2,000 रुपया री 3 किश्ता माए कुल 6,000 रुपया सालाना री मदद दी जावे है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज उदयपुर माए लगाई जा शहरी सेवा शिविर रो जायजो लीनो। श्री शर्मा उदयपुर विकास प्राधिकरण परिसर माए लगाई जा शिविर माए पट्टा सर्टिफिकेट और दिव्यांगजन ने मदद री रकम रा चेक और जरूरी साजो सामान दीना। इस दौरान वह शिविर माए मौजूद लोगों सागे बातचीत कर और विचार पूछा। मुख्यमंत्री जनताओं मारा आरे सारे रा जरूरतमंद लोगों ने शिविरां ताई पोगावन माए मदद करन री अरज कीनी। वह कहो कि जनता रा नुमाइंदा अहलकारा कर्मचारियां और जनता री भागीदारी हुई शिविर सार्थक बनेला। मुख्यमंत्री कहो कि राज्य सरकार आखिरी पांत रा हर एक जना ताई जनता रा भलारी योजनावां और सरकारी सेवावां रो फायदो पोगावनो तय कीनो है।
1: मित्रों, इन शिविरों के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारे शहरी क्षेत्रों में जो भी हमारे वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको उनका लाभ मिलना चाहिए, चाहे वो नामांतरण का हो, शुद्धिकरण का हो, बंटवारे का हो, पट्टों का हो, उसके घर में किसी तरह से कोई परेशानी जैसे नाली, सड़क, खरंजा, सिवरेज खराब, बिजली की व्यवस्था, ये सारे विषय उसमें आते हैं। हम चाहते हैं कि इन शिविरों का आम जन को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले।
0: पांचना बंधा रो पानी कमांड एरिया री नहरा माए छोड़न री मांग करता था का किसान सवाई माधोपुर जिला रा खंडीप गांव माए प्रदर्शन कर रहा है। इन बीच कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मुलाकात कर र पानी छोड़न रे बारा माए वन कागज सौंपियो। वह मुख्यमंत्री बातचीत कर र समस्या हल करण और नहरा माए बेगोई पानी छोड़ बारी अरज कीनी। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ई मामला माए जातिगत सियासत नी करण बाबत कहो है। लोकसभा माए विपक्षरा नेता राहुल गांधी आज कोटा पधारिया, मारो कांग्रेस रा कई आला नेता स्वागत कीनो। राहुल गांधी रो भणाई लिखाई हूं जुड़ी व्यवस्था माए सुधार और परीक्षावां माए साफ कोई रबारा माए विद्यार्थियों सागे बातचीत करण रो कार्यक्रम है। इन बीच राज्य रा पहली वाला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटा मेडिकल कॉलेज रा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रो दौरो कर र वठे भर्ती जापा वाली लुगाइयां और वारा परिवार वाला सागे बातचीत कर र वठे इलाज रा सुबिता ना बारा माए जानकारी लीनी। बांसवाड़ाऊ गुजरात माए सूरत जा रही एक बस आज तड़के वडोदरा कने हादसा रो शिकार फेंकी। इन कारण 6 जना री मौत वेगी और 27 मुसाफिर जख्मी फेंकिया। जख्मी लोगों ने वडोदरा रा SSG अस्पताल माए भर्ती कराई चिया है। हादसा रे कारण मरण वाला लोग बांसवाड़ा रा रहवासी हा। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक मत है AIR न्यूज राजस्थान।

0: ਪਰਾਈ ਸੁਣ ਸਕੋ ਹੋ। ਆਜ ਵਿਸ਼ਵ ਮਰੂਸਥਲੀਕਰਨ ਔਰ ਸੂਖਾ ਰੋਕਥਾਮ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਰਾ ਪਸਾਰਾ ਔਰ ਸੂਖਾ ਰਾ ਅਸਰ ਰੋ ਸਾਮੋ ਕਰਨ ਸਾਰੂ ਜਾਗ ਜਗਾਵਣ ਰਾ ਮਕਸਦ ਮਨਾਇਓ ਜਾਵੇ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਿਆਵਰਣ ਵਨ ਔਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨਈ ਦਿੱਲੀ ਮਾਏ ਰਾਖੀ ਜਿਹਾ ਕਾਰਕ੍ਰਮ ਮਾਏ ਕਹਿਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2,60,00,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕਿੰਨੋ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਕਹਿਓ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਮਾਏ ਖਾਰੋਪਨ ਵਧਣ ਰੀ ਸ਼ੰਕਾ ਵਾਲਾ ਹਲਕਾ ਮਾਏ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਖੇਤੀ ਨੇ ਵਧਾਵੋ ਦਿਓ ਜਾਉਣ ਚਾਹੀਚੈ। ਵੈ ਵਿਕਾਸ ਔਰ ਪਰਿਆਵਰਣ ਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਾਥੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਨੋ।
1: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षो में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
0: जन आधार कार्ड अब डिजी लॉकर माथे हासिल करियो जा सके है। राज्य सरकार और डिजी लॉकर बीच व्या करार पाछे ओ सुबी तो मुहैया कराई चो है। ये पाछे अब डिजी लॉकर ऐप या वेबसाइट माथे लॉग इन कर और जन आधार रो कागज डाउनलोड और सुरक्षित रखियो जा सके है। इस आगे जन आधार जुड़ी न्यारी न्यारी सरकारी योजनावां और सेवावां सारू इनरी डिजिटल कॉपी काम ली जा सकेला। ध्यान जोग है कि राज्य माए परिवारां री पिछाण सारू जन आधार खास कागज है। प्रदेश माए जन्मताई बच्चां रे मर जावण री रेट IMR लगातार कम फैर रही है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम कानू मिली जानकारी रे मुजब शिशु मृत्यु दर माए एक अंक री कमी दर्ज करी ची है। स्वास्थ्य विभाग में शिशु स्वास्थ्य रो काम देख रहा परियोजना निदेशक डॉक्टर प्रदीप चौधरी आकाशवाणी ने बतायो कि लगातार स्वास्थ्य जांच, टीका लगावण और स्वास्थ्य जुड़िया सुविधा माए बढ़ोतरियों बच्चा ने बेहतर देखभाल मिल रही है।
2: हमारे राज्य में जो नवजातों की जो बीमार नवजात है स्पेशली उनकी जो उपचार के लिए जो सुविधाओं का विस्तार हुआ है, अभी राज्य में 71 स्पेशल न्यूबोर्न केयर यूनिट्स जिनको सामान्य भाषा में आप नर्सरी भी बोलते हैं और लगभग 1,20,000 के लगभग नवजात वित्तीय वर्ष 25-26 में इन यूनिट्स में भर्ती कर उपचारित किए गए थे। उसके अलावा आशाओं द्वारा घर घर जाकर जो नवजात होते हैं उनकी होम बेस्ड न्यूबोर्न केयर विजिट किया जाना, उसके बाद 3, 6, 9, 12, 15 महीने पे भी बच्चों की विजिट आशाओं द्वारा की जाती है, उनका टीकाकरण इंश्योर किया जाता है। टीकाकरण का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है शिशु मृत्यु दर को कम करने में।
0: हिम्मत अर खुदरा मान री अमर निशानी महाराणा प्रताप री जयंती अर हल्दी घाटी री लड़ाई माए अकबर रे खिलाफ जीत रा 450 साल पूरा फेवन रे मौके आज प्रदेश माए कई कार्यक्रम रखी चिया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भारतीय क्षत्रिय महासंघ री ओर जयपुर माए राखी चिया मान जलसा माए महाराणा प्रताप ने याद करता थका मारा आदर्शा माथा चालन बाबत कहो। श्री बागड़े कहो कि महाराणा प्रताप री जिंदगी अन्याय और अनैतिकताओं लड़बारी सीख देवे है। महाराणा प्रताप री जयंती रे मौके उदयपुर माए शोभा यात्रा निकाली जी और राष्ट्र चेतना संकल्प सभा राखी जी। कार्यक्रम माए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा न्यारी न्यारी धार्मिक पीठा रा साधु संत और मोटी तादाद माए लोग शामिल भया। ये मौके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रा सर संघ चालक मोहन भागवत महाराणा प्रताप री लड़ाई ने देश री स्वतंत्र चेतना खुदरा मान और सांस्कृतिक अस्मिता री हिफाजत री निशानी बताई।
3: हल्दी घाटी युद्ध में विजय हुई महाराणा प्रताप की, भारत के पक्ष से लड़ने वाले लोगों की, वहां लड़े थे थोड़े से मेवाड़ के वीर, मेवाड़ की जनता के साथ राणा प्रताप नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरा भारत उस लड़ाई पर निगाहें टिकाए बैठा था और उस लड़ाई ने यह तय कर दिया कि ये जो विदेशी आक्रमण है ये भारत को झुका नहीं सकता। हम भारतवासी अपने धर्म संस्कृति सहित यहाँ पहले से है, बाद में भी रहेंगे।
0: वीर योद्धा महाराणा प्रताप री जयंती रे मौके पाली समेत न्यारा न्यारा जिला माए फूल चढ़ावण और गौरव गान रा कार्यक्रम राखी चिया। ये मौके सलुम्बर जिला रा चावंड माए महाराणा प्रताप स्मारक स्थल माथे महाराणा प्रताप री मूर्त माथे फूल माला चढ़ाई जी और खास कार्यक्रम राखी।

0: इच्छियो। पालीमाए राखीजा कार्यक्रममाए पशुपालन और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत महाराणा प्रताप री मूर्त माथा सिरधारा फूल चढ़ाया वटा न्यारी न्यारी सामाजिक संस्थावां री ओरों जुलूस और रैली निकाली जी। अजमेर जिला रा किशनगढ़ माए स्कूटर मोटरसाइकिल चलावन वाला ने हेलमेट देर यातायात सुरक्षा रो संदेश दियो चियो। झुंझुनू माए आज नुआ अग्निवीरा रो मान करी चियो। ई मौके राखी जिया कार्यक्रम माए जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग कहो कि झुंझुनू जिलो हिम्मत और बहादुरी सारू न्यारी ओळखाण राखे है और वठाऊ फौज माए भर्ती भैर देश री सेवा करण री रीत रही है। वह कहो कि ऐड़ा जलसा नौजवाना ने आगे बढ़वारी सीख देवे है। अरब मौसम राज्य में कई ठोणा लाड़ला दिना भी बिरखाऊ पारो उतरियो है। कठे कठे तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक कम थियो। चौमासाऊ पहली री बिरखारा असर अब आखा राज्य में लू रो असर खत्म वेक्यो है। मौसम विभाग रे मुजब काल श्री गंगानगर बीकानेर हनुमानगढ़ टोंक बारां और करौली समेत 20 जिला माए ऑरेंज और अलवर भरतपुर अजमेर डीग और जयपुर समेत 16 जिला माए बादलां री गाज और बिजलियां री चमक सागे बरसात वेवण और जोरदार बायरो बाजण रो येलो अलर्ट जारी कर चेताई चियो है। आखिर माए खास समाचार एक और फिर सुन ली रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो 19 जून ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना रा तहत करीब 2400 करोड़ रुपया री प्रोत्साहन राशि देवन रो कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आखिरी पांच रा हरेक जना ताई जनता रा भलारी सरकारी योजनावा और सेवावा रो फायदो पुगावन रो संकल्प दोहरायो। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव विकास और पर्यावरण ने बचावन बीच संतुलन बनावन माथे जोर दीनो। और महाराणा प्रताप री जयंती रे मौके आज राज्य में भांत भांत रा कार्यक्रम राखी चिया। इसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है FM 110.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं इस समय हमारे स्टूडियो के घड़ी में शाम के ठीक 7 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती और गृहस्थी।

0: कार्यक्रम खेती और गृहस्थी सुनना रहा सगला किसान भाया ने गोपाल भाई का निशी हूँ
1: और भाई अरविंद का नहीं हूँ मोकला मोकला
0: राम राम। तो अरविंद भाई आज देखो के ठावड़ो दिन है विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस। तो एक बार हम किसानान बताओ आपके मरुस्थल जगह वे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, अब बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए, धरती पर हरियाली जिकी है वह कितनी होनी चाहिए और हरियाली जे धरती माता होगी तो विष्णु आपा ने और प्रत्येक मानस ने देखो कितो फायदो जो है वो हो सके।
1: भाई अबार गैल ने जो को वक्त टिपियो है
0: हाँ
1: ई वक्त के मैंने आपा देखा के हर साल आपने अंधा धूंध अंधिया में
0: आवे सा
1: और सगे सगे बीच बीच के मैंने भंगुलिया भी आबोक रहे। आपा देखा के चाहे आपने घर की माटी हो है, चाहे खेत की माटी हो है।
0: जी
1: भी माटी के मैं इनके के जिका पेड़ पौधा लागे ही बहु आप आकलन कर सका के बंगे सारे की जिकी जमीन ने गुड्डो आंगण चार चार आंगण या हाथ हाथ गुड्डे गुड्डे सुधी जिकी नाप की जिकी माटी है ने बा कट जाए। आप अंदाज लगावा के जदे एक जंटी के सारे और गोडा सुधी है जिकी माटी कटगी तो बा माटी जा कटे।
0: ठीक बात है
1: बा के कह जकी तेज आंधी आवे ने अंक मायने आपने एरिया में तो खूब माटी है लेकिन जठे माटी नहीं है बी साइड के मायने धीरे धीरे आपनो जो को मरुस्थल है वो आगे बढ़ रही है।
0: ठीक बात।

और इनकी रोकथाम को एक ही इलाज है कि आपने ठीक है भौगोलिक एरिए के मायने आपने मरुस्थल पंथी आईडो है तो आपा भी मरुस्थल के मायने रखी जी की है ना बाकिया भी करके ज्यादा ज्यादा।

0: ठीक बात है।
1: और नहीं आपा देखा के खेत के मैं कठे उडार की जगह हुए और चौकी पाड़ के रेडी हुए,
0: हाँ हाँ,
1: जमीन उरली होड़ी हुए,
0: हाँ हाँ,
1: और कोई बोझो डांखली सारे नहीं हुए,
0: ठीक बात है।
1: बीजा देखा के माटी है जगी अगले खेत में गई, दो खेत आगे गई, कोई अंदाज कौन रहे
0: भाई। लार ने भी आप देखो के पांच सात दिनों देख रहा के आ दिना गमा आंधी उड़ा इंज का कई बार आ गया है। और एक दिन तो अरविंद भाई बे काली पीड़ी आंधी आई जो बे बादल सा इंज का देख लेते हो गोट बनेड़ी और दूर इंज का टब्बर छात पर खेला ने बे अर गुगा के सहतड़ा आ गया। बोले ओ क्या हो गए है काली पीड़ी रेत जिकी बा मिलेड़ी बा रेतड़ो भी वो बहुत दूर आयो। अब देखो कि हवा को वेग जुको है वो कठो माटी उठावे और कटे कटे देखो के गांव में शहरा में जीती बस्ती बिगमा वो देख लियो थे खेताम जो कटायड़ो कूटड़ो सागे वो और भी कोई शो ढूंढ पाट्यो के फगड़े रेतलो ही रेतलो गयो है। अब जटे खेत में माटी उड़ी है बटे तो उड़ी उड़ी है पण घरागमा लुगाएंगी हालत खराब होगी है। कारण कह वो माटो और वो रुफ हो चुके वो ने तो सुरनी मावे और कपड़ा लता जब धोवे तो किता धोवे तो वो जुगो खेल है वो ही ले ले मन पूरा चल रही है क्योंकि आज दिनागमा अपने आंधी उंधी क्यों ज्यादा ही आई। अब धरती के ऊपर जी हरियाली हुए चाहे बा घास फूस की हुए चाहे बा पेड़ पौधा की हुए चाहे दूबी हुए बा अपनी माटी ने उड़न को दे। एक तो जटे इरा की ज्यादा उसी लोगों को स्वास्थ्य जुग है वो बहुत फूट रो रही है। आपनो पशुधन है तो वो भी निरोग रहे सी क्योंकि बिने खाण वास्ते मिल सी। अक्सर आप देखा के जिका पेड़ पौधा ही ने बांके तले नाज आपा चाहे कोई सी फसल को बावा चाहे खरीफ को रबी को जायद को बावा के भी खरपतवार की भी नाज की जगी रंगत कलर बांगी बढ़वार और अनाज को हुए वो और खेत नऊ न्यारो रहे। इको के कारण है कारण सिद्ध है के भाई पेड़ पौधा जगह ईर बांगे ताले तले जगी जगह सी वह हमेशा उपजाऊ रसी क्योंकि भी की पत्ती लूंग बैज की पड़सी वह रेत में मिलसी तो ब्यू बा जगह जगी है वह हमेशा ही और सही रवे। आप कई बार देखा के टेम टेम पर मोकलो में हो बोकरे आप बतलाया करा ने बोले मार ले खेत में तो बाजरी का सिट्टा जगह ही बह डाला मांगी निकल गया और देसी बाजरी बदा ज्यादा मोकलो पानी मिले तो बाहर निकल जा पण बांको आधार भी देखो पेड़ पौधा ही क्यों के जंटी मान लियो अपने इलाका में बहुतायत देखो को हुए और आपने राजस्थान को देखो कहीं कल्प वृक्ष भी कम है तो खेजड़ी जी की है बहुत ही जोर को देखो के रूख है हैं। अब पेड़ पौधा क्या का ये हो इका फायदा ही फायदा है। अब आज की आप बतलावन कर रहे हैं विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कभी दुनिया का मां मरुस्थल जुको है इन आपा कम कहिया करा ताकि मानव जीवन और जितना भी प्राणी जीव जंतु पशु पक्षी बंग देखो के सारा नहीं देखो के जीवन यापन करने को अधिकार है। तो आपा के करा के जितनी भी देशांग मां धरती है जमीन है भी कुल जगह के 33% हिस्से पर है और आप चाहे वन कर दिया चाहे पेड़ पौधा लगाना कर दिया क्यों ही कर दिया अपनी भाषा में बे होना जरूरी है। और ब्यू जे कम मात्रा में होसी तो वे अपने लिए भी नुकसानदायक है पशु पक्षी क्योंकि जैव विविधता को जो को एक चक्र बनेड़ो है तो भी मैं किल किटारी भी होनी जरूरी है भी मैं सांपलान गीचड़गावान बींचियान।

0: देर जिकी अबा नहीं करनी चाहिए, बिन फटाफट ग्रहण कर लेनी चाहिए, क्योंकि ओ जको ज्ञान है ओ आपने जिंदगी भर खेती कमा काम आवेगो, आडो आओगो, क्यों के अपा किसान आ। और किसान जुड़ी कट्ठे भी कोई बात अपन सुनने मिल रही है, समझने मिल रही है, पूछने को अवसर मिल रही है, मौको मिल रही है, तो बठे अपन चूकनो नहीं चाहिए। क्यों के आप अक्सर देखा के संसार के मां कोई न कोई बात ने लेकर लट छोटा होती है बार को लगे, पर वो ज्ञान जी तो आप ग्रहण कराने चाहे वो कोई भी क्षेत्र को बी को अरविंद भाई कदे ही बंटवारो को नहीं होवे और कट्ठे ही देखो के घेसड़ा कौन बाजे है। अब थाने कोई गांव के मां कह गए के 15 क्लास का मां थे जो पढ़ेड़ो है या बाज की सीखी बा मन बताओ कोई कौन कहे है। तो ज्ञान जो को है इको अपा जीतो देखो के अभिवर्धन कर सिया, अपा जीवन का मां बढ़ा सिया, बीतो ही वो आपने जीवन का मां काम आसी। ई खातर ओज को आज विशेष दिवस है विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस और सगे जो खेत बचाओ अभियान आपने देश में चल रही है बिकी बातां भी आपा बताई। आपना जगह किसान है वह इतना शाणा और समझदार है के आपना जगह कार्यक्रम है वह नियमित रूप में सुने, एकदम देखो के पूरे मनोयोग के सगे सुने, एकदम प्लथ मारा देखो रेडियो एकदम जचिया बैठे ही। और आपा भी आई चावा के आपना जगह किसान है आपना जगह श्रोता ही वे आपना जगह कार्यक्रम है वह नियमित रूप में सुने और बांके फायदे की जितनी भी बातें हैं वे देखो के बान ग्रहण करनी चाहिए ताकि बांके जीवन के मां काम आवे। और अब देखो के एक वार्ता जिकी है वह आपने किसान भाइयों ने सुनावा के पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान फायदे महत्व और सावधानियां। वार्ताकार हैं डॉक्टर अमित खत्री, तो आओ सुनो सा यह वार्ता।
1: नमस्कार पशुपालक भाइयों, आज का जो हमारा विषय है वो है कृत्रिम गर्भाधान या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। पहले हम ये चर्चा करेंगे कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है और इसका क्या उपयोग है पशुओं के लिए। इसके बाद हम बातें करेंगे कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भाधान के क्या लाभ हैं, और फिर अंत में इस चर्चा के अंत में हम ये भी बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते समय पशुओं में हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि इसका अधिकतम लाभ जो है हम पशुओं के लिए उठा सकें। सबसे पहले बात करते हैं कि ये कृत्रिम गर्भाधान होता क्या है। कृत्रिम गर्भाधान एक प्रकार की सहायक प्रजनन तकनीक है पहली पीढ़ी की। इस प्रक्रिया के अंदर या इस तकनीक के अंदर हम क्या करते हैं, एक चयन किए हुए वीर्य का उपयोग करते हैं और मादा की जो प्रजनन नलिका होती है उसमें कृत्रिम माध्यम से उसका डिपोजिशन किया जाता है मादा को गर्भित करने के लिए। तो इस तकनीक को हम कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। गाँव में या लोकल बोलचाल की भाषा में इसको AI करना या टीका लगाना भी कहते हैं। जब भी हमारा पशु मध्यकाल में आता है, हीट में आता है, गर्मी में आता है, तो उस वक्त जो किसान भाई हैं वो अपने पशुओं में ये टीका भरवाना एक आम प्रक्रिया है। तो इसके क्या फायदे हैं और क्यों हमें इस तकनीक को चुनना चाहिए, क्योंकि पशुओं को गर्भित करने के दो तरीके होते हैं, जिसमें पहला तरीका है कि हम प्राकृतिक रूप से सांड का उपयोग करके भी पशुओं को गर्भित कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि पशुओं को हम AI का उपयोग करके गर्भित कर सकते हैं। तो कृत्रिम गर्भाधान को हमें क्यों महत्व देना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं, पहले हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहला फायदा कृत्रिम गर्भाधान का ये है कि जो उच्च जनन द्रव्य वाले या अच्छी अनुवांशिक गुणों वाले जो नर होते हैं उनके वीर्य का हम उपयोग कर सकते हैं, और उनके वीर्य को हम पीढ़ी दर पीढ़ी उपयोग करके और उनका अच्छा तीव्र गति से संचरण हम पीढ़ियों में कर सकते हैं। इसका फायदा ये होता है कि आने वाली जो संततियां होती हैं पशुओं की वो अच्छे गुणों वाली संततियां होती हैं, उनकी शारीरिक क्षमताएं अच्छी होती हैं, उनका दुग्ध का उत्पादन अच्छा होता है, उनमें बीमारियां कम होती है और वो प्रजनन रूप से ज्यादा संवर्धित किस्में होती हैं। दूसरा फायदा क्या होता है कृत्रिम गर्भाधान का, जो वेनेरियल डिजीजेज होती हैं, कुछ जनन अंगों से फैलने वाली बीमारियां होती है पशुओं में, उन बीमारियों का रोकथाम जो है वो हम कर सकते हैं कृत्रिम गर्भाधान से, क्योंकि कृत्रिम गर्भाधान में नर और मादा जो पशु होते हैं वो डायरेक्ट रूप से एक दूसरे से संपर्क नहीं बनाते हैं। तो ऐसे जो भी बीमारियां जैसे कंपाइलोबैक्टर का संक्रमण है, ट्राइकोमोनास है, IBR का इन्फेक्शन है, इन सारे इन्फेक्शन को हम रोक सकते हैं।

तीसरा फायदा इसका यह है कि सांड का जो रख रखाव है, उसका जो खर्च है, उसको भी हम कम कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक प्रकार से आर्थिक रूप से लाभ का एक तकनीक है, और हम हमारे जो लागत है पशुपालन की, उस लागत को भी हम कम कर सकते हैं AI का उपयोग करके। उच्च गुण वाले वीर्य से अधिक मादाओं का गर्भधान भी किया जा सकता है। अगर आप प्राकृतिक रूप से किसी सांड का उपयोग करना चाहते हैं, तो वो सांड एक दिन में 2 मादाओं को, या 3 मादाओं को, या 4 मादाओं को गर्भित कर सकता है। पर अगर उसी उच्च गुणवत्ता वाले सांड का वीर्य हम AI से उपयोग करें, तो हम अनेकों मादाओं को जो है वो गर्भित कर सकते हैं। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा फायदा है। उच्च गुण वाले परखे हुए वीर्य का उपयोग जो है वो कृत्रिम गर्भाधान में किया जाता है, क्योंकि जो भी कृत्रिम गर्भाधान में हम सीमन या वीर्य यूज करते हैं, उस वीर्य को पहले प्रयोगशाला में विभिन्न चरणों में परीक्षण किया जाता है कि उसमें कोई बीमारी तो नहीं है, उसमें कोई कमी तो नहीं है, उसमें कोई अनुवांशिक रोग तो नहीं है। तो अच्छे से परखे हुए वीर्य का ही संवर्धन किया जाता है, और फिर उसी वीर्य से सीमन की डोजेस बनाई जाती हैं, और उन डोजेस का उपयोग जो है वो कृत्रिम गर्भाधान में किया जाता है। इस प्रकार का जो परीक्षण है, इस प्रकार की जो गुणवत्ता का जो आकलन है, वो प्राकृतिक गर्भाधान में करना काफी मुश्किल है, और जो जनरली हम नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात है कि उच्च गुण वाला जो वीर्य होता है, उसका हम बहुत ही सुगम तरीके से स्थानांतरण कर सकते हैं। मान लीजिए बहुत ही दूरगामी जगह पर बहुत ही कोई अच्छा अनुवांशिक गुणों वाला सांड है, अगर हमें उस सांड से अपनी मादा को या गाय को या भैंस को गर्भित करवाना है, तो ये बहुत ही मुश्किल है अगर दूरी ज्यादा है। पर अगर कृत्रिम गर्भाधान का हम उपयोग करते हैं, तो उस सीमन को लिक्विड नाइट्रोजन की सहायता से हम आसानी से किसी भी दूरी तक हम स्थानांतरित कर सकते हैं। दूसरी इसकी क्या खास बात है कि अगर कोई ऐसा नर है जिसके अनुवांशिक गुण बहुत अच्छे हैं, जो बहुत ही प्रबल है, जिसकी शारीरिक क्षमता काफी ज्यादा है, और जिसकी संततियों का ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि उसका मिल्क जो प्रोडक्शन है वो काफी हाई है, तो ऐसे नर का हम काफी समय तक उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए ऐसा नर है किसी एक्सीडेंट से या किसी चोट से ग्रसित हो गया है, और वो प्राकृतिक गर्भाधान करने में सक्षम नहीं है, या किसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई है, तो मृत्यु उपरांत भी हम उसके वीर्य को या सीमन को जो है वो अनेकों अनेकों साल तक लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग करके उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं, काफी लंबे समय तक उसका संवर्धन किया जा सकता है। दूसरा, जो भी उच्च गुण वाला जो वीर्य होता है, सीमन होता है, उसको हम काफी समय तक जो है उसका भंडारण या प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। बस हमें जो लिक्विड नाइट्रोजन की जो भंडारण की व्यवस्था होती है, उसमें समय समय पर लिक्विड नाइट्रोजन को फिल करना होता है। बाकी वो जो सीमन या वीर्य है, वो लंबे समय तक हम संरक्षित कर सकते हैं, और उसका उपयोग कर सकते हैं कृत्रिम गर्भाधान के रूप में। और आजकल एक और नई टेक्नोलॉजी आई है जिसको हम बोलते हैं सेक्स सीमन। मतलब पहले से ही सीमन के 2 पार्ट करके डिसाइड कर सकते हैं कि हमें नर बछड़ा चाहिए या मादा बछड़ी चाहिए। तो सेक्स सीमन का अगर भी उपयोग करना है, तो उसके लिए भी एक ही तकनीक है, वो है कृत्रिम गर्भाधान। तो अगर कोई किसान भाई ये चाहता है कि नहीं, मैं सिर्फ अपने पशु का जो धन है उसमें सिर्फ बछड़ी की मुझे आवश्यकता है, तो वो फीमेल जो सीमन है उसको यूज करके कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से बछड़ियों का उत्पादन ले सकता है। और लास्ट में हम ये भी बात कर सकते हैं कि हमारा जो पशुपालन व्यवसाय है, उसको अधिक आर्थिक रूप से संबल बनाने के लिए उसका फायदा या जो लाभ है, आर्थिक लाभ है, वो रखना बहुत ही जरूरी है। और आर्थिक लाभ रखने के लिए हमें पशुओं की बीमारियों से संबंधित, उसके प्रजनन से संबंधित सारे रिकॉर्ड रखने होते हैं। तो रिकॉर्ड रखने के लिए कृत्रिम गर्भाधान का एक बहुत अच्छा महत्व है, क्योंकि जो भी हम सीमन यूज करते हैं, उसकी सारी सूचनाएं, सारी उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो हमारे पास पहले से ही होती है कि ये जो सीमन है वो किस नर पशु का है, उसकी माता का नाम क्या है, उसके पिता का सायर और डैम उसके कौन है, उनका दुग्ध उत्पादन क्या रहा है, उनमें कोई अनुवांशिक बीमारी रही है कि नहीं रही है। सारी जो सूचनाएं, सारा जो रिकॉर्ड है, वो हम अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं अगर हम कृत्रिम गर्भाधान का उपयोग हमारे पशुओं के प्रजनन के लिए करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं पशुपालक भाइयों की इसके अनेकों अनेकों लाभ जो है वो कृत्रिम गर्भाधान के हैं, और हमें कृत्रिम गर्भाधान को बहुत ही अच्छी मनोबल से अपनाना चाहिए, ताकि हमारे पशुधन का स्वास्थ्य जो है वो उन्नत हो सके, उनकी जो किस्में हैं वो उन्नत हो सके, और हम जो हमारी उन्नत किस्में हैं उनको हम प्रिजर्व भी कर सके, उनका संवर्धन और संरक्षण कर सके। पर एक बात ये भी है कि कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए हमें कुछ सावधानियों की भी आवश्यकता पड़े। अगर हम कृत्रिम गर्भाधान की कुछ सावधानियों को नहीं फॉलो करते हैं, तो फिर उतना लाभ जो है वो हमें नहीं मिलता है कृत्रिम गर्भाधान का। और कई बार ये भी शिकायत आती है पशुपालकों की कि हमारे जो पशु हैं वो गर्भित नहीं हो रहे हैं। तो कुछ सावधानियां मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर उन सावधानियों का हम अनुसरण करते हैं, तो कृत्रिम गर्भाधान का अधिकतम लाभ जो है वो हम उठा सकते हैं।

सकते हैं। सबसे पहले तो जब भी हम पशु का कृत्रिम गर्भाधान कराएं तो मदकाल का परीक्षण बहुत ही आवश्यक है। बिना मदकाल के परीक्षण के या हीट के या गर्मी के परीक्षण के हम उसका कृत्रिम गर्भाधान नहीं करा सकते। तो जो भी प्रशिक्षित डॉक्टर हो या पशु प्रैक्टिस करने वाला जो कर्मचारी है, वेटनरी इंस्पेक्टर है, कंपाउंडर है, उससे आपको अपने पशु के मदकाल का अच्छे से परीक्षण करवाना है। और जब ये पता चल जाए आपको, वैसे पशुओं के कुछ लक्षण भी होते हैं जिससे हम किसान खुद भी पता कर सकता है कि पशु मदकाल में है या नहीं है। जैसे पशु बोलना शुरू कर देता है, उसके वल्वा से या वेजाइना वाले हिस्से से योनि के मार्ग से एक चिपचिपा श्लेष्मा और एकदम ट्रांसपेरेंट पारदर्शी जो है द्रव भी निकलता है, और वहां पर थोड़ी लालिमा रहती है योनि वाले भाग में। ये कुछ लक्षण होते हैं जिससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा पशु मध्यकाल से गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा। इसका जो कन्फर्मेशन है वो हमें वेटनरी जो प्रैक्टिशनर होता है या डॉक्टर होता है उससे हमें करवाना होता है। तो जब भी हम हमारे पशु को मध्यकाल में देखते हैं उसके लगभग 12 घंटे बाद हमें पशु का कृत्रिम गर्भाधान करवाना होता है। तो ये इसका उचित समय है गर्भाधान करवाने का। अगर इससे हम ज्यादा देरी कर देंगे या ज्यादा जल्दी हम गर्भाधान करवाएंगे तो हमारे पशु के ठहरने की जो संभावना है वो उसी हिसाब से प्रभावित हो जाती है। दूसरी सावधानी, अगर गर्मी का मौसम है तो हमें सामान्य रूप से गर्भाधान का जो प्रक्रिया है वो या तो सवेरे या फिर शाम को अपनानी चाहिए। जनरली चिलचिली धूप में या बहुत तेज जो धूप होती है उसमें दोपहर के समय हमें गर्भाधान को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो भी पशु का हम गर्भाधान करते हैं वो तनाव रहित होना चाहिए। अगर उसमें किसी भी प्रकार का, चाहे वातावरण का तनाव हो या किसी और प्रकार का तनाव हो, तो उसके गर्भ ठहरने की जो संभावना है वो उस पर प्रतिकूल असर पड़ता है। अगर सर्दियों का समय है तब भी हमें बहुत ज्यादा सर्दी के समय जो है अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग में हमें उसका गर्भाधान नहीं करवाना चाहिए। 10 से 4 बजे का जो समय होता है जहां पर ठीक ठाक टेम्परेचर होता है उसी समय हमें उसका गर्भाधान करवाना चाहिए। तो प्रतिकूल मौसम से हमें पशु को बचाना चाहिए। इसके अलावा पशु का जब भी हम गर्भाधान करवाएं तो पशु को शांत अवस्था में रखना चाहिए, उसको किसी भी प्रकार से उत्तेजित नहीं करना चाहिए। कई पशुपालक क्या करते हैं कि पशु को किसी दूसरी जगह पर लेकर के जाते हैं गर्भाधान के समय, तो पशु का स्थानांतरण हमें मिनिमम करना चाहिए। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि पशु का कृत्रिम गर्भाधान हम हमारे घर पर ही करवाएं तो सबसे ज्यादा उचित है। अगर घर पे गर्भाधान की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो जितना नजदीकी कोई पशु चिकित्सालय है या कोई ऐसा AI का केंद्र है तो वहां पर हम ले जाकर के पशु का टीका भरवाएं तो वो उचित रहता है। कई बार पशु को हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है किसी गाड़ी से या पैदल अगर हम उसको लेकर के जा रहे हैं, तो गर्भाधान के जो केंद्र है उस पर ले जाकर के पहले उसको 15 से 20 मिनट तक हमें आराम कराना चाहिए ताकि पशु का जो तनाव है वो कम हो सके। उसके बाद हमें उसका टीका भरवाना चाहिए और गर्भाधान के बाद में कम से कम 20 से 30 मिनट उसका फिर से हमें उसी केंद्र पर ठंडी छांव में उसको आराम देना चाहिए ताकि जो भी वीर्य या सीमन डिपॉजिट किया गया है वो अधिकतम दूरी तक उसके प्रजनन अंगों में ट्रेवल कर सके या स्थानांतरण कर सके। इसके अलावा जब भी गर्भाधान करवाया जाए तो गर्भाधान करवाते वक्त जो है वो उसके पीछे वाला जो हिस्सा है पशु का उसकी अच्छे से साफ सफाई होनी चाहिए। चाहे तो आप उसको धो सकते हैं सादे पानी से, नहीं तो किसी कपड़े से, साफ कपड़े से, सूती कपड़े से उसकी साफ सफाई होनी चाहिए। उस पर किसी प्रकार का पेशाब या गोबर या मिट्टी, ये सारी चीजें जो है उसके योनि वाले हिस्से पर नहीं होनी चाहिए। अन्यथा जब भी हम गर्भाधान करवाते हैं पशु का तो बाहर की जो गंदगी है उसके गर्भाशय में जाने के संभावनाएं रहती हैं और पशु की बच्चेदानी में कई बार संक्रमण भी हो सकता है। दूसरी बात, गर्मी का, अगर बहुत तेज गर्मी का मौसम है तो अगर हम पशु को पहले नहला दें तो उस पे गर्भाधान पे उसका काफी पॉजिटिव जो है वो फर्क पड़ता है, उसका असर पड़ता है। अगर गर्भाधान करते वक्त अगर पशु पेशाब कर देता है तो फिर हमें ब्रीडिंग की जो सीट है वो चेंज करनी होती है और गर्भाधान की प्रक्रिया को फिर से दोहराना होता है। उच्च गुणवत्ता वाले परखे हुए सीमन का ही हमें उपयोग करना चाहिए। कभी कभार जो है वो मार्केट में डुप्लीकेट सीमन भी आता है जो थोड़े 5 से 10 रुपए कम की लागत में जो है वो हमें सेल करता है, पर ऐसा लालच नहीं करके हमें जो सरकारी एजेंसियों से या फिर जो प्राइवेट कंपनी का भी सीमन ले तो लैब टेस्टेड और अच्छा सीमन जो है वो हमें बरतना चाहिए। दूसरी बात है कि पशु का जो स्वास्थ्य है उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके खान पान का अच्छा ध्यान रखना चाहिए। अगर पशु तंदुरुस्त होगा तभी उसकी प्रजनन क्षमता जो है वो अधिकतम होगी और उसके गर्भ ठहरने की संभावनाएं भी अधिकतम होगी। तो खान पान का ध्यान रखना चाहिए, उसको मिनरल मिक्सचर देना चाहिए, हरा देना चाहिए और उसका स्वास्थ्य भी तंदुरुस्त रखना चाहिए। और जिस जगह पर रखें उसका हाउसिंग, उसका रहन सहन भी, हमें किसी भी तनाव युक्त रहन सहन नहीं होना चाहिए, एकदम तनाव मुक्त रहन सहन उसका रखना चाहिए। क्योंकि पशु अगर तनाव मुक्त रहेगा, उसका खान पान अच्छा रहेगा, सेहत उसकी

0: अच्छी रहेगी तो गर्भधान की संभावनाएं भी अधिकतम होगी और कृत्रिम गर्भधान का अधिकतम फायदा हम उठा पाएंगे।
1: हाँ तो किसान भैया, अभी आप यह वार्ता सुनी, पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान फायदे, महत्व और सावधानियां, और वार्ताकार हार डॉक्टर अमित खत्री। और अरविंद भाई देखो के आज 12 बुधवार, और बुधवार ने देखो के गणेश जी महाराज ने राजी रखना भी जरूरी, तो मांगीलाल कथक की आवाज रमाई एक लोक रचना आपने किसान भाई सुना देवा।

सेवितं कपित्थ जंबु फल चारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं।

महाराज गजानंद आवो नी, मारी सभा में रंग बरसाओ नी। मांगी लाल कत्तक और साथियों की आवाज रमाए आलोक रचना आपने किसान भाई ने सुनाई, और अरविंद भाई आगे जो को टेम आ रही है।

0: वो देखो कै सावणी कुआरी है और खरीफ फसल जकी ही कई इलाके में देखो कै बुआई को काम जुको है वो किसाना चालू भी कर दियो। क्यों कै आ लाल दिना में आप देख रहे हैं 15-20 दिन हुए आंधी उड़ार कठई रात ने मियो ग्योर सागे बिना बुलाया देखो ओल जगह ही वह भी कई जगह टेके है तो कई बार ओलार में आऊ हणो के बा आल बैठती बैठती कई जगह के अलसार में हो गयो। अब जिया आधो जून गयो तो 20 साल मु खेती की दृष्टि में देखे जो तो देखो के एकदम मौके को है काम पने एक साल में होए बिना देखो के पूरा जगह खेत है वह बमी को नहीं ठीक है जठे में जोर को गयो आपने खेता में जो सूड को काम हुए वो जगह जागरूक या प्रगतिशील किसान जगह ही तो वह एकदम चौकी त्रिया के बांट बोझो जो होगा काटा छाटी करके जगह बंजर जंटिया मांगी झांपड़ काट के एर जितो भी बोड़ो वह के एक का निशुआ मिर्डा दे दिया है खाद खुड़ो जितो घना हो इन्हें बिनो लियाणो गाडा में ट्रेक्टरा में घायल के वो गिरा के चौकी त्रिया बांध करके एर बीज बोडे की भी देखो कै व्यवस्था जगह सरतरिया किसान पर रखे और फिर मैं बरसताई बात दूसरे दिन देखो कै तेजो गावे लगा है। अब आगे जे 5-7 दिन में 10 दिन में जे सरड़ को ओ लाग जा तो ओ नाज है जो इत्यावे थोड़ी है ओ इत्यावे को नहीं
1: अबार देखो के ऊपरली पड़े और ये ऊपरली पड़ के मैंने देखो के किसान है जो को खेती करे आस पर और छाटो छिड़को कई जगह के सड़ को चोखो लाग्यो और कई जगह है जो को कम पंती आयो जटे सड़ को चोखो पंती आ गयो बीजा देखो के अपना जगह किसान बहन भाई जगह के बाजरी का बाईता तो कर लिया
0: ठीक बात है
1: और जटे कम सड़ को पंती आयो बटे के उड़ी करे के भाई क्यों तो आलेड़ है रे क्यों अगर जे छंटो छिड़को दिन गया थन के और हो जा
0: ठीक बात है
1: तो वे भी के पूरी तैयारी के सा गई
0: हाँ हाँ कमर कसरा की है
1: और उड़ीक है के भाई कद भी छंटो छिड़को वेर भी छंटो छिड़को होता ही
0: हाँ।
1: खेता में रवाना
0: ठीक बात है
1: तो देखो के ये जुको मौसम के मायने
0: हाँ हाँ
1: और वो जो वक्त है इन वक्त के मायने किसान ने के पेंड पेंड पर और मिंट मिंट पर पूरी सावधानी और सावाचेती हुए ने सारो काम करनो पड़े
0: ठीक बात
1: अब जिया आपा बात करा के भाई अगेती जी की बाजरी को बाई तो है
0: हाँ।
1: देसी बाजरी को जो बाई तो वह जो के अगर जे 5-10 दिन लांगा भी कट जाने तो भी बोआ बाजरी में है जुको के जिया ही में बरस है अरबा ओठो चेतो कर जाए
0: भाई आ चिड़ी बहुत है चिड़ी बहुत है तातेड़ भी सहन कर ले मेवड़ो जे ने हुए तो भी के आंख मीच ले और जिये छांट लागे और देख लो दूसरे दिन कान खड़ा करके एकदम बरना टूपड़े है तो बाजरी देखो के अरबी आस अरविंद भाई देखो जो देसी नाजन है बिगमा पावर तो देखो ज्यादा हो गई है टेम तो लग गए पने जो को अनाज है भी को कोई मुकाबलो को नहीं बुढ़िया कह करता ने के सहज पके सो मीठा होए के जको अनाज या फल फूल के कोई भी सब्जी है देसी और बिने जितने टेम के मां बा पक्के तैयार होएगी और फिर जद भी नापा खावांगार भी को आनंद है जो को न्यारो रहेगो है तो देसी में और संकर के मां रात दिन को फर्क है। अब संकर जो है वो तो 2 महीना का मां तैयार हो जा चाहे मोट की बात कर लियो चाहे बाजरी की बात कर लियो है मोट का जाड़ा इंच का देखो के बिलान बिलान का उजियार बे फली लाग के सूख साग के 2 महीना मीर पूरो खेल है जो खत्म है हैं पर देसी जगह मोट बाड़ा है जे डंको 2-4 मेवड़ा की तान लग जा ने तो बे नाल चाल चाल चाल चाल थे देख लियो के इतना जहां के बे पाटनी में गुनिया में मांगी तो फिर गुलेट ही बनानी पड़े दांतियां काट काट के हैं तो देसी को और असली को और नकली को देखो क्या वो फर्क तो रहसी
1: भाई देसी और संकर।

0: को जो को अंतर है वो रात दिन को अंतर हुआ है।
1: हाँ।
0: और अपा देखा के स्वाद के माइन भी।
1: हाँ।
0: और नाज के माइन जी की ताकत हो ने।
1: हाँ।
0: बिम भी है जो को बहुत ज्यादा अंतर है जो को आपने देखने मिले के भाई देसी जी की चीज हो सी।
1: हाँ हाँ।
0: बाकी अपने शरीर के लिए भी और अपने पशुधन के लिए भी गुणकारी हो है।
1: ऐसा।
0: और नहीं इस देखो के शंकर जी को है ने।
1: हाँ।
0: भी एक पेटा भराई हो है
1: भाई,
0: लेकिन स्वाद नाम की जी की चीज हो है ने।
1: बा कोनी
0: और शरीर के लिए वो लाभदायक हो है या नहीं हो है बी है जी को कहे कौन जा
1: भाई। पोषक तत्व जगह अनाज में सब्जी में फलाम जगह होना चाहिए ने देसी में। भाई देसी में मिलसी भाई शंकर के माँ को नहीं मिले। शंकर में तो सिर्फ वजन जो है ने वो ही देखे जाए भी वजन का भाव में जगह किसान ने मिल जाए, पर देसी जगह कोई भी चीज है ने भी को मुकाबलो को नहीं हुआ है। क्योंकि मानव शरीर जो है एक माँ अपा जब असली चीज देखो के खावने का माँ काम में लियांगा ने जदि आपनो जो को शरीर है वो निरोग हो रहेगो। नहीं तो क्या एक बार धक्का स्टार्ट गाड़िया सी बात है। अब आपने इलाके में आगे आने रो जो को टेम है भी खरीफ के मायने जिकी आप फसल बावा भी के सागे सागे जिका नवाचार किसान कर रहे हैं तो वे भी देखो के जे अपनावे करें तो बी में भी कोई घाटो को नहीं। बी के लिए जरूरी आई है के मिट्टी पानी की जांच करवा के मृदा स्वास्थ्य कार्ड बना के और बिम जी की सिफारिश करी गई है बी के साहब देखो के आप कोई नई खेती कोई वृक्षारोपण पेड़ पौधा लगावा तो आगे चाल के आपने दिक्कत को नहीं हुआ
0: भाई। आपनी जी की सरकार ही बह के अलग अलग योजना है जिको खूब सारी योजना लेके आवे।
1: हाँ भाई साहब।
0: और आपना किसान बहन भाई ही जिका बा योजना को फायदो ले लेकी।
1: हाँ।
0: और खेती बाड़ी के मायने कोई हजार तरीके का नवाचार ही जिका अपन अपने आसे पासे धरातल के ऊपर देखने मिले।
1: हाँ जी।
0: और आप आ चीज भी है जो को स्वीकार करा के एक तो आप परंपरागत खेती करता बी टेम के बड़का शीर होया करता और जमीन बत्ती होया करती धीरे धीरे धीरे धीरे के भाई बंटवारा होता गया और जमीन होती गई कम और मिनख जमारो है जो को बढ़तो गयो।
1: ठीक बात।
0: तो देखो के नाज को उत्पादन ने
1: हाँ हाँ
0: वो भी अबारा अपना किसान बहन भाई इंज का कम जमीन के भाई ने ज्यादा पैदावार है जो की ले ला गया। क्यों ले ला गया एज का नवाचारी बाऊ। और दूसरो बात और है के अबार जिका अपना किसान बहन भाई बेके के गणकरा किसान बहन भाई पढ़े लिखे
1: हाँ हाँ।
0: तो नई नई जी की तकनीकी जी की आ रही वक्त के सागे जी की तकनीकी आ रही भी तकनीकी को आराम फायदो लेकी किसान बहन भाई जिका पांच पीसा की भी बचत करें टाइम
1: हाँ।
0: की भी बचत करें और खेती बाड़ी के मायने ज्यादा जिका रीजिया करता
1: हाँ हाँ।
0: बट थोड़ा सा है जो को रीजगी और आसानी वो आपको जो को काम है ने
1: हाँ।
0: वो कर ली पैदावार भी है जो चौकी ले ला गया
1: भाई। कम मेहनत कमा देखो को पैदावार ज्यादा मिल जाए और पिसारो देखो के जुगाड़ किसानों के जच्चो रह जा तो बुम देखो के सगला की भलाई है। बातचीत अपनी जारी पण किसान भाइयों को मनोरंजन करा देवा और जका किसान देखो खेता का मां हल चला रहे हैं तो वहां जुड़ेड़ी एक लोक रचना है मुरली राजस्थानी की आवाज में आओ सो सुना।

हाँ तो किसान भैया, अभी अपा मुरली राजस्थानी और साथियों की आवाज में लोक रचना सुनी। हाली तेरा खेत पड़या है दूर, खेत में दिन छिप जासी रे।

अभी किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम खेती और गृहस्थी। ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है, FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के ठीक 8 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवाते हैं युगल आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम है सच्चा झूठा।

गीत इसे गाया था लता मंगेशकर और नीरज ने, गीत लिखा था एस डी बर्मन ने, संगीतकार सुबोध मुखर्जी। आइए श्रोताओं अब आपको सुनवाते हैं अनजान के लिखे गीत को, संगीतबद्ध किया है बप्पी लाहिरी ने। फिल्म का नाम शोला और शबनम, आवाजें सबीर कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की।

अभी श्रोता सुन रहे थे फिल्म 16 और सबनम का ये गीत। इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता आकाशवाणी के चूरू केंद्र से ओनली ऑन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं श्री 420 फिल्म का गीत। आवाजें लता मंगेशकर, मुकेश और मोहम्मद रफी की। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: श्रोता अभी सुन रहे थे सोतन फिल्म का गीत। युगल आवाजें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। गीतकार थे सावन कुमार, संगीतकार उषा खन्ना। इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता आकाशवाणी केंद्र चूरू से ओनली 100.7 मेगाहर्ट्ज पर।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज। ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
2: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
3: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।

अंतरालों के बाद श्रोताओं का कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। श्रोता इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में पत्थर के सनम फिल्म का गीत। गीत लिखा है मजरूह है सुल्तानपुरी ने, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

श्रोता कार्यक्रम के आखिर में सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की युगल आवाज़ें। फिल्म का नाम था स्वयंवर। गीत लिखा था गुलजार ने, संगीत राजेश रोशन का था। श्रोताओं, इस गीत के साथ कार्यक्रम गुलदस्ता अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी के चूरू केंद्र का प्रसार

है FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से रिले पहले समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे न्यूज़ @9 का प्रसारण। समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण कार्यसत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के एवियो शहर की 2 दिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने G7 के विभिन्न आउटरीच सत्रों में हिस्सा लिया, जहां भारत को एक साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार 7वीं भागीदारी थी। इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अब नई दिल्ली की ओर देख रहा है। आउटरीच सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वपूर्ण मंच के ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। कल के एक सत्र में उन्होंने तेजी से जुड़ती हुई इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए भरोसे के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। आज के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ऐसे तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। अंकित कुमार।

0: आकाशवाणी समाचार एवियो फ्रांस।
1: पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी है। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 7वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास देने को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ

0: यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा,
1: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी संकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
0: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देश भर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में लगभग 32,000 महिलाओं को उनके प्रवासी भारतीय नागरिकों NRI पतियों ने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य में NRI विवाह धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती है। गुजरात में वडोदरा में तड़के एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दोपहर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सुबोध मिश्र।
4: सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर 77,156 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक ऊपर 24,086 पर पहुंच गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर 94.53 रुपए पर बंद हुआ।
2: और अब बात खेलों की। लखनऊ में दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 39वें ओवर में 7 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। लीड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज से 10 दिन के नशा मुक्त भारत सप्ताह का उद्घाटन किया। डॉक्टर कुमार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने में सामुदायिक भागीदारी, युवा सहभागिता और अंतर मंत्रालयी समन्वय के महत्व पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने

0: 403 runs set by India in second ODI of three match series in Lucknow. That is all in the news at 9. Good night.
1: ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है, एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 9:15 हो चुके हैं। लीजिए, प्रस्तुत है राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम। राजस्थानी लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे लोक कलाकार पप्पू मस्ताना और साथियों को।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

राजस्थानी लोक संगीत के कार्यक्रम में श्रोता सुन रहे थे पप्पू मस्ताना और साथियों को। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले कार्यक्रम चर्चा का विषय है।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और वरिष्ठ पत्रकार अजय बनर्जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: भारत की सुरक्षा केवल उसकी सीमाओं पर तैनात सैनिकों के साहस से ही सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि उस शक्ति से भी होती है जो उन्हें आधुनिक हथियार, अत्याधुनिक तकनीक और मजबूत रक्षा उपकरण उपलब्ध कराती है। एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में गिना जाता था। लड़ाकू विमान हो, मिसाइलें हो, युद्धपोत हो या फिर आधुनिक हथियार प्रणालियां, हमारी निर्भरता विदेशी देशों पर काफी अधिक थी। लेकिन बीते कुछ वर्षों में तस्वीर तेजी से बदली है। अब भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन 1.78 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। वर्ष 2020-21 की तुलना में इसमें 110% से अधिक की वृद्धि हुई है। रक्षा निर्यात भी बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक स्तर तक पहुंच गया है। निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी, रक्षा गलियारों का विकास, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलें इस परिवर्तन की आधारशिला बनी हैं। भारत किस तरह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, रक्षा उत्पादन में ये वृद्धि हमारी सामरिक शक्ति को किस तरह मजबूत कर रही है, वैश्विक रक्षा बाजार में भारत की क्या नई पहचान बनी है और आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र की चुनौतियां और संभावनाएं क्या हैं, इन पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान उपस्थित हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय बैनर्जी और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी और रक्षा विशेषज्ञ भी आप हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
4: धन्यवाद। जय हिंद।
2: लेफ्टिनेंट जनरल, आपसे शुरू करते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में आज जो हमारा रक्षा उत्पादन है उसमें तकरीबन 110% की वृद्धि हुई है। एक सैन्य रणनीतिकार के नजरिए से हम बात करें तो इस भारी बढ़ोतरी ने भारतीय सशस्त्र बलों यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ऑपरेशनल तैयारियों को किस तरह बूस्ट किया है और साथ ही साथ विदेशी कल पुर्जों पर हमारी निर्भरता को कितना कम किया है?
4: मैं कहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं, शक्ति में शांति और उसी में मनोबल ऊंचा होता है आर्म फोर्सेस का। पहले जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, तकरीबन 65% पूरा का पूरा हम लोग आयात करते थे और अब तकरीबन 65% हम भारत में खुद बनाते हैं। तो ये जो पहल है हमारी आत्मनिर्भरता की, मेक इन इंडिया की, इससे बहुत फर्क पड़ा है। जो डिफेंस कॉरिडोर्स का सेटअप होना, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का एक साथ मिलजुल करके काम करना, डीआरडीओ का इनका मनोबल ऊंचा करना, इनको प्रोत्साहित करना, स्टार्टअप को साथ ले चलना, अकेडेमिया के साथ करना, जो यूजर्स है उनको साथ में लेकर के चलना, तो ये जो बेसिक कार्रवाई है, काफी पहले प्रोसीजर्स होते थे, उन प्रोसीजर से जिससे देरी होती थी उनको हटा दिया। अब जब भारत के अंदर कोई भी चीज बनती है और खासकर जब वो बनती है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हो, ये नहीं कि भारत में बनाने बात अलग है, पर वो वस्तु बनाना जो इंटरनेशनल से टक्कर दे, और वो हम लोगों ने देखा ऑपरेशन सिंदूर में। इस प्रकार अपने बनाए हुए रडार ने किस प्रकार से दुश्मन के एयर डिफेंस को पेनिट्रेट करते हुए दुश्मन को नुकसान पहुंचाया, और यही कारण था कि अबाउट 88 आवर्स सिर्फ 100 घंटे से भी कम में पाकिस्तान ने घुटने टेके। ये क्या दर्शाता है कि पाकिस्तान को पूरा का पूरा चीन का पूरा रक्षक तुर्की है उसको मदद करा, पाकिस्तान अपना खुद करा और उसको पेनिट्रेट करना। ये तब हो सकता है जब आप आत्मनिर्भर हो, जब आप दूसरों के ऊपर निर्भर ना करें, मेक इन इंडिया हो, आपको मालूम है आपकी चीज क्या है, आपने अपने एरिया के मुताबिक स्पेसिफिक इससे बनाया है। तो ये जो एक है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, 1.78 लाख करोड़ एन ऑल टाइम हाई, और जैसे आप कह रहे हैं कि ऑफकोर्स 2000 मतलब पिछले साल से तो 15.6%, वो उससे पहले अगर देखा जाए तो 110% से भी ज्यादा, और वापस अगर हम 2013-14 की ओर देखेंगे तो उस वक्त तो हार्डली डिफेंस प्रोडक्शन यूज्ड टू बी तब

0: 43,000 crore और अब इट इज प्राइवेट प्रोडक्शन हमारा तकरीबन 43,000 crore है प्राइवेट प्रोडक्शन सो कैन वेल इमेजिन 1,78,000 crore में प्राइवेट का कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट्स ऑलमोस्ट अबाउट द सेम एज व्हाट वाज द टोटल डिफेंस प्रोडक्शन ऑफ 2014
1: अजय जी आपसे समझने की कोशिश करते हैं आप लंबे समय से भारत के विदेश और रक्षा नीतियों को कवर करते रहे हैं एक वो भी दौर था जब हम दुनिया के शीर्ष हथियार खरीदारों में से एक थे और आज यानी 25-26 की हम बात करें तो हमने 38,424 करोड़ का रक्षा निर्यात किया है आयातक से निर्यातक बनने के इस सफर में वैश्विक पटल और जियो पॉलिटिक्स के नजरिए से भारत का कद कितना बढ़ा हुआ आप देख रहे हैं
2: देखिए पहले मैं एक बिंदु बताऊंगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो कुलकर्णी सर भी बात कर रहे थे निजी सेक्टर ने तकरीबन 24% किया है इसे 1,78,000 करोड़ में से निजी सेक्टर की ग्रोथ सबसे इम्पोर्टेंट है जब तक वो ग्रो नहीं करेगा तब तक हम देश में एक्सपोर्ट या जिसे कहते हैं नहीं कर पाएंगे जैसे आप बात कर रहे हैं कि वो एक्सपोर्ट का कैसे सफर आया है वो सफर ग्रेजुअल होता है हमेशा ग्रेजुअल होता है पिछले 10-12 साल में स्पीड बहुत पकड़ी है बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ी है हम कोई 400-500 करोड़ की एक्सपोर्ट करा करते थे 10-12 साल पहले और अब कोई 38,000 करोड़ की जैसे आपने नंबर दिया उतनी कर रहे हैं अब ये एक्सपोर्ट जो है ये कई ऐसे मुल्कों को हो रही है जो तुर्की के आसपास है पहले तो ग्रीस है आर्मेनिया है पिना का रॉकेट एक्सपोर्ट कर रहे हैं कुछ और एक्सपोर्ट हो रहा है जो कि चीन के साथ जिनकी तालमेल नहीं बैठ रही उन मुल्कों के साथ जैसे वियतनाम को इंडोनेशिया को फिलीपींस को ब्रह्मोस की हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं बहुत सारी ऐसे मुल्क हैं जिनके लिए हम पार्ट्स बना के एक्सपोर्ट करते हैं इंक्लूडिंग यूएस से उनकी कंपनी को भी हम पार्ट सप्लाई करते हैं हमारी कई निजी कंपनियां यहाँ आगे आने वाले दिनों में हमने अभी बहुत स्पीड पकड़नी है आपने एक बात बोली कि हम सबसे बड़े इम्पोर्टर हुआ करते थे इम्पोर्टर अभी हम रहेंगे 10-12-15 साल और रहेंगे जब तक हमारे पास एयरक्राफ्ट का इंजन युद्धपोत यानी वॉरशिप का इंजन और स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज और सबसे बड़ी बात जैसे S-400 मिसाइल मारक क्षमता जैसे हमारा एक कुशा प्रोजेक्ट चल रहा है उसको कम्प्लीट होने को 5-7 साल लगेंगे जब तक वो ऐसे प्रोजेक्ट हमारे कम्प्लीट नहीं हो जाएंगे हम इम्पोर्टर रहेंगे ये एक सच्चाई है हमारे देश को मान के चलना चाहिए हर देश सारा कुछ नहीं बनाता हम एक बहुत बड़े इस टाइम एक्सपोर्टर की तरह उभर रहे हैं पहली बात दूसरी बात हमारा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया मगर ये अभी 10-15 साल और लगेंगे हमको टोटली सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए और अभी स्पीड पकड़ने की बहुत जरूरत है ये मैं आपके श्रोताओं को एक ऑनेस्टली और बिल्कुल सच्ची बात बता दूं कि स्पीड पकड़ने की बहुत जरूरत है
1: जी हाँ कुलकर्णी सर अगर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएं जैसा कि बैनर्जी जी कह रहे हैं कि निजी क्षेत्र की जो भागीदारी बढ़ी है उससे एक नई उम्मीद की किरण रक्षा क्षेत्र में जगी है आपको क्या लगता है कि रक्षा उत्पादन में सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच जो ये सिनर्जी है यानी जो तालमेल है इसे आप कैसे देखते हैं और क्या ये मॉडल आने वाले समय में हमें फाइटर जेट्स और सबमरीन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में पूरी तरह सेल्फ डिपेंडेंट बना सकता है
0: देखिए फाइटर एयरक्राफ्ट को देखते हुए अभी हम देखते हैं टाटा ने फर्स्ट एयरक्राफ्ट अपना फ्लाई करने की कोशिश की नागपुर से और जैसे बैनर्जी साहब बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बहुत वक्त लगता है ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है इतनी आसान नहीं है और कोई दूसरा देश आपको देता भी नहीं है लेकिन जिस प्रकार से पहल की है प्राइवेट इंडस्ट्रीज ने कम से कम पब्लिक सेक्टर के साथ मिलकर के डीआरडीओ ने अपनी फैसिलिटीज उनको मुहैया कराई है उसको देखते हुए तो जरूर मुझे लगता है बहुत जरूरी है और खासकर डिफेंस के अंदर प्राइवेट सेक्टर को एक बात का आभास होना चाहिए वो फौज है उनसे खरीदती रहेगी क्योंकि अगर आप उनको बोलेगा 100 हवाई जहाज बना करके उसके बाद फैक्ट्रीज बंद हो जाए वैसे नहीं हो सकता है 100 के बाद वो प्रोडक्शन चल उसके लिए एक्सपोर्ट बहुत जरूरी है जब आप बनाते हैं जस्ट नॉट फॉर मेक इन इंडिया बट मेक फॉर द वर्ल्ड मतलब फैक्ट्रीज चलती रहनी चाहिए ये नहीं कि 40 पीस आर्टिलरी के दे दिए उसके बाद फैक्ट्री क्या करेगी वे आपके लिए बनाए उसके बाद क्या होगा तो ये जो सस्टेनेंस है ऑफ प्रोडक्शन सस्टेनेंस ऑफ एंड मॉडिफिकेशन उसके ऊपर इनोवेशन तो ये जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आई हैं और खासकर मैं कहूंगा टाटा की हो महिंद्रा हो एल&टी हो कल्याणी भारत फोर्ज हो अशोक लेलैंड हो अडानी अल्फा डिजाइन ये जितने भी आ रहे हैं धीरे धीरे करके मुझे लगता है बहुत जबरदस्त और जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी भी 1,78,000 करोड़ का है इसमें तकरीबन मैं कहूंगा ऑलमोस्ट 25% प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज विच इज अ ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन इसको बढ़ना है और ये तभी हो सकता है जब सिनर्जी हो जिसकी आप बात करें सिनर्जी इज अ मस्ट यानी कि जो बनाने वाला है मैन्युफैक्चरर जो इस्तेमाल करने वाला है यूजर ये दोनों का जो तालमेल है ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए कि यूजर भी कुछ ऐसी चीज मांगे जो बनने में तकलीफ हो और मैन्युफैक्चरर भी ऐसी चीज बनाए जो यूजर को ना पसंद हो तो दोनों का तालमेल बहुत जरूरी नंबर वन नंबर टू जब चीज हिंदुस्तान के अंदर बनती है तो उसके ऊपर जो मॉडिफिकेशंस करते हैं वो उसको बहुत आसानी होती है अभी आपने मार्क वन बनाया है आपने हमने ही बनाया है हिंदुस्तान के अंदर तो उसको मार्क टू बनाने में दिक्कत नहीं आती है उसके मेंटेनेंस सप्लाई उसको पाने में दिक्कत

0: होती है। तो ये जो सिनर्जी है बहुत जरूरी है, जिसमें डीआरडीओ की भी काफी हद तक उसका सपोर्ट उनको मिलना चाहिए। हमारे पास बड़े बड़े जमीनें हैं, ग्राउंड्स हैं, जहाँ पे आप फायरिंग कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं आपका मटेरियल कैसे काम कर रहा है। तो ये जो सारा कुछ मिलकर के अकेडमिया है, IITs है, वहां के बच्चे बड़े होशियार है, वो आगे आते हैं, स्टार्टअप्स है वो आगे आते हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है आत्मनिर्भर के लिए, मेक इन इंडिया के लिए, वो बहुत जरूरी है। और डिफेंस कॉरिडोर जिस तरीके से बने हैं, इससे आप देखते हैं कि इनोवेशन को एक स्फूर्ति मिलती है, और इस इनोवेशन के कारण आप देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। आप भारत के अंदर ही अपने हम बिहार, जैसे आप कह रहे हैं, वी आर वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर, और हो सकता है कई एक साल तक हमें ऐसे रहना पड़े, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स नॉट सो इजी। ये बहुत जो डिफेंस टेक्नोलॉजी होती है, इट इज वेरी वेरी नीच टेक्नोलॉजी, और उसको पाना आसान नहीं, चाहे वो सीकर्स हो या स्टिल्थ हो। और आप देख रहे हैं इस प्रकार से हमने अमेरिका से तेजस के लिए अपने इंजन मांगे, और कहा दो साल हो गए, दो इंजन नहीं आ पाए, दो साल हो गए। क्यों? हमने उनके भरोसा, उन्होंने कहा नहीं, हमने तो फैक्ट्री बंद कर दी है, हम आपके लिए अभी बनाना शुरू करेंगे। इसलिए ना, पर अगर आत्मनिर्भर होंगे तो हमारा फिर MCA प्रोजेक्ट जो है वो कभी भी नहीं रुकेगा। तो बहुत जरूरी है ये डिफेंस में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट, जो बीच बीच में रुकावटें आती है ब्यूरोक्रेटिक, वो नहीं, वो सरकार ने हटा दिए, तो इससे जो है बहुत फर्क पड़ा है।
1: बनर्जी साहब, अगर 2013-14 की बात करें तो हमारा स्वदेशी रक्षा उत्पादन 43,786 करोड़ रुपए का था, जो अब चार गुना के करीब बढ़ गया है। बतौर पत्रकार, नीतिगत स्तर पर वो कौन कौन से डिसीजन आप मानते हैं जो गेम चेंजर साबित हुए हैं रक्षा क्षेत्र में उत्पादन के नजरिए से?
2: पहली बात तो ये कि भारत सरकार ने कोई 5-6 साल पहले एक लिस्ट निकाली रक्षा मंत्रालय के लिए कि ये आइटम जो है अब हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे, आपने इंडिया में ही बनाने। वो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो लिस्ट अपडेट होती रहती है, उसको इंडिजिनाइजेशन लिस्ट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रबर की सील है, कोई हेलीकॉप्टर में लगती है, हर कुछ घंटे की फ्लाइट के बाद बदली जाती है, वो इम्पोर्ट नहीं होगी। कुछ व्हीकल, आर्टिलरी गन इम्पोर्ट नहीं होगी, अब हम खुद बनाते हैं आर्टिलरी गन, ठीक है। पनडुब्बी, एक हैरानी वाली बात यह है कि हमने एक सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत बनाया है INS विक्रांत, जो हमने खुद बनाया है। नेवी के साथ अब 95-98% जो शिप है वो इंडिया में बनते हैं। हमने एक परमाणु ऊर्जित पनडुब्बी यानी SSBN जिसे बोला जाता है नेवल पार्लेंस में, INS अरिहंत, उसके 3 आगे की श्रेणियां बना चुके हैं। ये सब हम कर चुके हैं। जो नीति चेंज हुई वो ये चेंज हुई, छोटी छोटी चीजें जो हम इम्पोर्ट कर रहे थे वो इम्पोर्ट नहीं होंगी। मेटलर्जिकल पार्ट्स, मूविंग पार्ट्स, हर हेलीकॉप्टर में, प्लेन में टैंक है उसमें या व्हीकल है उसमें मूविंग पार्ट होता है, वो इम्पोर्ट नहीं होगा। तो वो जो पॉलिसी आई वो फिर इंडियन इंडस्ट्री ने उसको टेक ओवर कर लिया। जैसे मिसाल के तौर पर आज सुखोई और MiG-29 लड़ाकू विमान है भारतीय वायुसेना के पास, तकरीबन सुखोई 270 और MiG-29 कोई 60 के आसपास है, और MiG-29 नेवी के पास भी है करीब 40-45, तो 100 वो है और 370 विमान है हमारे पास जो कि रूसी ओरिजिन के हैं। उनके स्पेयर पार्ट्स तो अब आ नहीं सकते रशिया से, वहां तो जंग छिड़ी हुई है, तो वो अब इंडियन एयरफोर्स यहां पर लोकल इंडस्ट्री के साथ बात करके उसको यहीं पर बनाने का प्रयास कर रही है। भाई डाईकास्ट तो है ही ना, पार्ट तो आपके पास है, उसको बनाइए स्पेयर पार्ट को। दूसरी चीज, ड्रोन यानी UAV बहुत एक महंगी टेक्नोलॉजी है, जटिल प्रणाली है, उसको आप इंपोर्ट करने की बजाय अब एयरफोर्स फिर से प्राइवेट सेक्टर के साथ हाथ मिला के कह रही है कि तुम बनाओ हमारे साथ मिलके। एक और जटिल प्रणाली है जिसे बोलते हैं 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, उसको हमने नाम दे रखा है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अब रक्षा मंत्रालय ने पहली बार निजी क्षेत्र को वो विमान के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के जो कि 5वीं श्रेणी का लड़ाकू विमान है, उसको बनाने के लिए निजी क्षेत्र में 3 कंपनियों को 3 कंसोर्टियम्स को इनवाइट करा है कि अपनी बिड दीजिए। ये पहली बार है कि निजी कंपनियों को बुलाया गया। अगेन निजी कंपनियों को फिर से एक बोला गया है सबमरीन्स में भी, जैसे मैंने आपको बताया कि परमाणु ऊर्जित पनडुब्बियां हम बनाते हैं, मगर परंपरागत पनडुब्बी जिसे बोलते हैं हम डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, वो उस पनडुब्बी अभी हम एक जर्मनी से बनने की तैयारी है, एक फ्रांस से पहले बन रही थी, अब उसको बनाने की भी तैयारी है इंडिया में। हेलीकॉप्टर अभी तक हम ALH बना रहे थे, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर बना रहे थे, और अब हम अपने आप एक बड़ा हेलीकॉप्टर Mi-17 एक थोड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर होता है वो हम रूस से इम्पोर्ट कर रहे थे, अब उसकी जगह एक नया हेलीकॉप्टर आ रहा है उसे बोलते हैं इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। उसके हेलीकॉप्टर की 2 श्रेणियां होंगी, एक नेवी यूज करेगी, एयरफोर्स यूज करेगी। जैसे मैं आपको पहले बता रहा था 8-10 साल हमें ये पेस मेंटेन रखनी पड़ेगी तभी हम आत्मनिर्भर होंगे।
1: कुलकर्णी जी, आपसे थोड़ा और समझना चाहेंगे, जैसा कि ड्रोन तकनीक का बैनर्जी साहब ने जिक्र किया, रक्षा मंत्री भी कहते हैं कि नीतिगत समर्थन और नई पहल बहुत जरूरी है, इनोवेशन, डिफेंस स्टार्टअप्स भी काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं। जो भविष्य की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है जैसे AI और ड्रोन, उस क्षेत्र में हम दुनिया के तमाम देशों की अगर तुलना करें तो कहां खड़े हैं और उस दिशा में क्या प्रगति हो रही है?
0: देखिए, ड्रोन वॉरफेयर अब इज समथिंग हम लोगों को यकीनन उसके साथ अडॉप्ट होना है, हम देख रहे हैं ड्रोन वॉरफेयर किस प्रकार से जबरदस्त इस्तेमाल किया गया यूक्रेन और रूस की

0: में किस प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है ईरान के युद्ध में, तो ड्रोन वॉरफेयर तो बहुत ही जरूरी है। हमने खुद देखा ऑपरेशन सिंदूर में हमने किस प्रकार से एंटी ड्रोन पे पूरी कार्रवाई करके पाकिस्तान के जो ड्रोन है उनको गिराया, और वो भी ड्रोन जो पाकिस्तान को तुर्की ने दे वो गिराए, जो वो ड्रोन जो चीन ने पाकिस्तान को दिए वो गिराए। तो ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत जरूरी है। हम धीरे धीरे करके, ये नहीं कहूंगा कि वी आर एट द बेस्ट, बट डेफिनेटली नाउ वी आर गेटिंग एट दैट लेवल, और इसको भारत के अंदर बनाना बहुत जरूरी है। अगर हम इम्पोर्ट ही करते रहेंगे तो बहुत महंगा होगा ये। तो इसलिए आज की तारीख में अगर हम देखें स्टार्टअप देखें जरूर, चाहे स्टार्टअप के पास आपके पास चाहे नेविगेशनल सिस्टम हो या उसके सीकर्स हो या उसके पास फोटोग्राफिक देते, बहुत कुछ साधन है जो स्टार्टअप के पास है वो इस्तेमाल करें। तो बहुत जरूरी है इनोवेशन, बहुत जरूरी है ये स्टार्टअप को एनकरेज करना, बहुत जरूरी है रोबस्ट R&D, बहुत जरूरी है प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन और यूजर का उसके साथ इंटरफेस। यूजर को भी बहुत जरूरी है कि अपने आप को दूर ना रखे कि जब मेरे को सामान ला करके दिखाओगे तब मैं देखूंगा तब बताऊंगा, ना जी अब तो फेल हो गया ना। यूजर एंड मैन्युफैक्चरर का इंटरफेस चलता रहना चाहिए, क्योंकि आफ्टरऑल अगर हम ये हमारे लिए है, ये तो आत्मनिर्भरता और भारत के लिए है, और जब बढ़िया बनेगा और सस्ता और अच्छा बनेगा तो ऑटोमेटिकली विश्व में उसकी मांग बढ़ेगी। कहा जाता है कि भारत के अंदर जब कोई भी सामान टेस्ट होता है तो हमारे जो टेस्टिंग फैसिलिटीज है और टेस्टिंग जो पैरामीटर्स है जिसको GSQR हम लोग सेट करते हैं बहुत ऊंचे हैं, और वो उस मापिक अगर जब एक दफा पास हो जाता है तो पूरा विश्व इंतजार कर रहा होता है, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो स्मॉल आर्म्स हो, चाहे वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, उनको लगता है अगर भारत ने लिया है मतलब ये बहुत अच्छा है, क्योंकि भारत सच में उसको इस्तेमाल करता है और जब इंट्रोड्यूस करता है बहुत कुछ देखभाल करने के बात करता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे -50 डिग्रीज भी है +50 डिग्रीज भी है, तो दोनों तरीके के है हमारे में, तरह तरह के टेरेन कंडीशंस है, तो ये सब को देखते हुए बहुत जरूरी है कि हम लोग जब भारत के अंदर करते हैं। इसलिए रक्षा मंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा, इनोवेशन बहुत जरूरी है, अडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। जो चीज जरूरी नहीं कि जो चीज यूरोप में सक्सेस कर गई वो भारत में होगी, भारत का रिक्वायरमेंट अलग है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत जरूरी है कि हम लोग ड्रोन को मद्देनजर रखते हुए, UAV को मद्देनजर रखते हुए, न्यू वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चाहे साइबर है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे स्पेस है, नेविगेशनल है, जियोस्टेशनरी ऑब्जेक्ट, हर एक चीज के साथ मिलकर के अपना बनाना, अपने तरीके से उसको यकीन करना कि इसको कोई हैक ना कर सके, इसको कोई लड़ाई के मैदान में कोई भी हैकिंग नहीं होगी या जाम ना कर सके, जो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है ये हम भारत के अंदर बनाए, और इसको इनिशियली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो भी बिजनेस कोई भी करता है इनिशियली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो मुझे लगता है काफी थ्रस्ट दिया जा रहा है, क्योंकि डिफेंस कॉरिडोर बने हैं उसमें बहुत जरूरी है, अगर ये हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर रहे हैं, ग्लोबल साउथ ने हमारे को एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है नेतृत्व रखी, तो बहुत जरूरी है कि डिफेंस सेक्टर में भी हम लोगों ने उसी आले दर्जे पे अपना प्रोडक्शन होना चाहिए, जिससे कि हमें गर्व होना चाहिए और हमको भी लगना चाहिए कि हमारे शक्ति से हमारा मनोबल ऊंचा हुआ।
1: बनर्जी साहब, जो आकाशवाणी के श्रोता दूर दराज के गांव से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हमने बड़े बड़े आंकड़ों पर चर्चा की, वो ये जानना चाहते हैं जब भारत जैसे देश का रक्षा उत्पादन इस तरीके से बढ़ता है तो एक सामान्य नागरिक को और देश की अर्थव्यवस्था पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है।
2: इसके कई सारे आंसर। पहला आंसर ये है कि जब हम अपने आप ही बनाएंगे तो हमारे सबसे पहली चीज फैक्ट्रियां खड़ी होंगी तो एक कारीगर चाहिए, और मैं लेबर की बात नहीं कर रहा हूँ, कारीगर की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज, जब वो फैक्ट्री खड़ी होगी वहां 100-500 आदमी काम करेंगे, उनके आसपास हाउसिंग की जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल आएगा, जॉब्स आएंगी, और सबसे बड़ी बात अभी तो डीजी सेक्टर ने शुरू नहीं किया, जब शुरू करेंगे अच्छी तरीके से तो R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे लगाने पड़ेंगे, जब पैसे लगेंगे तो जो इंजीनियर हैं R&D के इंजीनियर हैं, लड़के पढ़ लिख के आए हैं IIT से और इंजीनियरिंग कॉलेज से, उनको मौका मिलेगा, मेटलर्जिकल इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर, इन सब की जरूरत पड़ेगी। जब आप ग्रो करेंगे तो जब आपके एक्सपोर्ट का ऑर्डर आएगा तो इन सब की जरूरत पड़ेगी। निचले स्तर पर कारीगर, मैं लेबर नहीं कह रहा हूँ, बिकॉज ये एक बड़ा स्पेशलाइज्ड टास्क है, दिस इज नॉट लेबर, वेरी स्पेशलाइज्ड टास्क, तो आपको ट्रेन्ड मैन पावर चाहिए, और वो ट्रेन्ड मैन पावर हमारी स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री या जो ITI है वो सिखाते हैं, वहां से लड़के लड़कियां चाहिए, ट्रेन्ड मैन पावर। एक जैसे छोटी सी आपको उदाहरण देता हूँ, एक जहाज में अगर एक रिवेट भी लगाना होता है वो एक स्किल्ड जॉब है, हाईली स्किल्ड जॉब है, कई सालों के परीक्षण के बाद वो लगता है एक रिवेट भी, जब आप जहाज में जाते जाते हैं, एक सिविल एयरक्राफ्ट में जाते हैं, आपको उसके विंग पर रिवेट लगे देखेंगे जो उसको होल्ड करते हैं। बड़ा हाईली स्किल्ड जॉब है।

0: और सोच लीजिए मिलिट्री में कितना हाईली स्किल जॉब होगा वो। जब लड़ाकू विमान की स्पीड ही 2000 किलोमीटर है तो उसको एक डिफरेंट किस्म की फ्रिक्शन चाहिए, डिफरेंट किस्म का मेंटेनेंस चाहिए, मेंटेनेंस इंजीनियर्स चाहिए आपको। MRO हब यानी मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल हब बनेंगे। साफरान एक इंजन मेकर है फ्रांस का, उन्होंने यहाँ बनाया। साफरान के इंजन रफाल में यूज होते हैं, तो आपको इंजीनियर चाहिए उनके। तो ये जॉब मार्केट पर इम्पैक्ट करता है सबको, छोटे शहरों के लड़के लड़कियों को भी इम्पैक्ट करता है जो कि पढ़ लिख के आगे जाएंगे।
1: जी हाँ कुलकर्णी जी, अगर इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं, हमने भारत की उपलब्धियों की चर्चा की, थोड़ी चर्चा चुनौतियों की भी कर लेते हैं कि रक्षा निर्माण के क्षेत्र में अभी किस तरह की चुनौतियां हैं भारत के सामने और उसको डील करने के लिए सरकार किस तरह का काम कर रही है।
2: अपने को मालूम है ये हमारे दुश्मन कौन है, इसमें तो ये सोचने की तो बात नहीं और पैदा हो सकते हैं दुश्मन, क्योंकि कोई भी जो इस तरह के देश है वो भारत को उन्नति तरक्की करते हुए देखना पसंद नहीं करते। सबको लगता है कि भारत गरीब है, तो भारत अपने बलबूते पे एक लोकतंत्र होने के नाते जिस प्रकार से धीरे धीरे करके उस पायदान पे जा पहुंचा है, वहां पर अगर अपने को रहना है उससे और आगे बढ़ना है। अगर नंबर वन GDP वाला अगर 22 ट्रिलियन डॉलर का है, नंबर टू तकरीबन 17-18 ट्रिलियन डॉलर का है, तो नंबर तीन 4-5 पे नहीं रुक सकता है, उसको भी कम से कम 14-15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बननी पड़ेगी। तो अपने को बहुत आगे जाना है, उसमें बहुत जरूरी है कि हम सबने मिलकर के सोचा है ये हमारा देश है और उस देश को यकीनन जो भी है शक्ति में शांति है। हम जो इतना सब कुछ बनाते हैं लड़ने के लिए नहीं बनाते, यकीन करने के लिए। लड़ाई अगर होगी तो जिसने जो भी लड़ेगा उसको मालूम है कि उसने मधुमक्खी के छत्ते में उंगली मारी है और अब वो मधुमक्खियां जो है भिन्नभिन्न गई, उनको नुकसान होगा, ये वो बात है। और इसके लिए हम लोगों को सतर्कता और सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है हर एक फील्ड में। और ये कह रहे टेक्नोलॉजी पहले 10-15 साल में एक बार चेंज होती थी, अपने पास हथियार जो पुराने होते थे वो चलते, अब नहीं, टेक्नोलॉजी 3-5 साल में बदली हो जाती है। आज देखिएगा कौन सा है वो स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 फटाफट, कौन से जनरेशन है 1, 2, 3, 4, 5। अब हवाई जहाज देखिए आपने रफेल इंपोर्ट किया 4.5 जनरेशन, 5th, 6th जनरेशन स्टिल। तो आप देखते हैं किस तरीके से लगातार जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस होती है। जो जब अब भारत के अंदर हम बनाते हैं, हम आत्मनिर्भर होते हैं तो हम उसको अपग्रेड करने की काबिलियत भी रखते हैं। हमें मालूम है हमने इसको किस तरीके से बनाया है, इसको किस तरह, तो चाहे वो इंडियन ओशन में हमें शिप्स इस्तेमाल करनी है, सबमरीन इस्तेमाल करनी है, डिस्ट्रॉयर्स इस्तेमाल करने हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाने हैं, अंडमान निकोबार में आपने बहुत बड़ा सेटअप करना है, चाहे अपने एयरक्राफ्ट है, चाहे अपने UAV है, चाहे अपने ड्रोन वॉरफेयर है, चाहे अपने लाइट टैंक्स है, चाहे अपने आर्टिलरी पीसेस है, चाहे अपने स्मॉल आर्म्स है, या अपना बुलेट प्रूफ जैकेट्स है, हेलमेट्स हैं, जूते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड का इक्विपमेंट है, हाई ऑल्टीट्यूड का क्लोथिंग है, सब कुछ भारत के अंदर बनना है। और ऐसा बनना है कि हर एक भारत के सिपाही को लगना चाहिए हाँ ये मेरे देश में बना है। और क्योंकि हम लोग एक्सरसाइजेस करते हैं, विश्व में जाकर के सब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, हमारा सैनिक US के सैनिक के साथ मिलता है, हमारा सैनिक साउथ एशिया में देश है उनके सैनिकों के साथ मिलता है, बाहर देशों के साथ मिलता है, बाहर के देश के सैनिक भारत में आते हैं, वो देखते हैं भारत के अंदर किस तरीके से लड़का खड़ा है, उसके पास क्या हथियार है, वो किस तरीके से बातचीत करता है। जो मनोबल है वो आपका ऑटोमेटिकली ऊंचा होता है जब व्हेन यू ट्रेन वेल, आपका इक्विपमेंट अच्छा है, आपको आपके इक्विपमेंट के ऊपर पूरा विश्वास है, तो आपको मालूम है कि जीत मेरी होगी, इसमें कोई शक नहीं है कि जीत मेरी होगी, मैंने मेहनत करनी है, मैंने कोशिश करनी है, सरकार ने अपनी पूरी कोशिश की, अब जिम्मेवारी मेरी है। जब ये माहौल एक पैदा हो जाता है देश के अंदर तो आप समझ सकते हैं कि देश तरक्की के रास्ते पे है और देश जिस मुकाम पर जाना चाहिए भारत को वो मुकाम जाएगा।
1: बैनर्जी साहब, कार्यक्रम में समय कम है, आखिर में आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालिए कि जब रक्षा उत्पादन भारत का बढ़ रहा है तो इसे भारत की विदेश नीति और रक्षा कूटनीति को भी मजबूती मिल रही है, अगर हाँ तो कैसे?
0: जी बिल्कुल, जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि हमने ब्रह्मोस 3 ऐसे मुल्कों को बेची है जिनका चीन के साथ रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है, वो साउथ चाइना सी में जो विवाद है उसका पार्ट है वो, उनमें से 2 एटलीस्ट फिलीपींस और वियतनाम, और तीसरा इंडोनेशिया जिसको हमने बेची है ये ब्रह्मोस। ब्रह्मोस बड़ी स्पेसिफिक ब्रह्मोस उनको बेची है कि लैंड से चलेगी टुवर्ड्स द शिप, जमीन से सामने के युद्धपोत पे मारने के लिए। दूसरी बात जो आपने पूछी कैसे हमारी कूटनीति पे फर्क पड़ता है, हमारी कूटनीति पे जैसे तुर्की ने कुछ दिन पहले बोला कि भारत हमको इनसर्कल कर रहा है, आर्मीनिया को आर्म कर रहा है, साइप्रस को, ग्रीस को, जिस जिस से तुर्की की नहीं बनती उसको हम वेपन हथियार सप्लाई कर रहे हैं। अब कूटनीति में एक और बात आती है, जैसे अब आप फ्रांस के साथ आपका बहुत अच्छा टाइप है, यूएसएसआर यानी अब सोवियत रशिया के साथ और रशिया के साथ मॉस्को मान लीजिए बहुत अच्छा टाइप है विमान बनाने के लिए, इंजन बनाने के लिए, को प्रोडक्शन के लिए, टैंक्स को प्रोडक्शन के लिए।

0: लिए इंजन की, हमारे जो हेलीकॉप्टर उड़ते हैं उसमें साफरन नामक एक कंपनी है फ्रांस की, उसके इंजन लगे हुए को 20 साल से, इंजन यहीं इंडिया में बनते हैं, रॉ मटेरियल भी यहीं से आता है, यहीं के लड़के लड़कियां उन फैक्ट्रीज में काम करते हैं। दूसरी बात, एयरबस का C295 विमान वडोदरा में फाइनल असेंबली लाइन लगी हुई है उसकी, कुछ इंपोर्ट होता है कुछ यहाँ बनता है, कुछ तो बना रहे। मेरा मानना यह है एक टारगेट हमको रख के चलना चाहिए, हमने बहुत अच्छा काम किया, 1,78,000 करोड़ पे आ गए, मगर एक कहावत है ना कि अभी रास्ता बहुत लंबा है, और वो रास्ता वाकई में बहुत लंबा है। और इसमें एक तो हमारे मुल्क में एक बड़ी रियलिटी आनी चाहिए कि हम हर चीज को क्रिटिसाइज करना चाहिए, 30 साल लग गए जी 30 साल लगते हैं जहाज बनाने को, बिकॉज आपके को हाथ पकड़ के सिखाता नहीं है, कोई टीचर नहीं है वहाँ कि आपने ये बनाना है, देयर इज नो टीचर, आपने खुद ही गलती करनी है, गिर के फिर सीखना है, और कोई बताएगा नहीं आपको कि इंजन कैसे बनेगा, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा विमान का डिजाइन कैसे और उड़ता क्यों है, कितना थ्रस्ट चाहिए इंजन को, इसमें वेपन कैसे लगेंगे, वेपन फायर कैसे होंगे, रडार ने वो वेपन कैसे उठाने हैं, जमीन से आपने जब मिसाइल चलानी है तो रडार की क्या फ्रीक्वेंसी है, रडार उसको पकड़ के मिसाइल को बताएगा ऑटोमेटिकली कि फायर कर दो, ये कुछ सिखाएगा नहीं, कोई देयर इज नो टीचर, आप खुद ही टीचर हो, तो लेट अस नॉट क्रिटिसाइज कि 30 साल लगे 20 साल लगे, लगते हैं इतने जी बिल्कुल लगते हैं, तेजस को 33 साल लगे जी बिल्कुल लगते हैं, परमाणु ऊर्जित पनडुब्बी को 30 साल लगे जी बिल्कुल लगते हैं इतने, हम जर्मनी से या फ्रांस से या अमेरिका से कंपेयर नहीं कर सकते, वो एक बहुत विकसित मुल्क है, हम अभी एक डेवलपिंग कंट्री है, तो एक तो नो क्रिटिसिज्म, दूसरा R&D वेरी स्ट्रॉन्ग, R&D अनुसंधान जिसे बोलते हैं हिंदी में, बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए हमें इस टाइम, नो शॉर्टकट्स, जहां शॉर्टकट लगा वहां खेल खत्म है, नो शॉर्टकट्स, बेंचमार्क शुड बी वेरी हाई, रक्षा मंत्रालय ने बेंचमार्क बहुत हाई रखे हैं, अभी बेंचमार्क हाई रखना पड़ेगा, नो शॉर्टकट्स, R&D बहुत स्ट्रॉन्ग, ये वे फॉरवर्ड है।
1: कुलकर्णी जी, कार्यक्रम का आखिरी सवाल आपसे है, जैसा कि बैनर्जी साहब कह रहे हैं कि राह पनघट की आसान नहीं होती है लेकिन कदम तो बढ़ाने ही होते हैं, तो अगले 5 वर्षों में भारत के रक्षा उत्पादन के नजरिए से आप कहां देखते हैं?
2: मेरे को लगता है धीरे धीरे करके, कम से कम अगर हम अपना इम्पोर्ट जो है 21% तक रखें और 80% हम अपना खुद बनाने की कोशिश करें, और जब हम खुद बना रहे वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इसमें कोई ये नहीं कट कॉर्नर्स करो ना, ये मानना करना पड़ेगा ये हमारा है और हमने इसको आले दर्जे का बनाना है, अगर हमने ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करना है तो सबको लगना चाहिए, और ये तभी होगा जब हम एक बात माने कि ये हमारे लिए बना है, हमने इसको इस्तेमाल करना है। मुझे लगता है वी हैव अ ब्राइट फ्यूचर, अगले 5 साल के अंदर एक तो हमारा एक्सपोर्ट जो है मुझे लगता है उसमें काफी जबरदस्त बढ़ोतरी, अभी तकरीबन 40-45 हजार करोड़ का है, वो खुद ही 50 हजार करोड़ से ज्यादा हो जाएगा, और अपना जो इंटरनल जो अपना डिफेंस प्रोडक्शन, जैसे अभी डोमेस्टिक प्रोडक्शन 1,78,000 करोड़ पे पहुंचा है, उम्मीद करता हूँ ये भी 3,00,000 करोड़ पार कर जाएगा। हमारे पास बहुत अच्छे दिमाग हैं, हमारे पास कैपिटल है, हमारे पास इच्छा है, करने की काबिलियत है, और हम करेंगे, चाहे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा हो, बट मेक इन इंडिया विल बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड।
1: आज की चर्चा से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि आत्मनिर्भर भारत केवल एक नारा नहीं बल्कि एक सशक्त राष्ट्रीय संकल्प है जो अब धरातल पर परिणाम देता दिखाई दे रहा है। यह बदलाव केवल आर्थिक उपलब्धि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सामरिक स्वतंत्रता और वैश्विक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। जब किसी राष्ट्र के सैनिकों के हाथों में उसके अपने देश में बने हथियार और तकनीक होती है तब आत्मविश्वास भी बढ़ता है और रणनीतिक स्वायत्तता भी बढ़ती है। आयातक से निर्यातक बनने की ये यात्रा आसान नहीं थी लेकिन ये सफर हमें बताता है कि दूरदर्शी नीतियां, तकनीकी नवाचार और सामूहिक प्रयास किसी भी लक्ष्य को संभव बना सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ता रहे, हम नित नई ऊंचाइयों को छूते रहें, हमें कार्यक्रम में अनुमति दीजिए। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी साहब आपका, अजय जी आपका कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
0: थैंक यू।
2: जय हिंद।
3: अभी आप सुन रहे थे रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और वरिष्ठ पत्रकार अजय बनर्जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है, FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के ठीक 10 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित भीमसेन जोशी का सितार वादन। राग है यमन कल्याण।

अभी श्रोता सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित भीमसेन जोशी का सितार वादन। राग था यमन कल्याण। ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है, FM 100.7 MHz पर। इस समय रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम में कुछ गैर फिल्मी गजलें।

श्रोता सुन रहे थे सुगम संगीत। आज आपने पंकज उदास को सुना। अब ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी चूरू का प्रसारण है FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आप दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एमिया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नोवा

0: वाहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने 3 महत्वपूर्ण घोषणा पत्र अपनाए हैं। इनमें संतुलित आर्थिक विकास, बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में शामिल होंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
2: 2 प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। 3rd प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर 4th प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आर कंट्री।
0: इस बीच श्री वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।